नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ आपकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ वागड़ रेडियो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 7 मई 2026 वार गुरुवार का दिन है, साथ ही साथ यूं हम देख पा रहे हैं कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोता साथियों, आज सभा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। अगला कार्यक्रम होगा इसी कड़ी में सच्चा बचपन। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर, और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोता साथियों, इसी के बाद हम रूबरू होंगे कार्यक्रम आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर के साथ में। फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे अधिकार कानून नियमों से जुड़ा सच्चा स्वराज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और अंजलि पारशर। इसी क्रम में श्रोता साथियों, आगे बढ़ते हुए हम रुक करेंगे हमारी परंपराओं लोक राजस्थानी गीतों से जुड़ा कार्यक्रम लोक संगीत, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर राजस्थानी गीतों के साथ में। श्रोता साथियों, फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मेरे साथ में यानी कि आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल के साथ में, और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर। आगे बढ़ते हुए हम सुन पाएंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर। श्रोता साथियों, फिर हम रूबरू होंगे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से, इसे लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 10:00 बजे। फिर इसी क्रम में हम रुक करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, आप अपने फरमाइश के गीतों को सुन सकते हैं 11 से 1 बजे तक वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और फरमाइश के गीतों को दे सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, यह तो थी हमारी आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज की सभा में सबसे पहले कार्यक्रम आराधना से।

0: जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है तो वो घटना उसके अंतर को झकझोर देती है। समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है। उस घटना के उत्तर में वो न्याय मांगता है और ये योग्य भी है। वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश है। किंतु ये न्याय क्या है, न्याय का अर्थ क्या है? अन्याय करने वाले को अपने कार्य पर पश्चाताप हो और अन्याय भुगतने वाले के मन में फिर से विश्वास जगे समाज के प्रति, इतना ही अर्थ है ना न्याय का। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं होता वो न्याय को छोड़कर बैर और प्रतिशोध को अपनाता है, हिंसा के बदले प्रतिहिंसा की भावना लेकर चलता है। स्वयं भोगे हुई पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ा देने का प्रयत्न करता है और इस मार्ग पर चलते अन्याय को भुगतने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है। शीघ्र ही वो अपराधी बन जाता है। अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है और इसी अंतर का नाम है धर्म। क्या ये सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखा है, तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरी निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनू, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हूं या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जैनी हवा में आपड़े हाल हूं ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है।
1: होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
0: प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है ये अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राखंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवरा हंग्र भाई बुनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु गणमान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थे सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो भाई बोनो आज हमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है की वर्षा ऋतु में पेयजल की गुणवत्ता सामुदायिक स्तर माते अपने हूँ समाधान करी सका। तो भाई बोनो अड़ा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी अब तक की घना कानी बातें थाएंगा पर कार्यक्रम शुरू करा इन्हें पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे करा अपनी बातें। तो भाई बोनो आप हम वर्ता रेसू अपनो रेडियो अपनी बातें वागर रेडियो 90.8 FM माते।

0: બેન બનુ ગીત તો આઈશું પૂરું નણ ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણીમાન સ્વાગત કરો હ અમારે આજે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મે જેમ કે ભાઈ બનુ ગીત કે પહેલા આપને વિશે બતાડું તું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હ કે વર્ષા ઋતુ મે પેયજલની ગુણવત્તાનું આપણને હરતે ધ્યાન રાખવું હે જે સામુદાયિક સ્તર માટે હું આપણે પ્રયાસ કરી શકો તો ભાઈ બનુ અણા વિશે માટે જાણકારી આલવા બલ્લે આજે આપણે કાર્યક્રમ તે કે જોડી રહે મનીષ જી સર તો સબ તે કે પહેલા આપણે હામરી લણાની વાત ને મોરે કરે આપણી વાત સર નમસ્કાર
1: નમસ્કાર અંજલિ જી
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મે
1: આપકા ઓર વાગડ રેડિયો કા બહોત બહોત ધન્યવાદ
0: સર જૈસા કી આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારે કાર્યક્રમ મે આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ વર્ષા ઋતુ મે પેયજલ કી ગુણવત્તા ઓર સમુદાય આધારિત સમાધાન ક્યા હો સકતે હૈ
1: જી બિલકુલ જલ કી યદી હમ બાત કરે તો જલ માનવ જીવન કી આધારશિલા હૈ
0: બિલકુલ
1: શાયદ ભોજન કે બિના હમ કુછ દિનો તક જીવિત રહ સકતે હૈ પર યદિ હમકો પાણી નહીં મિલે તો કુછ ઘંટો મે હી હર જીવ તડપને લગેગા
0: બિલકુલ
1: તો હમ મૂળ રૂપ સે યે કહે સકતે હૈ કે જલ કે બિના જીવન કી કલ્પના અસંભવ હૈ પરંતુ કેવલ જલ હી નહીં બલ્કિ શુદ્ધ એવમ સુરક્ષિત જલ હી સ્વાસ્થ્ય કે લિયે જરૂરી હૈ
0: બિલકુલ
1: કિસી ભી તરહ કા જલ અગર પીને કે લિયે ઉપલબ્ધ હૈ તો એક બાર હમે ઉસ પે વિચાર કરના હોગા
0: જી બિલકુલ
1: હમ गांव की बात करते हैं तो विशेष रूप से बारिश के मौसम में जो जल स्रोत है उनमें कहीं ना कहीं से गंदगी का मिल जाना स्वाभाविक है हर जगह जल भराव रहता है बहते नालों का जल गंदगी के संपर्क में आता है
0: बिल्कुल
1: इस तरह से ये जो जीवनदायी जल है वो कहीं ना कहीं कई प्रकार की बीमारियां लेके भी हमारे पास आता है जिसमें प्रमुख रूप से हम वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो असुरक्षित पानी यदि हम पीते हैं तो इससे हैजा पीलिया दस्त टाइफाइड जैसी और अन्य बीमारियां भी जन्म लेती हैं
0: बिल्कुल
1: तो यदि पेयजल की गुणवत्ता की बात करें तो भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार 10,500 मानक का जल जो है मानव के लिए सबसे सुरक्षित माना गया है
0: बिल्कुल
1: या जीव के लिए तो भारतीय मानक ब्यूरो ने पीने के लिए जो पानी के दिशा निर्देश तय किए हैं उनको यदि हम देखें तो उसके घटक क्या है उसकी स्वीकृत सीमा क्या है
0: बिल्कुल
1: और यदि वो आवश्यकता से अधिक मात्रा में उस पीने के पानी में उपलब्ध हैं तो हमारे शरीर पे उसके क्या प्रभाव होंगे
0: बिल्कुल
1: तो पहले घटक की यदि हम बात करें कि रंग गंध और स्वाद ये कैसा होना चाहिए
0: बिल्कुल
1: तो रंग स्पष्ट होना चाहिए यानी कि पानी साफ दिखाई देना चाहिए गंदा या मटमेला ना हो
0: बिल्कुल
1: गंध की बात करें तो वो गंधहीन होना चाहिए और स्वाद की बात करें तो वो स्वादहीन होना चाहिए
0: जी जी
1: वो नमकीन है खारा है हल्का सा ऐसा है जो जीभ पे जाके किसी तरह से उसको तकलीफ दे रहा है या गले में तकलीफ दे रहा है तो स्वादहीन हो और उसका कोई प्रभाव न हो
0: बिल्कुल
1: यदि ऐसा होता है तो उसके मतलब है कि उसमें कोई चीज है जो आवश्यकता से अधिक मात्रा में है जो हमारे स्वास्थ्य और शरीर के लिए स्वीकार्य नहीं है
0: बिल्कुल सर
1: तो इसका प्रभाव ये होगा कि वो एक तो पीने में जो है अच्छा नहीं लगेगा मनोवैज्ञानिक रूप से हमारा दिमाग या शरीर उसको पीने की अनुमति नहीं देगा
0: बिल्कुल
1: अब इसी तरह यदि हम घुलनशील ठोस पदार्थों की बात करें तो इनकी जो सीमा है वो अधिकतम 500 मिलीग्राम प्रति लीटर है अगर घुलनशील ठोस इसमें ज्यादा है स्वीकृत सीमा से तो इससे भी पानी का स्वाद खराब आता है और सीधे सीधे इसका असर जो है वो हमारे गुर्दों पे होता है
0: बिल्कुल
1: और अधिक लंबे समय तक इस तरह का पानी पीने से हमको गुर्दे से संबंधित किसी तरह की परेशानी होने की संभावना बढ़ जाती है
0: बिल्कुल
1: इसमें नाइट्रेट भी होता है जिसकी स्वीकृत मात्रा 45 मिलीग्राम प्रति लीटर है
0: बिल्कुल
1: यदि इस तरह का पानी जिसमें नाइट्रेट 45 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा होगा तो इसका सबसे पहला असर जो होता है वो बच्चों में होता है
0: बिल्कुल
1: तो बच्चों में एक बीमारी होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसको कहा जाता है ये बीमारी के होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर लंबे समय तक इस तरह का पानी उनको पिलाया जाए
0: बिल्कुल
1: फ्लोराइड को हम अच्छे तरीके से जानते हैं, जो 1 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा पानी के अंदर नहीं होना चाहिए। यदि ज्यादा भी है तो 1.5 मिलीग्राम ये उसकी उच्चतम सीमा है। इससे ज्यादा यदि वो हुआ तो इसका असर हमारे शरीर पे जो होता है वो हमारी हड्डियों पे, दांतों पे, इन पे असर होता है। तो दांतों पे लाल रंग के निशान हो जाते हैं, आड़े, इसके साथ ही जो है हड्डियां टेढ़ा होना शुरू हो जाती है, जिसको हम धनुषाकार की हड्डियां बोलते हैं। इसी तरह से आर्सेनिक है जो बहुत ही जहरीला पदार्थ माना जाता है, अगर ये 1 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा है तो इससे हमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है और तंत्रिका प्रणाली हमारी जो है प्रभावित होती है, जिसके कारण कई बार समुदाय के सदस्यों में निर्णय ले पाने की क्षमता का अभाव हो जाता है।
0: बिल्कुल सही।
1: इसी तरह से आयरन जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, इसका भी संतुलित मात्रा में होना जरूरी है। 0.3 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा यदि ये पानी के अंदर पाया जाता है तो सामान्य रूप से पानी का रंग जो है वो लाल दिखाई देता है।
0: बिल्कुल।
1: इसका स्वाद खराब होता है और इस तरह से सीधे तौर पे आयरन को पीना हमारे शरीर के लिए जो है नुकसानदायक होता है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आप भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार किस तरीके से पानी की गुणवत्ता को हम समझ सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं, तो यहीं अब हम जानना चाहेंगे कि शुद्ध जल क्या होता है और साथ ही जल जनित रोग के कारण लक्षण क्या होते हैं और बचाव के उपाय हम क्या कर सकते हैं।
1: शुद्ध जल को यदि हम बहुत आसान शब्दों में समझना चाहें तो सीधा सा है कि रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, इस तरह का जो जल है वो सामान्य रूप से शुद्ध माना जाता है।
0: बिल्कुल।
1: अगर हम उसको पिए तो वो स्वाद में अच्छा हो और स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचाए।
0: जी बिल्कुल।
1: और लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सके। कई बार हम जिस पीने के पानी को अपने टंकियों में इकट्ठा करते हैं, हम देखते हैं कि बहुत ही जल्दी उसमें काई जमने लगी है या इस तरह की कुछ चीजें होने लगी हैं, तो उसे हम शुद्ध जल नहीं मान सकते।
0: बिल्कुल।
1: तो जल जनित रोग कारण लक्षण और बचाव की यदि हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इनसे होने वाली बीमारियां क्या है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है।
0: बिल्कुल।
1: और सबसे महत्वपूर्ण बचाव। तो बीमारी है हैजा।
0: जी बिल्कुल।
1: कारण है दूषित जल, इसके लक्षण है उल्टी होना, दस्त लगना, ये इसके लक्षण है।
0: बिल्कुल।
1: इससे बचाव के लिए हमें उबला हुआ साफ पानी ठंडा करके पीना है। टाइफाइड, ये पानी में एक बैक्टीरिया होता है जिसको सल्मोनेला बैक्टीरिया बोलते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसी के कारण जो है शुरुआत में बुखार आता है, कमजोरी लगती है और ये टाइफाइड में परिवर्तित हो जाता है।
0: जी जी।
1: इसके लिए सबसे आसान उपाय है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्रों में या गांव में आशा कार्यकर्ता के पास क्लोरीन की गोलियां मिल जाती हैं, तो उनसे वो क्लोरीन की गोलियां लेके हमारे पीने के पानी के बर्तन में, मटके में, जहां भी आप उसे भंडारण कर रहे हैं वहां पे रखें और उनकी बताई हुई मात्रा के अनुसार उतनी पानी में उतनी गोलियां डाल दें, उसको कुछ समय रहने दें, उसके बाद पानी को हिला दें और फिर पानी को शांत रहने दें। इससे आपके पानी में जो सल्मोनेला बैक्टीरिया है उससे आपका बचाव होगा।
0: बिल्कुल सर।
1: हेपेटाइटिस की यदि बात करें तो ये भी दूषित जल यानी कि संक्रमित या असुरक्षित पानी पीने से होता है, जिससे पीलिया की संभावना होती है या यकृत में जो है किसी तरह की परेशानी होने की संभावना रहती है। तो हेपेटाइटिस के लिए एक तो टीकाकरण भी होता है, तो बच्चों में इसका टीकाकरण करवाना चाहिए और दूसरा इस तरह की समस्या होने पे सामान्य सी बात है कि पानी को उबाल के ठंडा करके फिर पिया जाए, पिलाया जाए।
0: बिल्कुल।
1: पीलिया एक वायरल संक्रमण के कारण होता है। इससे होने वाले लक्षण जो हैं आंख और पेशाब, ये दोनों जो है पीले रंग के हो जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसके लिए जरूरी है कि डॉक्टर को दिखाया जाए और घर में हम जो पानी पी रहे हैं उसकी गुणवत्ता की जांच कराई जाए और शुद्ध पानी पिया जाए, चाहे पानी को उबाल के पिए, चाहे पानी में क्लोरीन की गोलियां डाल के उसको शुद्ध करें, ये जरूरी है। इसी तरह दस्त है, ये भी एक बैक्टीरिया या वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें हमको दस्त लगते हैं, तो इस स्थिति में शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है, तो शुद्ध उबले हुए पानी में आप थोड़ा सा नमक, थोड़ी शक्कर और चाहे तो नींबू मिला के भी थोड़ा थोड़ा पानी अगर मरीज को देंगे तो घरेलू स्तर पे ये उपाय उसके लिए बेहतर है और वो आराम करे।
0: बिल्कुल।
1: फ्लोरोसिस की यदि बात करें तो ये फ्लोराइड से होता है, जिसके हम बात कर चुके हैं कि हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, दांत पीले हो जाते हैं, दांतों पे लाइंस पड़ जाती हैं। तो इसके लिए कम फ्लोराइड वाला जल पिए, या जिस जल को हम पी रहे हैं, जिस हैंडपंप से पानी को ले रहे हैं, जिस कुएं से पानी को ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि वर्षा जल को संग्रहित करके रखें और उस पानी में जो हम हमारे कुएं या हैंडपंप या ट्यूबवेल से ला रहे हैं उसमें कम से कम 50-60% शुद्ध वर्षा जल मिलाएं और फिर उस पानी को पिए, जिससे फ्लोराइड की मात्रा उसमें कम हो जाएगी और आसानी से जो है हम फ्लोरोसिस की बीमारी से बच सकेंगे।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, उसके क्या कारण होते हैं और क्या उपाय हम कर सकते हैं। यही सर, बातें बहुत अच्छी चल रही है कार्यक्रम में। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सामुदायिक स्तर पर हम क्या प्रयास कर सकते हैं।
1: तो ये वास्तविकता में बहुत जरूरी बात है। क्या करें सुरक्षित पेयजल के लिए, जो है हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: तो सबसे पहली चीज है, जिस स्रोत का पानी हम पीने के लिए उपयोग करते हैं उस स्रोत को बहुत साफ रखें, उसके आसपास गंदगी न होने दें, पानी जमा न होने दें और अन्य प्रकार की गंदगी ना होने दे, जैसे पशुओं का मल है या इस तरह की कोई चीजें हैं, उसके बाजू में कूड़ा करकट डालना या उखेड़े का ढेर लगाना, ये जल को दूषित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अगर कुआ है तो कोशिश करें कि उसको ढक के रखें, क्योंकि कुओं के अंदर कई प्रकार के पक्षी जो है अपना घोंसला बनाते हैं और कई बार दुर्घटनावश वो पक्षी कुएं में गिर जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है वो उसी में जो है, तो कुओं को ढक के रखें तो अन्य प्रकार की गंदगी भी होने से बचा रहेगा और कुएं का पानी स्वच्छ रहेगा।
0: बिल्कुल सर।
1: हैंडपंप के पास जो सामान्य रूप से प्लेटफॉर्म होता है उसमें जल निकासी को जो है सुनिश्चित करें और आसपास की जगह को साफ रखें।
0: जी बिल्कुल।
1: अगर टंकी या कंटेनर में हम पानी को इकट्ठा करते हैं तो सप्ताह में कम से कम एक बार उसे साफ करें और फिर से भरें। इसी तरह से हमारे घर में जो बर्तन हैं जिसमें हम पीने के लिए पानी को रखते हैं उसको ढक के रखें। पानी निकालने के लिए हम हमेशा डंडी वाले लोटे या ग्लास का उपयोग करें, जिससे कि पानी के अंदर हमारे हाथ या उंगलियां न डूबे।
0: जी जी।
1: क्योंकि कई बार हमारे हाथ या उंगलियों में यदि हम अचानक बाहर से आए, बहुत तेज प्यास लगी है और इस स्थिति में यदि हाथ को उसमें डुबा दिया जाता है तो कई प्रकार के विषाणु जो है उस पानी में प्रवेश कर जाएंगे जो

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसे स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के पहले 1000 दिन में पोषण के महत्व को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: अक्सर हम सोचते हैं कि बच्चे का विकास उसके जन्म के बाद शुरू होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि एक स्वस्थ और मजबूत जीवन की नींव बच्चे के जन्म से पहले ही पड़ जाती है।
0: बिल्कुल,
1: माँ के गर्भ में आने के पहले दिन से लेकर बच्चे के 2 वर्ष पूरे होने तक का समय लगभग 1000 दिनों का होता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे बच्चे के जीवन का स्वर्णिम अवसर मानते हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि इसी अवधि में मस्तिष्क का सबसे तेज विकास होता है।
0: जी हाँ,
1: शरीर की नींव मजबूत होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने लगती है। यदि इस समय सही पोषण मिल जाए तो बच्चा शारीरिक मानसिक और बौद्धिक रूप से बेहतर विकास कर सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर हम हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना जरूरी है, तो क्यों ना शुरुआत में दोस्तों को पहले एक प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दें हम।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं बच्चों के पहले 1000 दिनों में पोषण का क्या महत्व होता है।
1: बिल्कुल,
0: तो अंजलि जी, हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे कि पहले 1000 दिनों में पोषण का मतलब केवल अधिक भोजन देना नहीं होता, बल्कि ऐसा संतुलित और पौष्टिक आहार देना होता है साथियों, जिससे माँ और बच्चे दोनों को जरूरी पोषक तत्व मिल सके।
1: जी जी।
0: यदि गर्भवती महिला का भोजन संतुलित नहीं होगा तो उसका प्रभाव सीधे बच्चे के विकास पर पड़ेगा। इसलिए दोस्तों परिवार की ये जिम्मेदारी बनती है कि गर्भवती महिला को पौष्टिक भोजन के साथ साथ पर्याप्त आराम और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहे।
1: बिल्कुल, यही कशिश अब बात आती है कि गर्भावस्था के दौरान माँ को आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा में जरूरत होती है। हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दालें, दूध, दही, मौसमी फल, साबुत अनाज और स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ माँ और बच्चे दोनों के लिए लाभदायक होते हैं। यदि माँ स्वयं स्वस्थ रहेगी कशिश, तभी बच्चा भी स्वस्थ जन्म ले सकेगा। श्रोता साथियों, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, बच्चे के लिए अमृत के समान होता है।
0: जी हाँ।
1: इसमें ऐसे पोषक तत्व और रोगों से बचाने वाले तत्व होते हैं कशिश, जो नवजात शिशु को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना और पिछले 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना बहुत आवश्यक माना जाता है। कहना चाहेंगे कशिश श्रोता साथियों से कि 6 महीने तक बच्चे को किसी भी प्रकार का पानी, शहद, जन्म घुटी या अन्य भोजन देने की आवश्यकता नहीं होती है।
0: बिल्कुल,
1: माँ का दूध ही उसके लिए पूर्ण आहार होता है। यह न केवल बच्चे की भूख मिटाता है श्रोता साथियों, बल्कि उसके मस्तिष्क, हड्डियों और रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
0: जी बिल्कुल श्रोता साथियों, इसी के साथ अगर आपको बताएं तो जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब केवल माँ का दूध पर्याप्त नहीं रहता। इस समय पूरक आहार की शुरुआत करनी चाहिए। साथियों, पूरक आहार का मतलब होता है ऐसा घर का ताजा, नरम और पौष्टिक भोजन जो बच्चे की उम्र के अनुसार पर्याप्त हो।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि दाल, खिचड़ी, दलिया, रागी, चावल, मसली हुई सब्जियां, मौसमी फल और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ। श्रोता साथियों, ये सभी चीजें हम धीरे धीरे बच्चों के भोजन में शामिल कर सकते हैं। साथ ही 2 वर्ष उससे अधिक तक स्तनपान जारी रखना भी बच्चों के लिए लाभदायक माना जाता है। हम देखते हैं अंजलि जी कि कई परिवारों में ये गलत धारणा होती है कि बच्चा कम खाता है, इसलिए उसे बार बार पैकेट वाले खाद्य पदार्थ या मीठी चीजें देनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन दोस्तों ऐसे खाद्य पदार्थ पेट तो भर देते हैं बच्चों का, पर शरीर को जरूरी पोषण नहीं दे पाते। इसलिए बच्चे को ताजा, घर का बना हुआ और संतुलित भोजन हमें देना चाहिए, ये उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है।
1: जी हाँ, यही कशिश बात आती है कि पहले 1000 दिनों में यदि बच्चे को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है तो कुपोषण, वजन कम, लंबाई का कम बढ़ना, बार बार संक्रमण होना, सीखने की क्षमता में कमी और भविष्य में कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।
0: जी हाँ।
1: इन कमियों की भरपाई बाद में करना कठिन हो जाता है श्रोता साथियों, इसलिए शुरुआत से ही सही पोषण देना सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। पोषण का संबंध केवल भोजन से नहीं बल्कि स्वच्छता से भी होता है। यदि बच्चे को कशिश पौष्टिक भोजन मिले लेकिन पीने का पानी दूषित हो, हाथ साफ न हो या आसपास गंदगी हो तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और शरीर से मिलने वाले पोषक तत्वों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए हाथ धोने की आदत, साफ बर्तन, स्वच्छ पानी और साफ वातावरण भी अच्छे पोषण का हिस्सा है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से बातें हमारे श्रोता साथियों से बहुत अच्छी चल रही है, प्रथम 1000 दिनों को लेकर,
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।
2: चिटकी टक टक चिक टक, चिटकी टक टक चिक, चिटकी टक

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बच्चों के हजार दिनों के पोषण को लेकर बातचीत कर रहे हैं, यहीं अब बात आती है कशिश के माता पिता के साथ साथ दादा दादी नाना नानी और परिवार के अन्य सदस्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1: बिल्कुल,
0: यदि पूरा परिवार बच्चों के पोषण का ध्यान रखे, समय पर भोजन दे, प्यार और धैर्य के साथ खिलाए और उनकी बढ़त पर नियमित ध्यान दे तो बच्चे का विकास अधिक संतुलित होता है।
1: बिल्कुल,
0: आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी इस दिशा में महत्वपूर्ण सहयोग देते हैं। नियमित वजन मापना, टीकाकरण, पोषण संबंधित सलाह और स्वास्थ्य जांच जैसी सेवाओं का लाभ हर परिवार को लेना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: यदि बच्चे का वजन या विकास सामान्य से कम लगे तो समय पर विशेषज्ञ की सलाह लेना आवश्यक है। यह भी याद रखना चाहिए कशिश के हर महंगा भोजन पौष्टिक नहीं होता। हमारे गांव और स्थानीय क्षेत्रों में उपलब्ध दालें, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, मूंगफली, तिल, गुड़, मौसमी फल और हरी सब्जियां भी बच्चों के लिए बहुत

0: पौष्टिक होती हैं। यही जानकारी और संतुलित आहार, सही जानकारी और संतुलित आहार से कम खर्च में भी बच्चों को अच्छा पोषण दिया जा सकता है।
1: जी हाँ दिलीप जी, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बच्चे के जीवन के पहले जो 1000 दिन होते हैं वो केवल एक समय अवधि नहीं है,
0: बिल्कुल,
1: बल्कि उसके पूरे भविष्य की नींव है। साथियों, इस दौरान दिया गया सही पोषण, उचित देखभाल, स्तनपान, पूरक आहार, स्वच्छता और परिवार का स्नेह, ये सभी मिलकर बच्चे को स्वस्थ, बुद्धिमान और आत्मविश्वास के साथ साथ मजबूत बनाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यदि हम श्रोता साथियों इस महत्वपूर्ण समय का सही उपयोग करेंगे तो हम केवल एक बच्चे का नहीं बल्कि पूरे समाज के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे होंगे।
0: जी हाँ, यही श्रोता साथियों बात आती है कि पहले 1000 दिनों के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवधि में बच्चे के मस्तिष्क का लगभग 80% विकास हो जाता है। यही वह समय है जब बच्चा अपने आसपास की आवाजों को पहचानना, चेहरे को याद रखना, मुस्कुराना, प्रतिक्रिया देना, बोलना और धीरे धीरे नई चीजों को सीखना शुरू करता है।
1: बिल्कुल,
0: यदि इस समय उसे पर्याप्त और संतुलित पोषण नहीं मिलता तो इसका प्रभाव केवल उसके शरीर पर ही नहीं बल्कि उसके सीखने की क्षमता, याददाश्त, भाषा विकास और भविष्य की शिक्षा पर भी पड़ सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए समय का सही पोषण बच्चों के पूरे जीवन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी समझना जरूरी है कि पोषण केवल पेट भरने का नाम नहीं है। कई बार बच्चों का पेट तो भर जाता है लेकिन उनके शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते। यदि भोजन में केवल चावल या रोटी हो, दाल, हरी सब्जियां, फल, दूध या अन्य पौष्टिक चीजें न हो तो बच्चा धीरे धीरे पोषण की कमी का शिकार हो सकता है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए भोजन में विविधता होना आवश्यक है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सस्ते और पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी बच्चों के लिए बहुत लाभदायक हो सकते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि आजकल बाजार में मिलने वाले रंग बिरंगे पैकेट वाले खाद्य पदार्थ जो हैं वो बच्चों को आकर्षित करते हैं। कई बार माता पिता भी बच्चों की जिद पूरी करने के लिए अंजलि जी उन्हें चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट्स के साथ साथ मीठे पेय पदार्थ बार बार दे भी देते हैं।
0: जी जी,
1: लेकिन ऐसे खाद्य पदार्थ श्रोता साथियों बच्चों को सिर्फ स्वाद दे देते हैं पर शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। धीरे धीरे यही आदत मोटापा, दांतों की समस्या, भूख कम लगना और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन जाता है। इसलिए बच्चों को बचपन से ही घर का बना ताजा और संतुलित भोजन पसंद करना आप सिखाएं। हम कह सकते हैं कि पहले 1000 दिनों में बच्चे को प्यार और स्नेह के साथ भोजन कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि बच्चे को डांट कर, डरा कर या फिर जबरदस्ती हम खिलाते हैं तो वह भोजन से दूरी बनाने लगता है।
0: जी हाँ,
1: इसके अलावा यदि परिवार धैर्य के साथ मुस्कुराते हुए और बच्चे की गति के अनुसार भोजन कराए तो बच्चा भोजन को सकारात्मक अनुभव के रूप में अपनाएगा। श्रोता साथियों, ये आदत आगे चलकर उसके स्वस्थ खानपान की नींव बन सकती है।
0: बिल्कुल कशिश, यही श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि इस दौरान नियमित स्वास्थ्य जांच भी बहुत आवश्यक है। बच्चे का वजन, लंबाई, विकास की समय समय पर जांच कराते रहने से हमें पता चलता है कि वह सही गति से बढ़ रहा है या नहीं।
1: जी,
0: यदि किसी प्रकार की कमी दिखाई दे तो समय रहते उसे दूर किया जा सकता है। इसी तरह कशिश, गर्भवती महिलाओं को भी नियमित स्वास्थ्य जांच, आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां, चिकित्सीय सलाह मिलना अत्यंत आवश्यक है। याद रखिए कि किसी भी देश का भविष्य उसके बच्चों पर निर्भर करता है और बच्चों का भविष्य उनके पहले 1000 दिनों की देखभाल पर।
1: बिल्कुल,
0: यदि इस अवधि में उन्हें सही पोषण, स्वच्छ वातावरण, माँ का स्नेह, परिवार का सहयोग और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहे तो वे आगे चलकर न केवल स्वस्थ नागरिक बनते हैं बल्कि शिक्षा, रोजगार और समाज के विकास में भी बेहतर योगदान देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए पहले 1000 दिनों में किया गया हर छोटा प्रयास आने वाले कई वर्षों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव बन जाता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ,
1: तो विदा हम जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिंदगी पर बात की शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागुर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है। सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
3: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके। शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
4: हिंडो स्कूल जा अपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
3: होवे जयवरे सब सोरा भरेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा। शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को।
1: जी हाँ, और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। जैसा कि दोस्तों जब भी हम कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ते हैं तो बातचीत आपसे ढेर सारी होती है एक नए विषय को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: आज भी कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं एक नए विषय को लेकर। जागृति जी, आज हमारे युवा साथियों से हमारे बातचीत का विषय है दिखावे के दौर में पैसे बचाना सबसे बड़ा हुनर होता है।
1: बिल्कुल कशिश, जैसे कि धन कमाना बुद्धिमानी है लेकिन धन बचाना दूरदर्शिता है। आज का युग उपभोग और प्रदर्शन का युग बन गया है। हम देखते हैं कि आधुनिक जीवन में व्यक्ति की सफलता का मूल्यांकन उसके ज्ञान चरित्र या संस्कार से अधिक उसके पहनावे, मोबाइल, गाड़ी, घर और महंगे शौकों से किया जाने लगा है।
0: बिल्कुल,
1: सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ा दिया है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी का सबसे आकर्षक पक्ष चुनता है, वो आकर्षक पक्ष दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहता है। ऐसे समय में वो अपनी आय के अनुसार जीवन जीना और अनावश्यक खर्चों से बचत करना वास्तव में सबसे बड़ा हुनर है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर हम साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं पहले एक प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ,
0: तो दोस्तों आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: श्रोताओं लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। और जैसा कि गीत से पहले आपको विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि दिखावे के दौर में पैसा बचाना सबसे बड़ा हुनर है।
1: बिल्कुल
0: कशिश, हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें कहना चाहेंगे कि पैसा केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन नहीं है, बल्कि भविष्य की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का आधार भी है।
1: बिल्कुल,
0: जो व्यक्ति कम आय में भी बचत करना सीख लेता है वही जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी मजबूती से खड़ा रहता है।
1: जी हाँ जागृति जी, और जैसा कि आज का समय सोशल मीडिया का समय है तो ऐसे में हर दिन हमारी मोबाइल स्क्रीन पर किसी न किसी की नई बाइक या फिर किसी का महंगा फोन या किसी की विदेशी यात्रा, शानदार पार्टी या ब्रांडेड कपड़ों की तस्वीरें दिखाई देती हैं।
0: बिल्कुल
1: साथियों, ये धीरे धीरे सब हमारी सोच को प्रभावित करने लगता है और हमें ऐसा लगने लगता है कि अगर हमारे पास भी ये सब नहीं है तो शायद हम पीछे हैं। लेकिन श्रोता साथियों, सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में जीवन की सफलता महंगी चीजों से ही तय होती है? क्या खुश रहने के लिए जागृति जी केवल दिखावा जरूरी है या फिर अपनी कमाई का सही उपयोग और भविष्य के लिए बचत करना भी असली समझदारी है?
0: बिल्कुल,
1: हम देख सकते हैं कि दिखावे की संस्कृति वर्तमान में बढ़ रही है। ऐसा क्यों श्रोता साथियों? क्योंकि पहले लोग अपनी जरूरत के अनुसार खर्च करते थे, आज लोग जो हैं वो दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करने लगे हैं। जागृति जी, सोशल मीडिया ने तुलना की आदत तो बढ़ा ही दी है, अब लोग अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की राय को महत्व देते हैं। कई युवा अपनी पहली नौकरी लगते ही महंगा मोबाइल खरीद लेते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनने लगते हैं और हर सप्ताह बाहर का खाना खाने लगते हैं।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, ऐसी चीजों पर वे खर्चा करते हैं जिनकी वास्तव में जरूरत ही नहीं होती है।
0: बिल्कुल,
1: कई बार ये खर्च अपनी आय से भी अधिक हो जाता है उनके लिए और यहीं से दिखावे की शुरुआत होती है। जागृति जी,
0: बिल्कुल कशिश, आज हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी जिंदगी का केवल चमकदार हिस्सा दिखाते हैं।
1: जी जी,
0: जैसा कि आपने बताया था अभी कि महंगी यात्राएं, ब्रांडेड वस्तु, आलिशान होटल और लग्जरी जीवन देखकर कई लोग स्वयं को उनसे तुलना करने लगते हैं। दोस्तों, ये तुलना व्यक्ति को अनावश्यक खर्च करने के लिए प्रेरित करती है।
1: बिल्कुल,
0: कई बार लोग केवल फोटो खिंचवाने या वीडियो बनाने के लिए महंगे कपड़े खरीदते हैं या ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां उनकी आर्थिक क्षमता साथ नहीं देती।
1: जी हाँ,
0: दिखावे की आदत केवल खर्च नहीं बढ़ाती श्रोताओं, बल्कि आर्थिक अस्थिरता भी पैदा करती है।
1: बिल्कुल,
0: क्रेडिट कार्ड का बहुत ज्यादा उपयोग करना, बिना आवश्यक के ऑनलाइन खरीदारी करना, कर्ज लेकर शादी और समारोह करना, दूसरों की बराबरी करने की मानसिकता, साथ ही बचत का समाप्त हो जाना, ऐसे लोग अचानक आने वाली बीमारी, नौकरी जाने या किसी आपातकालीन परिस्थितियों में सबसे अधिक परेशान हो जाते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। ऐसे में श्रोता साथियों, हर व्यक्ति मेहनत करके पैसा कमाता है।
0: जी हाँ,
1: लेकिन हर व्यक्ति पैसा बचा नहीं पाता। जागृति जी, पैसा बचाना केवल बैंक में रकम जमा करना नहीं होता साथियों, बल्कि अपनी इच्छाओं और जरूरतों के बीच अंतर समझना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: जो व्यक्ति अपनी आय का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखता है ना जागृति जी, वही समय आने पर आर्थिक रूप से मजबूत बनता है।
0: बिल्कुल,
1: और कहावत भी कही गई है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इसी तरह दोस्तों, छोटी छोटी बचत एक दिन बहुत बड़ी पूंजी बन जाती है।
0: बिल्कुल कशिश, पैसा बचाना क्यों जरूरी है अगर इसको लेकर हम बताएं हमारे श्रोता साथियों को, तो दोस्तों पैसा बचाना हमारे आपातकालीन परिस्थितियों के लिए भी सही रहता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी समय एक जैसा नहीं रहता है।
1: जी
0: कभी
1: जी,
0: कोई बीमारी आ जाती है, कभी कोई दुर्घटना, कभी हमारी नौकरी छूट जाती है, कोई पारिवारिक संकट, उसमें बचत सबसे बड़ी सहायता बन जाती है हमारी।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही आत्मनिर्भरता, यानी कि जिसके पास बचत होती है वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है। आर्थिक सुरक्षा व्यक्ति को तनाव से मुक्त भी रखती है। साथ ही घर खरीदना हो, बच्चों की शिक्षा हो, व्यवसाय शुरू करना हो या सेवानिवृत्ति, ये सब बचत से ही संभव होता है।
1: बिल्कुल,
0: आज का युवा ऑनलाइन शॉपिंग करता है, फूड डिलीवरी, महंगे मोबाइल और फैशन पर काफी खर्च कर रहे हैं। हम देखते हैं कशिश की युवा कम उम्र से ही बचत की आदत विकसित करेंगे तो वो भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। हर महीने आय का कम से कम 20% बचाने की आदत हमारे जीवन को बदल सकती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं युवा साथियों से कि दिखावे के दौर में पैसा बचाना सबसे बड़ा हुनर है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ,
1: तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों इस गीत के बाद फिर से हम रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि बातचीत गीत से पहले भी बहुत अच्छी चल रही थी साथियों, अब यही जानते हैं कि दिखावे का सबसे बड़ा नुकसान क्या है।
1: जी हाँ,
0: तो जागृति जी, दिखावे की आदत धीरे धीरे आर्थिक तनाव पैदा करती है। कई लोग केवल दूसरों की बराबरी करने के लिए उधार लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का ज्यादा उपयोग करते हैं और ईएमआई पर ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी आवश्यकता उन्हें नहीं होती है।
1: बिल्कुल।
0: फिर क्या होता है कि कुछ समय बाद वही खर्च चिंता, तनाव और कर्ज का कारण बन जाता है। साथियों, जो खुशी कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए मिली थी, उसकी कीमत कई महीनों तक उन्हें चुकानी पड़ती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए बचत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जैसा कि बताया था कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। भविष्य में कई बीमारियां आ सकती है, कभी हमारी नौकरी चली जा सकती है, तो ऐसे में श्रोता साथियों, हमें अपनी पूंजी को कह सकते हैं कि निवेश करके रखना चाहिए, ताकि कभी अगर हमें उसकी जरूरत पड़े तो हम उसका इस्तेमाल सही जगह पर कर सकें।
1: जी हाँ कशिश, भारत के अनेक महान नेताओं ने सादगीपूर्ण जीवन जिया था। जैसे कि महात्मा गांधी ने सादगी को अपनी पहचान बनाया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उच्च पद पर रहते हुए भी सादा जीवन जिया। श्रोताओं, इनका जीवन हमें बताता है कि महानता दिखावे से नहीं बल्कि विचारों और कर्मों से आती है।
0: जी जी।
1: आय के अनुसार हमें बजट बनाना होगा, पहले बचत करनी है फिर हमें खर्च करना है। अनावश्यक ऑनलाइन खरीदारी से बचना होगा, क्रेडिट कार्ड का सीमित उपयोग करना होगा जैसा कि आपने बताया था।
0: जी जी।
1: अगर ये सारी चीजें हम करेंगे श्रोता साथियों, तो हम कह सकते हैं कि हम दिखावे से बच सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहेंगे दोस्तों कि जब हम आवश्यकता से अधिक वस्तुएं खरीदते हैं तो संसाधनों का भी और अधिक दोहन होता है।
0: जी हाँ।
1: कम खरीदना केवल पैसा नहीं बचाता बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी करता है। इस प्रकार बचत आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों दृष्टियों से लाभदायक है। कशिश, जिस व्यक्ति के पास बचत होती है वो कठिन समय में किसी के सामने हाथ फैलाने के मजबूर नहीं होता।
0: बिल्कुल।
1: बचत हमें आत्मविश्वास देती है और यह व्यक्ति को स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति भी देती है।
0: जी हाँ जागृति जी, ऐसे में हमारे युवा साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, अगर आपकी पहली नौकरी आपको लगती है तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में बचत करने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि बहुत से युवा ऐसा सोचते हैं जागृति जी कि अभी तो मेरी उम्र ही क्या है,
1: बिल्कुल
0: बाद में बचत कर लूंगा। लेकिन सच तो ये है कि बचत की सबसे अच्छी शुरुआत पहली कमाई से ही होती है। अगर शुरुआत से ही आय का 10-20% बचाने की आदत बन जाए श्रोता साथियों, तो भविष्य काफी सुरक्षित हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: याद रखिए कि हर चमकती चीज जरूरी नहीं होती। अगर आपका मोबाइल सही चल रहा है तो केवल नया मॉडल आने पर उसे बदलना समझदारी नहीं है। अगर कपड़े पर्याप्त हैं श्रोता साथियों, तो हर ट्रेंड के पीछे भागना जरूरी नहीं है। और अगर घर का खाना उपलब्ध है तो केवल सोशल मीडिया पर तस्वीर डालने के लिए बार बार बाहर खाना खाना भी सही निर्णय नहीं हो सकता।
1: जी हाँ।
0: समझदार व्यक्ति अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं जागृति जी। आपसे कहना चाहेंगे युवा साथियों कि लोग आपके कपड़ों को कुछ मिनट ही देखेंगे,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन आपका व्यवहार, ईमानदारी और मेहनत जीवन भर याद रखते हैं।
1: जी हाँ।
0: दुनिया में सफल लोग केवल इसलिए सफल नहीं बने क्योंकि उन्होंने महंगी चीजें खरीदी है। इसलिए जागृति जी, वे सफल हुए क्योंकि उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिए हैं, मेहनत को अपनी संसाधनों का सही उपयोग किया है।
1: जी हाँ कशिश, एक उदाहरण के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे कि दोस्तों दो मित्र थे, राहुल और विवेक। दोनों की आय भी समान थी। राहुल हर महीने महंगे कपड़े, मोबाइल और घूमने फिरने पर पैसा खर्च कर देता था।
0: बिल्कुल।
1: दूसरी ओर विवेक अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से बचाता और निवेश करता था। कुछ वर्षों बाद अचानक कंपनी बंद हो गई कशिश। राहुल के पास ना बचत थी और ना कोई सहारा, उसे उधार लेना पड़ा। वहीं विवेक ने अपनी बचत के बल पर नया छोटा व्यवसाय शुरू किया और कुछ समय बाद सफल उद्यमी बन गया। ये कहानी हमें यही बताती है कशिश कि भविष्य सुरक्षित करने वाला व्यक्ति वही है जो कमाई के साथ बचत भी करता है।
0: जी हाँ।
1: दिखावे की चमक क्षणिक होती है लेकिन बचत की ताकत जीवन भर साथ रहती है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं, सच्ची समृद्धि महंगे सामान में नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और संतुलित जीवन में है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर आय के अनुसार जीवन जीना सीख लेता है, वही वास्तव में सफल और बुद्धिमान कहलाता है।
0: बिल्कुल।
1: आज आवश्यकता इस बात की नहीं है श्रोता साथियों कि लोग हमें कितना अमीर समझते हैं, बल्कि इस बात की है कि हम अपने भविष्य को कितना सुरक्षित बना रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: अगर हम दिखावे की दौर से बाहर निकलकर सादगी, विवेक और बचत को अपनाएंगे तो न केवल हमारा जीवन सुरक्षित होगा बल्कि समाज भी आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनेगा।
0: जी हाँ।
1: तो दोस्तों यही कहना चाहेंगे कि दिखावे से क्षणिक प्रशंसा मिल सकती है।

सकता है हमारे युवा साथियों के लिए, ये भी हम जान पाए हैं। अब जैसा कि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460050।

0: एक दो तीन चार।
1: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारे आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
0: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये हैं ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो चूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
4: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
5: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है मित्रता के महत्व को लेकर।
0: बिल्कुल
1: अंजलि, जैसे कि जीवन में धन पद और प्रसिद्धि कभी भी मनुष्य को पूर्ण सुख नहीं दे सकती, लेकिन एक सच्चा मित्र कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी आसान बना देता है।
0: जी हाँ
1: श्रोताओं, मित्रता केवल दो लोगों का साथ नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान, सहयोग और निस्वार्थ प्रेम का ऐसा बंधन है जो जीवन को नई दिशा और नई ऊर्जा देता है। सच्चा मित्र हमारी सफलताओं में खुश होता है और असफलताओं में हमारा सबसे मजबूत सहारा बनता है।
0: जी जी,
1: इसीलिए कहा गया है श्रोताओं कि सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, आज श्रोता साथियों से कार्यक्रम में इस विषय पर हमारी ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे दोस्तों को मनोरंजन करवाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने विषय से अवगत करवाया था आपको कि बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है मित्रता के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, कहा गया है कि सच्ची मित्रता जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होती है।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि मनुष्य जन्म से अकेला आता है और अकेला ही इस संसार से विदा हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोता साथियों, इन दोनों यात्राओं के बीच जो रिश्ते उसके जीवन को अर्थ, आनंद और शक्ति देते हैं, उनमें मित्रता का स्थान सबसे विशेष होता है। मित्रता केवल दो व्यक्तियों का साथ नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान, सहयोग, त्याग और निस्वार्थ प्रेम का ऐसा बंधन है जो जीवन की हर कठिन राह को सरल बना देता है।
0: बिल्कुल।
1: सच्चा मित्र हमारे जीवन का वह दीपक होता है दोस्तों, जो अहंकार के समय आशा का प्रकाश बनकर हमारा मार्गदर्शन करता है। इसलिए कहा गया है कि सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे।
0: बिल्कुल अंजलि, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेले जीवन नहीं जी सकता। उसे अपने विचार साझा करने ही पड़ते हैं, अपने दुख सुख बांटने पड़ते हैं, कठिन समय में सहारा देने वाले किसी व्यक्ति की उसे आवश्यकता होती है और यही आवश्यकता मित्रता के रूप में पूरी होती है।
1: बिल्कुल।
0: सच्ची मित्रता जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति है श्रोताओं, जिसे धन या पद से नहीं खरीदा जा सकता। मित्रता का अर्थ केवल साथ घूमना, फिरना या मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि सच्ची मित्रता तो वो है जिसमें स्वार्थ नहीं हो, बल्कि अपनापन हो, दिखावा नहीं हो, बल्कि विश्वास हो और केवल शब्द नहीं बल्कि कर्म से साथ निभाने की भावना हो।
1: जी जी।
0: एक सच्चा मित्र हमारी खुशियों में मुस्कुराता है और हमारी परेशानियों में सबसे पहले हमारे साथ खड़ा दिखाई देता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब परिवार भी हर समय हमारे साथ नहीं रह पाता, लेकिन एक सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में हमारा मनोबल बढ़ाता है।
0: बिल्कुल।
1: वह हमें निराशा से बाहर निकालता है, सही सलाह देता है और कठिन निर्णय लेने में भी सहायता करता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि मित्रता जीवन को आनंद, उत्साह और आत्मविश्वास से भर देती है। युवा अवस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है जागृति जी। इसी समय व्यक्ति अपने भविष्य का निर्माण करता है। यदि इस समय उसे अच्छे मित्र मिल जाए तो वे उसकी सोच को सकारात्मक बनाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं और लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग देते हैं। वहीं गलत संगति युवाओं को गलत आदतों, समय की बर्बादी और गलत निर्णयों की ओर ले जाती है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति की पहचान उसके मित्रों से ही होती है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि अच्छा मित्र हमारी अच्छाई को बढ़ाता है और हमारी कमियों को सुधारने का प्रयास करता है। वहीं हमारी गलतियों पर वो चुप नहीं रहता, बल्कि प्रेम पूर्वक हमें सही रास्ता दिखाता है।
1: जी जी।
0: इसके विपरीत श्रोता साथी, बुरी संगति व्यक्ति के चरित्र, व्यवहार और भविष्य को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए मित्र चुनते समय केवल व्यवहार नहीं बल्कि उसके संस्कार और विचार, साथ में जीवन मूल्यों को भी समझना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: विश्वास के बिना कोई भी संबंध लंबे समय तक नहीं टिक सकता। मित्रता की सबसे बड़ी शक्ति विश्वास ही है। जब दो मित्र एक दूसरे पर भरोसा करते हैं अंजलि, एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान करते हैं और कठिन समय में वो साथ निभाते हैं, तभी मित्रता मजबूत बनती है।
1: बिल्कुल।
0: झूठ, ईर्ष्या और स्वार्थ मित्रता को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, सच्चा मित्र कभी भी अपने मित्र का अपमान नहीं करता, उसकी सफलता से ईर्ष्या नहीं करता और उसकी असफलता का मजाक नहीं उड़ाता। वह श्रोता साथियों हर परिस्थिति में उसका सम्मान करता है। मित्रता में ईमानदारी होती है, विनम्रता, क्षमा का भाव होना आवश्यक है। छोटी छोटी गलतफहमियों को बातचीत से दूर किया जा सकता है। आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के कारण हजारों लोगों से जुड़ाव होना हमारा आसान हो गया है, लेकिन सच्चे मित्रों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि ऑनलाइन मित्रता उपयोगी हो सकती है लेकिन वास्तविक मित्र वही होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर हमारे साथ खड़े हो।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए हमें आभासी दुनिया से अधिक वास्तविक संबंधों को महत्व देना चाहिए।
0: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हम मित्रता के महत्व को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मित्रता के महत्व को लेकर, जिसमें हमने जाना मित्रता का क्या महत्व है और जीवन में मित्र क्यों जरूरी है और युवाओं के जीवन में मित्रता की क्या भूमिका है, अच्छे मित्र और बुरी संगति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही हमने जाना जागृति जी कि मित्रता में ईमानदारी और सम्मान का क्या महत्व है।
1: बिल्कुल।
0: अब यही बात आती है कि भारतीय संस्कृति में मित्रता के क्या आदर्श हैं। तो श्रोता साथियों, भारतीय संस्कृति में मित्रता के अनेक प्रेरणादायक उदाहरण मिलते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी जागृति जी निस्वार्थ प्रेम और समानता का प्रतीक मानी जाती है। सुदामा निर्धन थे, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी भी उनकी गरीबी को महत्व नहीं दिया।
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने अपने मित्र का सम्मान करते हुए यह सिद्ध किया श्रोता साथियों कि सच्ची मित्रता धन दौलत नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास का आधार होती है।
1: बिल्कुल।
0: इसी प्रकार श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हमें सिखाती है कि मित्र संकट के समय सबसे बड़ा सहयोगी होता है। श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता यह बताती है कि सच्चा मित्र केवल साथ देने वाला नहीं बल्कि सही समय पर सही मार्गदर्शन देने वाला भी होता है।
1: जी हाँ अंजलि, मित्रता हमें सहयोग, त्याग, संवेदनशीलता, धैर्य, सहनशीलता, जिम्मेदारी, ये सारे गुण सिखाती है। श्रोताओं, मित्रों के साथ रहते हुए हम दूसरों की भावनाओं को समझना सीखते हैं।
0: जी जी।
1: हम साझा करना सीखते हैं, दूसरे की सहायता करना और टीम भावना के साथ कार्य करना भी सीखते हैं। और यही गुण हमें आगे चलकर एक अच्छा नागरिक और सफल इंसान बनाते हैं। जब लोगों के बीच मित्रता, सहयोग और विश्वास बढ़ता है, तब समाज में भाईचारा और एकता भी मजबूत होती है। इसी के साथ मित्रता जाति, धर्म, भाषा और आर्थिक स्थितियां जैसी सीमाओं को पार करके लोगों को जोड़ने का कार्य करती है।
0: जी हाँ।
1: और यही भावना समाज को और अधिक शांतिपूर्ण, समरस और प्रगतिशील बनाती है।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि मित्रता को बनाए रखने के लिए नियमित संवाद, पारस्परिक सम्मान और विश्वास और सहयोग की आवश्यकता होती है। श्रोता साथियों, मित्र की बात ध्यान से सुनना, उसके सुख दुख में सहभागी बनना, समय देना और आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना मित्रता को और गहरा बनाता है। मित्रता में स्वार्थ, अहंकार और दिखावे के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: आज का समय श्रोता साथियों जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम देख रहे हैं कि ये जो समय है वो बहुत ज्यादा व्यस्त और प्रतिस्पर्धा से भर चुका है। लोग मानसिक तनाव, अकेलापन और चिंता का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में जागृति जी, एक सच्चा मित्र जो है वो व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है।
1: बिल्कुल।
0: वो निराशा को आशा में बदल सकता है, टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से जगा सकता है और जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकता है। इसलिए आज के दौर में सच्ची मित्रता पहले से भी अधिक आवश्यक हो गई है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि मित्रता जीवन का ऐसा अमूल्य उपहार है जो धन, पद और प्रसिद्धि से कहीं अधिक मूल्यवान है। श्रोताओं, सच्चा मित्र हमारे जीवन की यात्रा को सरल, सुखद और प्रेरणादायी बनाता है।
0: जी हाँ।
1: आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि मित्रता हमारी सफलता में खुश होता है, हमारी असफलता में हमें संभालता है और हर परिस्थिति में वो हमारा विश्वास बनाए रखता है। इसीलिए हमें केवल अच्छे मित्र बनाने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि स्वयं भी ऐसा मित्र बनना होगा जिस पर हर कोई विश्वास कर सके। इसीलिए श्रोता साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कहना चाहेंगे कि हम मित्रता को केवल एक संबंध नहीं बल्कि जीवन का श्रेष्ठ संस्कार बनाएं।
0: बिल्कुल।
1: हम अपने मित्रों के प्रति ईमानदार रहें, संवेदनशील रहें और सहयोगी रहें। समाज में प्रेम, विश्वास और भाईचारे का संदेश फैलाएंगे, क्योंकि जहां सच्ची मित्रता होती है अंजलि, वहाँ जीवन में साहस होता है, विश्वास होता है, मुस्कान होती है और हर कठिनाई को पार करने की शक्ति भी होती है।
0: बिल्कुल।
1: यही सच्ची मित्रता का सबसे बड़ा महत्व है और यही एक सफल, सुखी तथा समृद्ध जीवन की वास्तविक पहचान है।
0: बिल्कुल जागृति जी, मित्रता केवल जीवन का एक संबंध नहीं है बल्कि मानवता का सबसे सुंदर और सबसे मजबूत आधार है।
1: बिल्कुल।
0: एक ऐसा बंधन है श्रोता साथियों जो बिना किसी स्वार्थ, रक्त संबंध, जाति, धर्म, भाषा या आर्थिक स्थिति पर नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान, अपनत्व और सच्ची भावनाओं पर टिका होता है। एक सच्चा मित्र हमारे जीवन में उस छाया की तरह होता है दोस्तों, जो धूप में राहत देता है, अंधकार में आशा जगाता है और कठिन समय में हमारा साहस बनकर खड़ा रहता है।
1: बिल्कुल।
0: जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां भी तभी अधिक आनंद देती है जागृति जी, जब उन्हें बांटने के लिए एक सच्चा मित्र साथ हो। और सबसे बड़ी कठिनाई भी तब छोटी लगने लगती है जब कोई हमारा हाथ थामने वाला हो। आज के समय में भौतिक सुविधाएं, आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया ने लोगों को आपस में जोड़ने का माध्यम तो दिया है, लेकिन दिलों के बीच की दूरी कहीं न कहीं बढ़ा दी है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे दौर में श्रोता साथियों, सच्ची मित्रता का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। हमें ऐसे मित्रों का चयन करना चाहिए जो हमारी अच्छाइयों को प्रोत्साहित करे, हमारी कमियों को सुधारने का साहस रखे और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे।
1: बिल्कुल।
0: उतना ही आवश्यक यह भी है कि हम स्वयं भी ऐसे मित्र बने जिन पर लोग विश्वास कर सके, जिनके साथ लोग निसंकोच अपने मन की बात साझा कर सके और जिन्हें हर परिस्थिति में अपना सहारा मान सके।
1: बिल्कुल अंजलि, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बस यही कहना चाहेंगे कि मित्रता ईश्वर का दिया हुआ वो अनमोल उपहार है जो जीवन को केवल खुशियों से नहीं बल्कि सही दिशा, आत्मविश्वास और मानवीय मूल्यों से भी समृद्ध बनाता है।
0: जी जी।
1: श्रोताओं, सच्चा मित्र हमारे जीवन का वो आईना होता है जो हमारी अच्छाइयों की सराहना करता है, हमारी कमियों को प्रेम पूर्वक सुधारने का साहस रखता है, जैसा कि हमने आपको पहले कहा था, और वो सफलता में तालियां बजाता है, असफलता में हमें हिम्मत देता है और संघर्ष के समय हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, रिश्तों में औपचारिकता बढ़ रही है और लोग अपने अपने दायरों में सिमटते जा रहे हैं अंजलि, तब सच्ची मित्रता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे में मित्र बनने और बनाने होंगे जो एक दूसरे को आगे बढ़ाए, सही राह दिखाए, निराशा में आशा जगाए और मानवता के मूल्यों को जीवित रखे, क्योंकि सच्ची मित्रता केवल दो व्यक्तियों को नहीं जोड़ती दोस्तों, बल्कि परिवार, समाज और पूरे राष्ट्र में विश्वास, सहयोग और सद्भावना का वातावरण तैयार करती है।
0: जी हां।
1: तो हां, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत बैंक की तिजोरी में नहीं बल्कि उन दिलों में होती है जो हर परिस्थिति में आपका हाथ थामे रहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: मित्रता वो दीप है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाती है, वो शक्ति है जो गिर कर भी उठना सिखाती है और वो विश्वास है जो असंभव को भी संभव बना देती है। इसलिए धन कमाइए, सफलता पाइए, ऊंचाइयां छुइए, लेकिन अपने जीवन में सच्ची मित्रता को कभी मत खोइए, क्योंकि एक सच्चा मित्र मिल जाना भाग्य की बात है और उस मित्रता को जीवन भर निभाना ही सच्चे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
0: बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छे तरीके से ये जाना कि मित्रता का क्या महत्व है और किस तरीके से हमें हमारे जीवन में अच्छे मित्रों का चयन करने की जरूरत है।
1: बिल्कुल।
0: आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाई न बोनो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार कर रही है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार कर रही है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है आधुनिक जीवन में हमारा स्वास्थ्य को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि आज का समय विज्ञान तकनीक और सुविधाओं का समय है। मोबाइल इंटरनेट तेज परिवहन आधुनिक चिकित्सा और नई नई मशीनों ने हमारे जीवन को पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन मनीषा, इन सुविधाओं के साथ साथ हमारी जीवन शैली भी बदल गई है। पहले लोग अधिक पैदल चलते थे, खेतों में काम करते थे, घर का ताजा भोजन खाते थे और प्रकृति के करीब रहते थे। आज घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करना, मोबाइल पर समय बिताना, बाहर का भोजन खाना और देर रात तक जागना और तनाव में रहना आम बात हो गई है। इसी बदलती जीवन शैली का सबसे अधिक असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। हम देखते हैं कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, हृदय रोग, मानसिक तनाव, नींद की कमी और आंखों की समस्या अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि युवा और बच्चों में भी तेजी से बढ़ रही है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक जीवन में हमारा स्वास्थ्य को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि स्वास्थ्य मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न और विचार सकारात्मक है श्रोता साथियों, तो जीवन की हर चुनौती का सामना हम आसानी से कर सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: आज का समय आधुनिकता, विज्ञान, तकनीकी का युग है श्रोता साथियों। हमारे जीवन शैली पहले की तुलना में बहुत बदल चुकी है। मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, मशीनें और नई सुविधाओं ने जीवन को आसान बनाया है। लेकिन श्रोता साथियों, इन्हीं सुविधाओं के साथ कई नई स्वास्थ्य समस्याएं वो बढ़ती जा रही हैं। आधुनिक जीवन श्रोता साथियों हमें यह सिखाता है कि केवल धन कमाना ही पर्याप्त नहीं है। यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो जीवन की सारी उपलब्धियां हैं वो अधूरी रह जाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथियों, आधुनिक जीवन में स्वास्थ्य के महत्व को समझना और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य केवल बीमारी का न होना नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति वह है जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से संतुलित जीवन जीता है। यदि शरीर स्वस्थ है लेकिन मन तनाव में है तो जीवन का आनंद अधूरा रह जाता है।
0: जी हाँ,
1: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि आधुनिक जीवन शैली का अर्थ ऐसी दिनचर्या जिसमें तकनीक पर अधिक निर्भरता हो, शारीरिक श्रम कम हो, समय की कमी हो और सुविधाएं अधिक हो, यह जीवन में कई मायनों में लाभदायक है। लेकिन अगर इसका संतुलित उपयोग न किया जाए तो यही सुविधाएं स्वास्थ्य के लिए चुनौती बन जाती है।
0: जी हाँ,
1: कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य का अर्थ केवल दवा लेना या अस्पताल जाना नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति संतुलित भोजन करता है, नियमित व्यायाम करता है, पर्याप्त नींद लेता है, मानसिक रूप से शांत रहता है और परिवार और समाज के साथ अच्छे संबंध रखता है।
0: जी हाँ,
1: नशे से दूर रहता है और समय समय पर स्वास्थ्य जांच भी कराता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज कई ऐसी बीमारियां बढ़ रही हैं जो हमारे जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले श्रोता साथियों, मोटापा तेजी से बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल,
0: लंबे समय तक बैठे रहना, जंक फूड खाना, व्यायाम न करना, श्रोता साथियों ये सभी ही उसके कारण हैं। हम देखते हैं कि अंजलि जी, मधुमेह यानी कि श्रोता साथियों डायबिटीज भी पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी दिखाई देने लगा है।
1: जी हाँ,
0: असंतुलित भोजन और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण श्रोता साथियों हम देखते हैं कि मधुमेह वो बढ़ता जा रहा है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं वो भी अंजलि जी लगातार बढ़ रही हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कि तनाव और गलत खानपान की बीमारियां हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, यही अब बात आती है कि आधुनिक जीवन में स्वास्थ्य पर बढ़ते खतरे क्या क्या हैं और ये क्यों बढ़ रहे हैं। श्रोता साथियों, शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण हम देखते हैं कि कई सारी समस्याएं हो रही हैं। पहले लोग, जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया, कि बहुत अधिक पैदल चला करते थे, खेतों में काम करते थे, घर के काम भी स्वयं करते थे। अब वाहन, लिफ्ट और मशीनों ने मेहनत कम कर दी है। इसके कारण हम देखते हैं कि मोटापा, हृदय रोग, कमर दर्द, गर्दन दर्द और जोड़ों की समस्या लगातार बढ़ रही है।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ आज बच्चों से लेकर बड़े तक मनीषा पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और पैकेट वाले खाद्य पदार्थों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इनमें अधिक नमक, अधिक चीनी, अधिक तेल और कम पोषण होता है। इसका
0: हाँ,
1: लगातार सेवन जो है वो शरीर को कमजोर बनाता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि आज हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ है। किसी पर नौकरी का दबाव है, किसी पर पढ़ाई का तनाव है, किसी पर आर्थिक परेशानी का, तो किसी पर पारिवारिक जिम्मेदारी का,
0: बिल्कुल
1: किसी पर सोशल मीडिया की तुलना का। इन सब का असर मनीषा हम देखते हैं कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। आज हम देखते हैं कि मोबाइल और स्क्रीन का उपयोग भी बढ़ गया है। मोबाइल अब जीवन का हिस्सा बन चुका है, लेकिन ज्यादा मोबाइल का उपयोग करने से आंखों में जलन, सिर दर्द, नींद की कमी, एकाग्रता में कमी और बच्चों का विकास भी प्रभावित होता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से आधुनिक जीवन शैली में हमारे स्वास्थ्य के महत्व को लेकर हम बातें कर ही रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दी।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना, यही बात आती है कि मानसिक स्वास्थ्य का हमारे जीवन में बहुत सारा महत्व है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि श्रोता साथियों, यदि मन शांत रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हमें परिवार से खुलकर बात करनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: अपनी भावनाएं दबानी नहीं चाहिए, योग और ध्यान करना चाहिए, प्रकृति के बीच समय बिताना चाहिए, अपनी पसंद का कार्य करना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, आज बच्चे खेल के मैदान से अधिक मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। बच्चों को प्रतिदिन खेलना चाहिए, पौष्टिक भोजन देना चाहिए, समय पर सोने की आदत डालनी चाहिए, बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, स्क्रीन टाइम सीमित रखना चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि पर्याप्त नींद के महत्व की, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि अच्छी नींद स्वस्थ जीवन की आधारशिला होती है।
0: बिल्कुल।
1: आज मोबाइल इंटरनेट के कारण लोग देर रात तक जागते हैं, जिससे हम देखते हैं कि शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए।
0: जी हां।
1: अच्छी नींद से श्रोता साथियों, शरीर की मरम्मत होती है, साथ ही मस्तिष्क बेहतर तरीके से काम करता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी अंजलि जी बढ़ती है।
0: बिल्कुल मनीषा, महिलाएं अक्सर पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भूल जाती हैं। उन्हें संतुलित भोजन लेना चाहिए, आयरन कैल्शियम का ध्यान रखना चाहिए, नियमित स्वास्थ्य जांच जो है वो कराते रहना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: तनाव कम रखना चाहिए और पर्याप्त आराम लेना चाहिए। श्रोता साथियों, स्वस्थ रहने के लिए कुछ अच्छी आदतें हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठें, प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें, मौसमी फल और हरी सब्जियां खाएं, पर्याप्त पानी पिए, तंबाकू शराब से दूर रहें, समय पर भोजन करें, पर्याप्त नींद लें और नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं और स्वच्छता बनाए रखें और सकारात्मक सोच को अपनाएं। और ये बातें हम जब भी कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से जुड़ते हैं तब आपको हमेशा बताते ही रहते हैं कि ये दिनचर्या हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ग्रामीण जीवन से हम सीख ले सकते हैं। श्रोता साथियों, हमारे गांव की कई परंपराएं आज भी स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। ताजा भोजन, स्थायी अनाज, पैदल चलना, सामूहिक श्रम, खुले वातावरण में रहना, प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाना, यदि हम आधुनिक सुविधाओं के साथ मनीषा इन अच्छी परंपराओं को भी अपनाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर रह सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो हम कई संक्रमणों से बच सकते हैं। श्रोता साथियों, इसके लिए हमें पौष्टिक भोजन, पर्याप्त पानी, नियमित व्यायाम, योग, अच्छी नींद और तनाव मुक्त जीवन की आवश्यकता है।
0: बिल्कुल।
1: मौसमी फल, श्रोता साथियों, हरी सब्जियां, आंवला, नींबू, हल्दी और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ हैं, वो भी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अंजलि जी बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: यहीं अगर बात करें कि प्रकृति और स्वास्थ्य का क्या संबंध है, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि प्रकृति के निकट रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है।
0: बिल्कुल।
1: सुबह की ताजी हवा, धूप, हरियाली और स्वच्छ वातावरण शरीर तथा मन दोनों को स्वस्थ रखता है।
0: जी हाँ।
1: पेड़ पौधे लगाने, पर्यावरण की रक्षा करने और प्रदूषण को कम करने से हमारे समाज का स्वास्थ्य है वो भी बेहतर रहता है।
0: जी हाँ, याद रखिए श्रोता साथियों कि धन खो जाए तो कुछ नहीं होता, समय खो जाए तो बहुत कुछ खोता है, लेकिन स्वास्थ्य खो जाए तो लगभग देखो कि सब कुछ ही खो जाता है। स्वास्थ्य किसी अस्पताल की देन नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की अच्छी आदतों का परिणाम है।
1: जी हाँ।
0: आधुनिक जीवन शैली ने हमें अनेक सुविधाएं दी हैं, लेकिन मनीषा इन सुविधाओं का सही उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम सुविधाओं के साथ अनुशासन, तकनीक के साथ संयम और व्यस्तता के साथ स्वास्थ्य को भी महत्व देंगे तभी जीवन वास्तव में सुखद और सफल बनेगा।
1: बिल्कुल।
0: स्वास्थ्य कोई एक दिन का लक्ष्य नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि जीवन भर निभाई जाने वाली आदत है। छोटी छोटी सकारात्मक आदतें जैसे कि समय पर उठना, संतुलित भोजन करना, नियमित व्यायाम करना, मानसिक शांति बनाए रखना और परिवार के साथ समय बिताना लंबे समय तक स्वस्थ जीवन की मजबूत नींव बनती है। इसलिए दोस्तों, हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करेंगे, बुजुर्गों का सम्मान करेंगे और देखभाल करेंगे। इसी के साथ अपने गांव और समाज को भी स्वच्छ, स्वस्थ और जागरूक बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होगा मनीषा, तभी परिवार स्वस्थ होगा, समाज मजबूत बनेगा और देश प्रगति की और नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। स्वस्थ नागरिक ही समृद्ध राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ।
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दी।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो बातचीत रही है, जो गीत संगीत रहे हैं, वो आपको अवश्य पसंद आए होंगे।
1: जी बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: सेहत नु राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात में शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सी व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितली शांति मिले है, जैया हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश रागे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने अपनी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है, ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितली शांति मिले है, जमी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश रागे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है, ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो हमारी आपसे बातचीत होती है एक नए विषय को लेकर। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से ऐसा ही एक नया विषय हम लेकर हाजिर हुए हैं श्रोता साथियों। साथियों आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि हमें सपनों को सिर्फ सोचना नहीं है बल्कि जीना शुरू कर देना है, क्योंकि हम देखते हैं कि सपने शब्द सुनते ही हमारे मन में बहुत सारी तस्वीरें बनने लगती है। जैसे कि कोई अच्छा किसान बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई अपना छोटा सा कारोबार जो है वो शुरू करना चाहता है, तो कोई चाहता है श्रोता साथियों कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, तो कुछ लोगों का सपना ये होता है कि उनका जो घर है वो खुशियों से भर जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि क्या सिर्फ सपना देख लेने से सपना पूरा हो जाता है? अगर दोस्तों उत्तर हाँ होता तो शायद दुनिया में हर व्यक्ति सफल होता। हम देखते हैं कि सपना तभी अपना रूप लेता है जब वह हमारी रोज की आदतों, मेहनत और फैसलों का हिस्सा बन जाता है। और इसी चीज को लेकर आज के हमारे कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी बातें होंगी साथियों। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो दोस्तों इसी दस्तूर को निभाते हुए पहले हम सुन लेते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा गीत, फिर मैं अपनी बातचीत को फिर से जारी रखूंगी। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद मैं आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही अच्छा विषय हमारा आप सभी के साथ जुड़ चुका है, हम बात कर रहे हैं साथियों कि सपनों को हमें सिर्फ सोचना नहीं है बल्कि जीना शुरू कर देना चाहिए। साथियों, जैसा कि गीत से पहले भी कुछ छोटी मोटी बातें मेरी आपसे रही थी कि हम देखते हैं कि बहुत से लोगों के अलग अलग सपने होते हैं। कोई अच्छा शिक्षक बनना चाहता है, कोई अच्छा किसान बनना चाहता है, तो कोई छोटा सा कारोबार जो है उसे बड़ा करना चाहता है। साथियों, तो कुछ लोगों का सपना ये होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। लेकिन दोस्तों, ऐसे में प्रश्न ये है कि क्या सिर्फ सपने सोच लेने से या देख लेने से पूरे हो जाते हैं? नहीं साथियों, उसके लिए हमें निरंतर मेहनत करनी होती है, संघर्ष करना होता है, त्याग करना होता है। साथियों, अगर मैं आपको बताऊं कि सपना देखना तो आसान है लेकिन उसे जीना कठिन होता है, ऐसा कई लोगों का सोचना होता है। दोस्तों, हर इंसान सपने देखता है, सपने देखने पर कोई रोक नहीं होती साथियों, या कोई टैक्स नहीं लगता श्रोता साथियों, लेकिन बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना पाते हैं। दोस्तों, कई बार हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि एक दिन मैं इस काम को शुरू करूंगा, या एक दिन मैं पढ़ाई अपनी पूरी कर लूंगा, या एक दिन मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन दोस्तों, वह एक दिन महीनों में बदल जाते हैं, फिर सालों में, और फिर धीरे धीरे सिर्फ सपना ही इच्छा बनकर ये रह जाता है। दोस्तों, असल में समस्या सपने में नहीं होती, समस्या श्रोता साथियों सपने की शुरुआत करने में होती है। जी हाँ, इसलिए कई लोगों का ये मानना होता है कि सपने देखना तो आसान है लेकिन उसे जीना कठिन होता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको बताऊं तो सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन टालने की आदत होती है, क्योंकि साथियों हम सोचते हैं कि ये काम मैं आज नहीं कल से शुरू करूंगा, या इस महीने नहीं अगले महीने से शुरू करूंगा, अभी समय ठीक नहीं है, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। दोस्तों, कब वो धीरे धीरे इंतजार हमारी आदत बन जाता है हमें याद ही नहीं रहता। सच तो ये है साथियों कि समय कभी अपने आप नहीं आता, सही समय वही होता है जब हम पहला कदम उठाते हैं। जो लोग शुरुआत कर देते हैं साथियों, वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, और जो इंतजार करते रहते हैं वे वहीं खड़े रह जाते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि समय आता नहीं है, समय को लाना पड़ता है। साथियों, अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो अगर आप ये सोचेंगे कि मैं समय आने पर ये चीज करूंगा या करूंगी, तो दोस्तों हो सकता है कि वो समय आपका कभी आए ही नहीं। आपके मन में श्रोता साथियों, जब भी ये हौसला आ जाए कि आज मुझे इस काम को करना है, तो आप उसी दिन से उस काम की शुरुआत कर दें। इससे क्या होगा श्रोता साथियों, आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे लेकिन एक न एक दिन आप सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। इसलिए श्रोता साथियों, सपने देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रोता साथियों एक कहावत कही गई है कि सपने वो नहीं होते जो हम बंद आंखों से देखते हैं, सपने तो वो हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। तो श्रोता साथियों, ये बहुत ही प्यारी सी पंक्ति है, अगर इसे आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपके सपनों को उड़ान मिल जाएगी, और जब सपनों को उड़ान मिल जाती है श्रोता साथियों, तो सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरीके से, जैसा कि कार्यक्रम में मेरी आपसे बातें तो बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और गीत के साथ में। तो श्रोता साथियों, आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

दोस्तों, इस गीत के बाद मैं फिर से रुक करना चाहूंगी कार्यक्रम सपनों की उड़ान की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम सपनों को पूरा करने की बात कर रहे हैं, और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बताया था श्रोता साथियों कि सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा ये आती है कि हम काम को टालने लगते हैं। श्रोता साथियों, अगर आपने ठान लिया है कि आपका ये सपना है तो आप उसको पूरा करने में अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए। अगर आप समय की राह देखते रहेंगे श्रोता साथियों, तो सही समय कभी नहीं आएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि सही समय आने पर इस काम को मैं करूँगा, तो दोस्तों वो समय बिल्कुल नहीं आएगा। आप सोचेंगे कि इस काम को अगर मैं कल करूँ तो कल परसों बन जाएगा, परसों श्रोता साथियों तरसों बन जाएगा, और तरसों के बाद आप देखेंगे कि उस काम को करने में महीने गुजर जाएंगे। इसलिए श्रोता साथियों, अगर आपने ठान लिया है कि आपको अपने इस सपने को पूरा करना है, तो उसी समय उसकी तैयारी में आप जुट जाइए। अब यही श्रोता साथियों, अक्सर लोग सोचते हैं कि सपने केवल शहरों में रहने वालों के ही होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। गांव का किसान भी सपने देखता है, एक मजदूर भी सपना देखता है, एक गृहिणी घर में रहकर भी सपने देखती है, एक छात्र सपना देखता है श्रोता साथियों, बुजुर्ग भी चाहते हैं कि उनका परिवार खुश रहे। दोस्तों, ये सारे जो सपने हैं वो सम्मान के योग्य हैं। सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, सपना सिर्फ अपना होता है दोस्तों। इसलिए सपनों को जीने का मतलब सिर्फ उनके बारे में बात करना नहीं है, इसका मतलब तो ये है कि हर दिन ऐसा कोई काम करना है जो हमें उस सपने के थोड़ा और करीब लेकर जाए। जैसे कि अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है तो रोज उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा दोस्तों, और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने के सपने को जीना होगा। अगर कोई खेती बेहतर करना चाहता है और ये उसका सपना है, तो ऐसे में नई जानकारियों को लेना भी सपने जीने जैसा है। अगर कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसकी छोटी सी बचत करना भी उसके लिए सपने जीने जैसा है। दोस्तों, सपनों की शुरुआत बड़े कामों से नहीं होती, सपनों की शुरुआत छोटी आदतों से होती है। इसलिए आप आज से ही सपनों को पूरा करने की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि दोस्तों अगर आप सपने पूरे करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी होगी, और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको असफलता मिलेगी साथियों। लेकिन असफलता का मतलब ये नहीं है साथियों कि आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। सपने पूरे होते हैं, लेकिन दोस्तों सपने परिश्रम त्याग भी मांगते हैं। इसलिए आप सपनों को पूरा करने में पीछे मत हटिए, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहिए साथियों। जैसे कि जब हम कुछ नया करने की सोचते हैं तो हमें कई बार डर लगता है कि अगर असफल हो गए तो। दोस्तों, ये काफी सामान्य बात है, डर तो सभी को लगता है। जब हम कुछ नया करने जाते हैं तो हमारे मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं। हमें डर लगता है कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा, लोग हम पर हंसेंगे तो क्या होगा, अगर हमारी मेहनत बेकार चली गई तो क्या होगा। दोस्तों, ये जो सारे सवाल हैं वो हर इंसान के मन में आते हैं, लेकिन अगर हम सपने पूरे करने के लिए तत्पर हैं साथियों, तो हमें ये याद रखना है कि डर रास्ता नहीं रोकता, डर के कारण लिया गया फैसला रास्ता रोक देता है। साहस का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं होता साथियों, साहस का तो मतलब है कि डर के बावजूद भी हमें आगे बढ़ना है। साथियों, आजकल हम अपनी जिंदगी कम और दूसरों की जिंदगी ज्यादा देखने लगे हैं। वह आगे निकल गया, उसके पास तो बहुत ज्यादा पैसा है, उसका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन श्रोता साथियों, किसी की पूरी कहानी हमें नहीं दिखाई देती, हमें सिर्फ उसका परिणाम दिखाई देता है। उसके पीछे की उसकी मेहनत, उसका संघर्ष, धैर्य नहीं देखते हम। इसलिए तुलना नहीं बल्कि सपनों से प्रेरणा आप लीजिए। सफलता कभी श्रोता साथियों अचानक नहीं मिलती, सफलता प्राप्त करने के लिए ढेर सारा संघर्ष करना पड़ता है। साथियों, कोई भी पेड़ एक रात में फल नहीं देता, उसे समय लगता है, उसे धूप भी सहनी पड़ती है और बारिश भी सहनी पड़ती है। ठीक वैसे ही इंसान की मेहनत भी धीरे धीरे फल देती है साथियों। अगर आज आपने मेहनत की है तो उसका परिणाम श्रोता साथियों कल भी आपको नहीं मिले, फिर भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हर प्रयास हमें पहले से बेहतर बनाता है। इसलिए श्रोता साथियों, सपनों की सच्चाई को पहचानिए, उसके पीछे के लक्ष्य को पहचानिए श्रोता साथियों। अगर आप सपनों में जीना शुरू कर देंगे तो आपके सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ दोस्तों, क्या आपको पता है कि सपनों की सबसे बड़ी खूबसूरती ये नहीं है कि वो पूरे हो जाएं, बल्कि ये है साथियों कि उन्हें पूरा करने की जो यात्रा होती है वो हमें पूरा बदल देती है। हम अधिक धैर्यवान बन जाते हैं, अधिक समझदार बन जाते हैं, जिम्मेदार बन जाते हैं साथियों,
और आत्मविश्वासी बन जाते हैं और यही बदलाव हमारी सबसे बड़ी सफलता होती है। तो इस तरीके से श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आज आपसे ढेर सारी बातें हुई। हमने बात की कि हम अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं और हमें सिर्फ सपनों को सोचना नहीं है बल्कि उसे जीना शुरू कर देना है। तो बातें जैसा कि ढेर सारी हो चुकी है, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यही समाप्त होता है। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी साथियों कि सपनों को पूरा करने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है एक सच्चे इरादे की, रोज की छोटी छोटी कोशिशों की और हार मानने से इनकार करने की सोच की। साथियों, जो लोग अपने सपनों को सिर्फ सोचते रहते हैं वे अक्सर परिस्थितियों का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने सपनों को जीना शुरू कर देते हैं साथियों, वे परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में बदलना सीख लेते हैं। याद रखिए श्रोता साथियों, जिंदगी कभी एक ही दिन में नहीं बदलती, यह हर सुबह लिए गए छोटे फैसलों, हर शाम की गई ईमानदारी से मेहनत और हर असफलता के बाद दोबारा उठ खड़े होने के साहस से बदलती है। इसलिए अपने सपनों को भविष्य की किसी तारीख पर मत टालिए, उन्हें आज की आदत आप बनाइए, आज की सोच बनाइए और आज के कर्म में उतारिए। इन्हीं प्रेरणादायक विचारों के साथ दोस्तों, अब मैं कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए प्रेरणादायक विषय के साथ में, एक नई सोच के साथ में और जीवन को आगे बढ़ाने वाली एक नई प्रेरणा के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

थारी में पासो लावो जोनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटो अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वाग

0: संग्रह संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
2: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ने आपड़े मई देखाय तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावीसू। है
1: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
2: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
1: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
3: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे ही जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बोन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि पुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
3: होवे होवे जागृति पुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ
1: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
2: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
1: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाक रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
1: बिल्कुल
2: श्रोता साथियों, आप सभी जानते हैं कि 1 से 7 अगस्त तक हम स्तनपान सप्ताह मनाते हैं, तो कार्यक्रम में हमारी इसी विषय पर बातचीत रहने वाली है कि स्तनपान को आसान और सफल कैसे बनाएं। कार्यक्रम के माध्यम से मनीषा विषय विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे जो कि हमें ढेर सारी जानकारियों से अवगत करवाएंगे। लेकिन शुरुआत में श्रोता साथियों से हम थोड़ी बातचीत करना चाहेंगे। कहा जाता है श्रोता साथियों कि माँ का दूध केवल भोजन नहीं बल्कि प्यार, सुरक्षा और जीवन भर के अच्छे स्वास्थ्य की पहली नींव है।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन कई बार जानकारी की कमी, सामाजिक मिथकों, शर्म, डर, सहयोग के अभाव में स्तनपान उतना आसान रह जाता है जितना होना नहीं चाहिए। इसलिए आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि किन बातों का ध्यान रखना स्तनपान को सरल, सुखद और सफल बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
2: इसके लिए श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, जब शिशु जन्म लेता है तब उसकी पहली जरूरत केवल माँ का स्पर्श और माँ का दूध होता है।
1: जी हाँ।
2: जन्म के तुरंत बाद निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध जिसे कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है, बच्चे का पहला टीका माना जाता है।
1: बिल्कुल।
2: यह बच्चे को संक्रमण से बचाता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत करता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि माँ और शिशु का रिश्ता है वो दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता माना जाता है। इस रिश्ते की श्रोता साथियों सबसे सुंदर शुरुआत ही स्तनपान से होती है। जन्म के बाद माँ का दूध शिशु के लिए पहला सबसे महत्वपूर्ण आहार होता है। इसमें श्रोता साथियों ऐसे सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो नवजात शिशु के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए जरूरी होते हैं। यही कारण है अंजलि जी कि स्तनपान को बच्चे का पहला टीका भी कहा जाता है। हालांकि श्रोता साथियों, कई बार नई माताओं को स्तनपान की शुरुआत में कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि दूध कम बनना, बच्चों को सही ढंग से दूध न पिलाना, स्तनों में दर्द होना, थकान होना या सही जानकारी का अभाव। लेकिन श्रोता साथियों, यदि सही समय पर सही जानकारी और परिवार का सहयोग मिले तो स्तनपान को आसान, सुखद और सफल बनाया जा सकता है।
2: जी हाँ मनीषा, अक्सर माना जाता है कि स्तनपान केवल माँ की जिम्मेदारी है जबकि यह पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। यदि माँ का मनोबल बढ़ाए, घर के कामों में सहयोग करे और उसे आराम करने का समय दे तो स्तनपान सफल होता है।
1: जी हाँ।
2: दादा दादी और परिवार के अन्य सदस्य भी पुराने भ्रम फैलाने के बजाय सही जानकारी अपना सकते हैं। श्रोता साथियों, यदि माँ को स्तनों में दर्द, सूजन, दूध कमाने की चिंता या बच्चों को दूध पीने में कठिनाई हो रही हो तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। उसे आशा कार्यकर्ता, ANM दीदी, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: समय पर सही मार्गदर्शन मिलने से अधिकांश समस्याएं आसानी से दूर हो जाती है।
1: जी हाँ।
2: श्रोता साथियों, स्तनपान केवल बच्चों को दूध पिलाने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक ऐसा रिश्ता है जिसमें ममता, विश्वास, सुरक्षा और स्वस्थ भविष्य की शुरुआत छिपे होती है।
1: बिल्कुल।
2: हर माँ का अनुभव अलग होता है, इसलिए मनीषा उसकी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। जरूरत है सही जानकारी, धैर्य और परिवार के सहयोग की। तो श्रोता साथियों, हम कह सकते हैं कि हमें अपने घर, परिवार, समाज में स्तनपान को लेकर फैली जो गलत धारणाएं हैं उन्हें दूर करना होगा। नई माताओं का हौसला बढ़ाना होगा, उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि वे अकेली नहीं है। जब एक माँ को सही सहयोग मिलता है तब एक स्वस्थ शिशु, एक खुशहाल परिवार और एक मजबूत समाज का निर्माण होता है।
1: जी बिल्कुल।
2: माँ का दूध जीवन की पहली सौगात है, इसे सम्मान दें, इसे अपनाएं और हर बच्चे तक इसका अमूल्य लाभ पहुंचाएं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि स्तनपान केवल बच्चे के लिए नहीं श्रोता साथियों बल्कि माँ के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। यह माँ को जल्दी स्वस्थ होने में मदद करता है, कई बीमारियों के खतरों को कम करता है और माँ बच्चे के बीच भावनात्मक जुड़ाव होता है उसे मजबूत करता है। श्रोता साथियों, स्तनपान शिशु के लिए प्रकृति का सबसे उत्तम उपहार माना जाता है। माँ के दूध में अंजलि जी प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और रोगों से लड़ने के तत्व जो मौजूद होते हैं वो बच्चे की सुरक्षा करते हैं।
2: बिल्कुल।
1: यदि दूध बच्चे की उम्र में उम्र के अनुसार आवश्यकता के अनुसार श्रोता साथियों ने दिया जाता है तो हम देखते हैं कि बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कहीं अधिक मजबूत होती है।
2: जी हाँ मनीषा, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि एक स्वस्थ समाज की शुरुआत स्वस्थ बच्चे से होती है।
1: जी हाँ,
2: स्वस्थ बच्चों की पहली पहचान है सफल स्तनपान। ये केवल माँ की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज की साझा जिम्मेदारी है। जब माँ को सही जानकारी, सम्मान और सहयोग मिलता है तब वह अपने बच्चों को जीवन की सबसे अनमोल शुरुआत दे पाती है।
1: बिल्कुल।
2: हर नई माँ का आत्मविश्वास हमें बढ़ाना है, उसे प्रोत्साहित करना है और यह संदेश हर घर तक पहुँचाना है कि माँ का दूध ही बच्चे का पहला अधिकार और सबसे बड़ा उपहार है।
1: जी बिल्कुल।
2: स्तनपान कोई प्रतियोगिता नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि धैर्य, धर्म, धैर्य, प्रेम, विश्वास की यात्रा है। शुरुआत में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन सही सलाह और परिवार के सहयोग से हर चुनौती को आसान बनाया जा सकता है। यदि हम आज स्तनपान के महत्व को समझेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां अधिक स्वस्थ, मजबूत और आत्मविश्वासी बनेगी।
1: जी हाँ,
2: हर माँ के साथ खड़े रहें, हर बच्चे को उसके जीवन का सबसे सुंदर, सुरक्षित और पौष्टिक अधिकार दिलाएं। एक माँ अपने बच्चे को जीवन देती है और स्तनपान उस जीवन को मजबूती देता है श्रोता साथियों।
1: जी हाँ,
2: यह केवल पोषण नहीं बल्कि ममता, सुरक्षा और अपनापन का पहला एहसास है। हम ऐसी सोच विकसित कर सकते हैं जहाँ स्तनपान को सम्मान मिले, माताओं को सहयोग मिले, हर नवजात को जीवन की बेहतर शुरुआत मिले।
1: बिल्कुल,
2: आज का स्वस्थ शिशु ही कल का सशक्त नागरिक बनेगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज भी कई जगह स्तनपान से जुड़े भ्रम और गलत धारणाएं भी मौजूद हैं। इसके कारण कई श्रोता साथियों हम देखते हैं कि कई सारी माताएं वो समय से पहले स्तनपान को बंद कर देती हैं।
2: बिल्कुल।
1: इसलिए परिवार, स्वास्थ्य कर्मियों और समाज की जिम्मेदारी है कि वे भी सही जानकारी को हमारी समाज तक फैलाए और जो माएं हैं उनको बढ़ावा दें।
2: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि स्तनपान केवल बच्चे का भोजन ही नहीं बल्कि जीवन पर अच्छे स्वास्थ्य के लिए मजबूत नींव है। सही जानकारी, आत्मविश्वास, संतुलित भोजन, पर्याप्त आराम, परिवार का सहयोग और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की उचित सलाह से श्रोता साथियों स्तनपान को आसान और सफल बनाया जा सकता है। कहना चाहेंगे कि हर माँ अलग होती है और हर बच्चे की जरूरत भी अलग होती है, इसलिए श्रोता साथियों यदि शुरुआत में कुछ कठिनाइयां आए तो निराश होने के बजाय धैर्य और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की सलाह लें। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु और स्वस्थ समाज के निर्माण से ही श्रोता साथियों स्तनपान है उसे सरल और आसान बनाया जा सकता है।
2: बिल्कुल मनीषा, तो जैसा कि कार्यक्रम में हमने श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें की हैं, आगे कार्यक्रम के माध्यम से विषय विशेषज्ञ जुड़ने वाले हैं।
1: जी हाँ।
2: लेकिन क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारा सा गीत सुनवा दें।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से स्तनपान कराना माँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रोता साथियों, हम कहना चाहेंगे कि माँ का दूध किसी दवा, टॉनिक या बाजार में मिलने वाले उत्पाद का विकल्प नहीं है।
1: जी हाँ।
0: प्रकृति का वह अनमोल उपहार है मनीषा, जो बच्चे को जीवन भर स्वस्थ रहने की मजबूती देता है। जागरूक बने, दूसरों को भी जागरूक करें और ऐसा वातावरण तैयार करें जहां हर माँ बिना झिझक, बिना किसी दवा के सफलतापूर्वक स्तनपान करा सके। यही स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र की दिशा में हमारा सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि स्तनपान शिशु के लिए प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है। श्रोता साथियों, स्तनपान की सफलता की शुरुआत श्रोता साथियों और सही जानकारी ही एक माँ को आत्मविश्वास देती है।
0: बिल्कुल,
1: माँ को ये विश्वास होना चाहिए श्रोता साथियों कि उसका बच्चा शरीर और मानसिक रूप से मजबूत बने। अस्पताल में श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि सहकर्मियों से स्तनपान के हम सही तरीके सीख सकते हैं, उससे भी हम जानकारी ले सकते हैं। श्रोता साथियों, शुरुआत में अगर हमें सही जानकारी मिल जाती है तो स्तनपान है वो हमारे लिए और भी आसान बन जाता है।
0: बिल्कुल,
1: स्तनपान के समय श्रोता साथियों माँ को आरामदायक स्थिति में बैठे या लेटे रहने दे। बच्चे का पूरा शरीर है वो माँ की ओर होना चाहिए साथियों।
0: जी हाँ।
1: बच्चे का मुंह केवल निष्पद नहीं होना चाहिए साथियों, बल्कि उसके आसपास गहरे हिस्से और अच्छी तरह से हमें बिछाकर भी उस बच्चे को लेटाना चाहिए।
0: बिल्कुल मनीषा, किसी भी बच्चे के जीवन की सबसे अच्छी शुरुआत माँ की गोद और माँ के दूध से होती है। ये केवल भोजन नहीं बल्कि जीवन भर के अच्छे स्वास्थ्य, मानसिक विकास और भावनात्मक सुरक्षा की मजबूत नींव है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि स्तनपान केवल एक माँ का व्यक्तिगत निर्णय या जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज की सामुदायिक जिम्मेदारी है।
1: जी हाँ।
0: जब परिवार माँ का मनोबल बढ़ाता है, उसे आराम, सम्मान और सहयोग देता है, तब वह अपने शिशु की बेहतर देखभाल कर पाती है।
1: बिल्कुल।
0: यदि किसी माँ को स्तनपान के दौरान कोई कठिनाई आती है तो उसकी आलोचना करने या उसे दोष देने के बजाय उसका साथ देना चाहिए और यही स्वास्थ्य सलाह तक पहुँचने में मदद करती है। श्रोता साथियों, छोटी सी जागरूकता और संवेदनशील व्यवहार कई बच्चों का भविष्य सुरक्षित बना सकता है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए हम सभी को इन दिनों में यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने घर, अपने गाँव, अपने समाज

0: में स्तनपान के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करेंगे, गलत धारणाओं को दूर करेंगे और हर नई माँ का हौसला बढ़ाएंगे। क्योंकि जब एक माँ स्वस्थ और आत्मविश्वास से भरपूर होती है तभी उसका बच्चा भी स्वस्थ, खुशी और मजबूत बनता है।
1: बिल्कुल,
0: यही एक समृद्ध परिवार, जागरूक समाज और स्वस्थ राष्ट्र की सबसे मजबूत पहचान है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि स्तनपान केवल शरीर की प्रक्रिया नहीं है साथियों, बल्कि मन से जुड़ा हुआ है। यदि माँ के बारे में श्रोता साथियों बार बार कहा जाए कि उसका दूध पर्याप्त नहीं है तो उसका आत्मविश्वास है वो कम होने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: नई माँ को श्रोता साथियों में प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी छोटी छोटी सफलताओं में हमें सराहना करनी चाहिए और हमें श्रोता साथियों ने भरोसा दिलाना चाहिए कि वे बच्चे की देखभाल अच्छी तरह से कर सकती है। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि इसमें परिवार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर परिवार है वो माँ का सहयोग करते हैं, साथ देते हैं और उसे बताते हैं तो श्रोता साथियों एक माँ है वो अपने बच्चे को अच्छी तरह से संभाल सकती है।
0: बिल्कुल मनीषा, तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमने तो हमारे श्रोता साथियों को हमारी तरफ से ढेर सारी बातें अवगत करवा दी है।
1: बिल्कुल,
0: अब कार्यक्रम के माध्यम से विशेषज्ञ जुड़ने जा रहे हैं जो कि हमें बताएंगे कि स्तनपान सप्ताह क्यों मनाया जाता है, इस वर्ष की विशेष थीम क्या है और ढेर सारी बातें हम उनसे करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे विशेषज्ञ को जोड़ें ताकि वो हमें बताएं कि स्तनपान सप्ताह क्यों मनाया जाता है और इस दिवस का हमारे जीवन में क्या महत्व है।
1: बिल्कुल,
0: तो श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि आज हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं डॉक्टर युधिष्ठिर सर, जो कि स्वास्थ्य शिशु रोग बाल विशेषज्ञ हैं, जो हमें बताने वाले हैं कि बच्चे को दूध पिलाना हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो सर का सबसे पहले हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। सर नमस्कार।
2: नमस्कार सर, अंजलि जी।
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में।
2: जी
0: सर, जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से जुड़ रहे हैं और आप भी जानते हैं कि 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, तो इस विषय पर हमारी आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में लेकिन सर आप कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे श्रोता साथियों को आपके परिचय से रूबरू करा दीजिए।
2: परिचय कि मुझे बताना है?
0: सर आपको बताना है।
2: ओहो, मैं तो वागड़ दर्शक मन जाए आदमी भैरव सुर डॉक्टर युधिष्ठिर त्रिवेदी बच्चन और डॉक्टर हूँ पसावर्त जी और मेरा की तलाई में मकान है। मैं बच्चे की बीमारी है जे भी हो तो पहले तो बच्चे बीमार पड़े नहीं, इन्हीं भी खूबा की बात करा हम जा रहे सबने ने जे बीमार पड़ी जाए बच्चे तो लावे तो दवा करे। पहले एमजी हॉस्पिटल में करता तो नहीं डॉक्टर रहता तो અને હવે આપણે મારે ઘરે રાતી લાય નહીં થઈ દવા લખી આનું સબને
0: હવે વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહ મનાવવું આપણે બદલે કેમ જરૂરી હે ને આ કેમ મનાવવું આપણે?
2: બિલકુલ, આપણે આપણે બતાડ્યું કે 1 તારીખ થી 7 તારીખ સુધી WHO ને હજી બીજા કેટલાય સંગઠન અને યુનિસેફ આપણે આપ જેવા વાગણ રેડિયો વાળા એ સબ મળીને ઇતિ દુનિયા મે આખી દુનિયા મે 1 અગસ્ત થી 7 અગસ્ત સુધી આ વિશ્વ સ્તનપાન મનાને, એ એટલે મનાના કે આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ હે આપણે સ્તનપાન
0: દેખાવામાં
2: એમ દેખાય કે આના હું વાત કરવી ને હું આના મેં બતાડો પણ આ બરૂર જરૂરી હે ઓર બચ્ચે કો સ્તનપાન કરાવવા થકી પરિવાર સમાજ ને સ્વાસ્થ્ય સબની જિમ્મેદારી હે અને માનીસ નથી કે માં તો કરવું ચાહે પર એને બાપડી ને કામ હોય તો કરાવી નહીં શકે માને દૂધ ઉતરતું ને તમે ઉતરે તો મને સગે કે ઉપર નું પાઈ દે પર એ નહીં કે પહેલે કે માને ખોરાક ની કમી હોય તો ધ્યાન રાખો માને જે કોઈ તકલીફ હોય તો દૂર કરો તો પૂરું દૂધ ઉતરે માને વિશ્વાસ અલાડવો પડે કોન્ફિડન્સ અલાડવું પડે એટલે સંતાનકર ઉતરેગા એને જરૂરત પડે તો દવાઈ ભી આવે દવાઈ કરીને દૂધ પૂરું ઉતારે તો એ સબ આ સ્તનપાન ખૂબ પ્રકૃતિ આપણે એની અદભુત વ્યવસ્થા હે આ ખાલી ખાવાનું વાળા બચ્ચા નહીં નથી એને સુરક્ષા હે બીમારી થકી લડવાની તાકાત હે
0: હવે હવે
2: ને ભાવનાત્મક સુરક્ષા ભી મળે થોડું માન દૂધ પીએ તો એને લાગે મારે કોને છે મારું ધ્યાન રાખવા વાળું એટલે આ જરૂરી હે
0: હવે જેમ કે સર આપે બતાડ્યું કે સ્તનપાન સપ્તાહ આપણે કેમ મનાવો, તો આપણે દેખો કે હર વર આનું એક વિશેષ વિષય રહે, તો અણી વર આપણે કયા વિષય માટે આના દિવસને મનાવી રહો?
2: સ્તનપાન તો અચ્છું હે, ઈ તો આપણે સબ જણે કર દીધું અને દુનિયા મેં થઈ ગઈ, તો સ્તનપાન સ્વસ્થ બચપન ઓર સશક્ત ભવિષ્ય કી આધારશિલા હૈ. હમણાં બચ્ચો ભી અચ્છું રહેગા, અને ખાલી બચ્ચો ઉત્પન્ન મેં સચ્છું રહેગા હી નહીં, ભવિષ્ય મેં ભી ડોકરો થાયગા ત્યારે ભી ડાયાબિટીસ ની બીમારી કમ થાયગા, બ્લડ પ્રેશર ની બીમારી કમ થાયગા, જેને સ્તનપાન કર્યું બચપન મેં.
0: હવે
2: હમણાં તો બચ્ચા ને બીમારી થકી બચાવ થાય જ કરી જ્યારે ભી સ્તનપાન કરે, પર ઊંડ સાલ નો વિષય હજી વધારે કે ભાઈ સ્વસ્થ બચપન હે સશક્ત ભવિષ્ય હે. મેં પસે ફીરી કહી રહ્યા કે તમે ખાલી આ કો કોઈ નહીં હૈ, યે અપને કો બચ્ચે કો દૂધ પીને મેં જો કભી કભી તકલીફ પડતી હૈ તો ઉસકો દૂર કરને કે ક્યા કારણ હે, મુ તો ખૂબ હમજાણો મન કરને, આપણે જોની આઈ બા એને ખાવું રે માં એને એ ભી સમજાડે, તો ભી અભી ભી ગલત થઈની આ કેટલી ક્યારે ઓપરેશન થયું તો નકે દૂધ પીવાડો, તો દૂધ પીવાડો દવાડો તો ભાઈ ને જ દવાડો, માં બાપ ની ભાઈ નહીં શકે કઈને બીજે તકલીફ તો પછી દૂધ કમ આવે, ને કોઈ સંતા ને કારણે દૂધ કમ આવ્યું એક દાડે શરૂ માં બે દાડા દૂધ કમ આવે તો મને કહે કે ઉપર નું પાઈ દો, પછી ઉપર નું શરૂ કરે તો પછી દૂધ હજી કમ ઉતરે, તો વો WHO નું એમ કેવું હોય કે જે આપણે માં દૂધ પીવાડવા મેં અડચને હે એ દૂર કરવા વાસ્તે આપણે જે જે કર્યા એ વધારે કરો. હજી આ આપણે આકાશવાણી થી સમાચાર આલતા પહેલે મને દૂધ પીવાડવા લાગ્યા, કોલેસ્ટ્રોલ પેલું પહેલું પહેલે પીરું દૂધ આપણે ખીસ નીરે એ ફેંકી દેતા, નોકરી કરી પસા 8 વર્ષ પહેલે કઈ વેરે કોઈ ચીજ ફેંકી દેતા, અમે ગામ ગામ નો કોઈ પ્રચાર કર્યું તો આજકાલ પીવાડે સબ, તો એવી જે આ રૂકાવટે દૂર કરવા વાળા એ પ્રયાસ, એ પ્રયાસ હજી વધારે તેજ કરો, રોકો નકે.
0: બિલકુલ
2: કે જો હા
0: બિલકુલ સર આપને સહી કહા, તો યહી અબ મેં જાનના ચાહુંગી કે જો નઈ માં હૈ ઉસે કેસે પતા ચલે કે ઉસકા બચ્ચા સહી તરીકે સે દૂધ પી રહા હૈ ઓર ઉસકા પેટ ભર રહા હૈ.
2: યે બહોત સરલ હૈ હને, એક તો દૂધ કમ આવે ભૂખો રહે તો સોરો રોવે, બીજી વાત રોતો તો કોઈ કારણ થી ઘી નહીં રોવે, બીજું કઈ હોય તો એક યે હૈ કે દૂધ પીને કે બાદ સો રહા હૈ આરામ સે 2 ઘંટે 2.5 ઘંટે 1.5 ઘંટા નીંદ નિકાલે પૂરે, ઓર ફીરી ભી હજી ભી હજી કન્ફર્મ કરવું હો તો જે સોરો દાડા મેં 3-4 વેરા પિશાબ કરે તો એને સમજો દૂધ બરાબર મળી રહ્યું હે, ને સબ થકી જે તો તમારે ક્ષમતા દૂર નહીં થાય તો પછી આપણે આ પાસે આંગનવાડી મેં કે પાસે અસ્પતાલ પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્ર મેં કે કોઈ બચ્ચો ના ડાક્ટર ને પાસે જઈને બતાવી દો, અહીં વજન ની મશીન હે વજન કરી લેંગા કે અગર વજન બરાબર વધી રહ્યું હે તો બસ દૂધ બરાબર મળી રહ્યું હે,
0: બિલકુલ સર આપને સહી કહા. લેકિન હમ દેખતે હૈ કે બહોત સી બાર બચ્ચા જૈસે હી રોતા હૈ તો ઘર કે અન્ય સદસ્ય બોલને લગતે હૈ કે યે લગતા હૈ ઇસે દૂધ પીના હૈ યા ઇસે દૂધ કમ મિલ રહા હૈ, તો ક્યા અક્સર ઉસકે રોને કા મતલબ યહી હોતા હૈ કે ઉસે દૂધ કમ મિલ રહા હૈ?
2: नहीं, हमेशा ये मतलब नहीं होता है, बाकी ज्यादातर तो अगर स्वस्थ बच्चा है तो वो दूध पीने के लिए होता है, पर थोड़ा बहुत पता है कि अपने को शुरू में 2 घंटे से पहले नहीं रोना चाहिए, अपन ने उसकी आदत नहीं बिगाड़ेंगे तो तभी ये सोएगा, पर कई बार क्या होता है कि बच्चे को जुकाम हो गया तो नाक बंद हो जाता है तो फिर वो दूध पूरा नहीं पी पाता है तो थोड़ी थोड़ी देर में रोता है, या और कोई भी बीमारी हो तो बच्चा रो सकता है, तो बे बातें हैं दूध पीवाणी ने जो ही लो, अगर बीमार नहीं होगा तो दूध पीने ने हो ही जाएगा पासो, बीमार होगा तो दूध पीता में थोड़ी बार आराम पड़ी ना पासो रोवेगा तो पते तो ये तो बताड़ो पड़ेगा आपने કોઈ દવાખાના મેં જઈને એને બતાડો કે ડોક્ટર સાહેબને બતાડો.
0: બિલકુલ સર, હમે બચ્ચો કો કિતની દેર મેં દૂધ પિલાના ચાહીએ ઓર ક્યા બચ્ચા ખુદ ઉસ દૂધ કી માંગ કરતા હૈ યા માં કો સમય કા ધ્યાન રખને કી જરૂરત હૈ?
2: દોનો બાતે બહોત અચ્છી વાત પૂછી આપને, હું એક મજાક ની વાત બતાવું, આપણે ગામ ગામ મેં તો ભઈ રહે ને સબ જાણે કે સોરાને ભૂખ લાગે તો દૂધ માંગે, એ કામ કરતી કરતી મેં એક ખોરા મેં લીધો હાથ થકી તો દૂધ પીવાડેગા દવાડેગા અને બીજો આપણે બીજા હાથે કે કામ કરતી રહેગા, પર આ વધારે કરીને ભણી ગણી માં એને એનાને પેલું ઘણું પેલું હોય ડિમાન્ડ ફીડિંગ, बच्चों मांगे तो दूध पाओ, मांगे तो मुड़ा था कि बोली नहीं तो मांगेगा नहीं, तो रोवे इस करे बच्चों तो रोवे तो दूध पाई गो। एक बात बीजो अंदाज एक की वेरा बच्चों कमजोर है एटलो हाथ महीना नु थी गयो, 1.5 किलो वजन है, हवा किलो वजन है, रोवी भी नहीं सके बराबर। इतना ही वेरा ध्यान रखू पड़े कि बच्चा ने अपने 1.5 घंटा कमजोर है तो 1.5 घंटा में नहीं तो गन्ना तक का बच्चा ने एक बे महीना तीन महीना होती 2 घंटा में दूध पाओ ये गणू है। तो पर वो सख्त भी नहीं करव, मैंने याद है हमारे अमेरिका में हमारे सोरी ने ऊपर किरायेदार रहती थी, 2 जना इंजीनियर होता मोटन खूब कमाता पर डॉक्टर है कि तो 2 घंटा बाद दूध पीवाड़ो तो पेलो सोरो उतरे तो मजा में पेट भरी ने तो जगाड़ी ने पाता इन्हें आदमी अलार्म लगाड़ तो आपको दाड़ा तो भैया ध्यान रखते रात आदमी अलार्म लगाड़ी ने 1 बजे सोरो तो होतो 11 बजे दूध पीने पेट भरी ना होता तो 3 घंटा भी हो ही सके तो सोरो तो थी जाए ना, ये तो जन्म के बच्चे को है 2-2 घंटे में, उसके बाद दिन में 2 से 3 घंटे में, रात को तो 3 से 4 घंटे भी बच्चे सो जाते हैं, कितना दूध पीते हैं उनका पेट कैसा है उस पर निर्भर है, अलग अलग सोरानो अलग अलग तो पर डिमांड फीडिंग ध्यान रखवानी है। पर ये पेलो इंजीनियर है तो इतना बढ़िया गुना तो रात पास 3 बजे बच्चों मजा में होते है तो इन जगाड़ी ने फिर दूध पाता
0: है
2: भी नींद खराब बच्चा नहीं नींद खराब तो ऐसा नहीं करना है। ये अपने गाँव में बैर नहीं कहता समझदार है अपने आईने पर।
0: बिल्कुल सर, तो जैसा कि सर आपने बताया कि हमें बच्चों को कैसे दूध पिलाने की जरूरत है, यही सर हम देखते हैं कि दूध पिलाने के बाद डकार की बात की जाती है कि डकार दिलानी चाहिए, लेकिन बहुत सी बार जो माताएं होती हैं बच्चा बहुत देर तक डकार नहीं लेता है तो वो परेशान होकर उसे ऐसे ही सुला देती है, तो उसका सही तरीका क्या है जिससे समय पर डकार आए, और नहीं आए तो उसे कैसे सुलाने की जरूरत है?
2: बहुत बढ़िया पूछो आपने, डकार अपने आई करण गाँव में एवं नहीं, दुनिया भर में है, सब जगह बच्चे ने डॉक्टर बता रहे, अंग्रेजी में भी शब्द है, सब देश में अलग अलग भाषा में है, अपने डकार का अंग्रेजी में है बर्पिंग, तो बर्पिंग तो करवी पड़े, तो पहली बात तो इन्हें के सोरा ने दूध पिए माने थान खेसाए दूध आवे तो मुड़ा में थान ने जे बीटनी रहे निपल कहते हैं उसके बीच में अगर जगह रहती है होंठ में तो उसमें से हवा अंदर आ जाती है, दूध भी खेसाता है तो हवा भी खेसाती है, तो फिर दूध दूध तो काम आता है बच्चे के ना हवा हो पेट में फूले पत्ते पेट फूली जाए तो पाती ऊपर निरवा वास्ते आवे तो डकार में नेरे ने माए ध्यान नहीं रखे तो वधारे हवा जाए तो पचे तो पेट दुखे सोरानो नो उल्टी है थान, तो एक तो दूध पीवाड़ती वे ध्यान रखो के पीली बीटनी जे है मुड़ा में जावी जो है बीटनी ना रहा ऊपर और नीचे का काला भाग होता है उसको एरियोला बोलते हैं अंग्रेजी में, अपने भाई जब सब जाने तो एरियोला का भी ऊपर का भी और नीचे का भी हिस्सा बच्चे के होंठ में अंदर जाना चाहिए दूध ऐसे सही पिलाना, और फिर दूध पूरा पी ले बच्चा उसके बाद में कंधे पे लेना तो पीलो हवा हवा है तो हवा ऊपर आ जाए दूध दूध में से रह जाए ना पता पसाड़ी से कि थप थपाड़ो थपाड़ो तो खूब जोर नु तो रहती कसाई बर्तन करवो पर खूब नाजुक फोरफोरे हाथ लगाड़ो इन तक भी नहीं रहे असल थोड़ो देन तुम्हारे घर में दोनों मनक के वो बढ़िया थपो आओ आवाज का वो थापी ने इन्हें डकार आ भी जाए मनक के गो 2 मिनट करी डकार नहीं आए वो कहा तो सोरो डकार ने जब दोनों खोवाड़ी देने पते तो बच्चों रोवे या तब पेट खुली जाए नहीं या पते उल्टी करे तो जितनी बार दूध पीवाड़वा में लागे 10 से 15 मिनट इतनी सवार अगर डकार नहीं आती तो थापड़वा में भी लागो तमें बच्चा नो हवा माते लो ही दो मात मुड़ो ऊपर पोगने से और पीठ थप थपाओ तो जितना 10-15 मिनट दूध पीने में भी लगे उतनी देर तक थप थपाओ तो फिर बच्चा डकार लेगा उसके बाद सुलाओ।
0: बिल्कुल सर, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें बहुत सी माताओं की शिकायत रहती है कि हमारी नींद बाधित हो रही है ये हो रहा है और बहुत सी बार महिलाएं उसे आड़ा सुला कर भी सो जाती हैं, तो क्या ये चीज करना सही है?
2: नहीं अपने वगैरह ने महिला है उनकी कहते अपने तो मानो कितलो मोटो स्थान है सबसे की मोटी माँ है माँ कभी बाप ने तो एक ही मेरे महिला ने माँ मोटी है सोरो है मानो के नु माने तो अपने यहाँ तो नहीं करते हैं ऐसा पर वहाँ विदेश में ऐसा ऐसा होता था तो ये भी आजकल नहीं करता आई बाप अलार्म लगाड़ी ने हम पिलू करें सोरो नीर हो गए तो जगाड़ जगाड़ी ने दूध पीवाए तो ऐसी समस्या कम आती है माए आलस नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए पता है अगर आलस करे तो माँ के भी तो बच्चा रोए तुरंत उसको गोद में लेकर अपने वागड़ की माए ऐसा कभी नहीं करती है मैं
0: बिल्कुल सर, तो यही अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यदि माँ को कुछ समय के लिए बच्चे से दूर रहना पड़े तो वो अपना दूध सुरक्षित निकाल कर कैसे रख सकती है?
2: पहली बात ऐसा रहना नहीं चाहिए, सरकार भी छुट्टियां ले, पहले 3 महीना नहीं आती थी, अब 100 महीना ने दूध है, 100 महीना ने छुट्टी हूँ करवा लिया ने मास्टर नहीं है कि 100 महीना होती तुम्हारा सोरा ने पहले दवाड़ो करनो काम करवा के आराम करवा नहीं आली के चल खाओ ने सोरा ने दवाड़ो, तो 6-6 महीने की छुट्टी देती है गवर्नमेंट बच्चे को। और उसके बाद में सरकार का नियम है कि बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वहां पे बच्चे को माँ दूध पिला सके इसके लिए अलग कमरा रख के ने व्यवस्था करो। ये विधानसभा होती है ना, विधानसभा अपने मुख्यमंत्री ने मंत्री ने सब रहे ने तेना में भी आजकल महिला भी तो जाए मेंबर बड़ी ने अपने कुशल गढ़वारी बहन जी है हूँ ना मैडम एमएलए साहब है ने विधानसभा में तो कितनी एमएलए है तो सब ने बराबर सूट मिले के नानू शुरू हो तो तम वेच में जाने अलग कमरो एना में दूध पीवाड़ो, हवाई जहाज में भी रहे अलग कमरो ब्रेस्ट फीडिंग रूम अलग है कि जाने ने दूध पाओ। तो पहली बात तो सब जगह सुविधा है, पर हवे सोरो मोटो थी जाए 100 महीना नो थी गया तो नौकरी में जाव पड़े तो तई वेरे है ने याद कई एक काम थे हम माने वेगरो अस्पताल जाव एम सोरा के लिए जाए तो तई वेरे दूध निकाल सकते हैं। तो आजकल तो पंप आए हुआ पंप थे की काड़े आई अस्पताल में काड़े हमारे सब मन का जापो अस्पताल में जाए तो जो ही लो पंप है वो है घर में भी आवे बैर जाने तो पंप थे की दूध काढ़ी ने मेल दो। रूम टेम्परेचर माते आपड़े कोई फ्रीज नहीं हो के उमाड़ियो तो नहीं जुए कमरा में स्मेली तो साफ जगह में बेड़े ने पाए ठंडू रहे तो 24 घंटे वो दूध बिगड़ता नहीं है काम दे सकता है। भगवान ने ऐसा बनाया उसमें तो बीमारी से लड़ने की ताकत है तो दूध खराब नहीं होता है। और फिर इनको ज्यादा देर तक रखना है 2-2, 3-3 रखना है तो फ्रिज में रख लेते हैं वो
0: बिल्कुल।
2: और मैं तो कहूँ कि पंप भी नहीं चाहिए हाथ तक ही दबाड़ी ने बिटी तक ही दूध काढ़ी सके नहीं दूध अपने ढाकड़ा वाली छोटी डब्बी हो पीतल नहीं भी आवे अपने इना में घी काढ़ा ने तोलिए नहीं आती घी नी नान नानी इना में दूध काढ़ी ने मिल दो फ्रिज हो तो पक्के फ्रिज में मिल दो तो बेटर दाड़ा भी काम आवे ये एक दाड़ो तो आम भी काम आवे।
0: माँ
2: थोड़ी कुर पक्के बाढ़ने गई है तो 4 महीना नो 100 थे जो ना तेरी भी दूध पीवाड़ू है मानो है ना तो पक्के हुई एम कर लो
0: बिल्कुल। तो सर मैं भी जानना चाहूंगी कि गर्मी सर्दी या बरसात के मौसम में 6 महीने से छोटे बच्चे को पानी देने की जरूरत होती है क्योंकि हम देखते हैं कि महिलाएं ये सोचती हैं कि गर्मी में बच्चा पैदा हुआ है तो मैं थोड़ा सा पानी पिला देती हूँ। मैंने ये खुद ये उदाहरण खुद अपनी चाची का भी देखा है कि गर्मी में बच्चा होने पर उन्होंने उसे पानी पिला दिया था। तो इसके क्या नुकसान है, कैसे इसको लेकर महिलाओं को जागरूक होने की जरूरत है?
2: देखो भगवान ने सब दूध में पानी भी मिला के रखा है और अपने देश में भी गर्मी पड़ती है वे पहले वैसे वधारे पड़े वो भी इतनी नकी पड़ती ने दूध में जुए इतलो पानी है पानी से की पेट भर लोगा नानू को तो पेट है बच्चा नु पानी से की पेट भरोगा तो दूध की जगह नहीं रहेगा तो बच्चों कमजोर खाएगा। तो ये नियम है कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना है सिर्फ माँ का दूध, माँ के दूध के अलावा बीमार पड़ी जाए तो दवाई आल दो बीजू काय नहीं आलव जे ऊपर से की आलो एकदम पाप करो एम समझो तोरांत की दुश्मनी काढ़ो एम समझो या तुम्हारे मूर्ख वड़ाई है खबर पड़ती नहीं ने वना बाजू की डेढ़ अक्कल लगाड़ो ने सोरा ने ऊपर तक पाओ। गर्मी में भी मानो दूध काफी है तो कितनी गर्मी पड़े कितनी टाड़ पड़े माँ ने दूध ने लावा ऊपर नो पानी 100 महीना होती आलवो नती नुकसान करे खूब हमें हमदाड़ी हमदाड़ी थाकी गया ना आजकल वधारे बैठे तो समझी के नती आलता हुए।
0: बिल्कुल सर, ग्रामीण क्षेत्रों में स्तनपान को लेकर ऐसी कौन सी अच्छी परंपरा है जिसे अपनाने की जरूरत है?
2: ग्रामीण क्षेत्र में बढ़िया परंपरा है वो जानते हैं डिमांड फीडिंग होती है सोरानो पेट खाली थो तो रोए तो दूध पिवाड़ दें दवाड़ी दें असल दवाड़ी दें गांव वाली महिलाएं मेहनत करें बराबर खाएं आ खाऊ न कोई नहीं खाऊ नाटकी नहीं करें दूध भी बढ़िया उतरे इन्होंने मारे तो एक काम नहीं बोन आई थी हमारे बे सोरों हो तो पसे हमें भी कही दें कि यार पसे दहन से पाए थे सर एक दूध मानो भी पाओ न ऊपर नो भी पाओ और मारे तो एक बोन आई थी मैंने नाम लिखी रखू मैंने खबर न था आप आओ पढ़िया प्रश्न पूछोगा इन तो 300 था तन्ने आपड़ो दूध पीवाड़े तन्ने पेट भरे जातो ने तन्ने असल मोटा थी गया था बढ़िया मजा में मारी इच्छा हो दूध पीवाड़वा ने दूध पीवाड़ी सके आपड़े गांव वाले भाई तो असल दूध उतरे मजा में दार सोका કાંઈ કે લાપી બનાવીને કાંઈ જે સાસુ માં આપણે હું બનાવી હું કેવાય ને બતરીયું બનાવી કે તમે હલવો પડે કે હોટ નાખીને બઢિયા ને જે દવાઈ લાવે ને એ સબ અચ્છા દૂધ ઉતરતા હૈ और अपनी अच्छी आदत है गांव की महिला बढ़िया दूध पिलाती है बच्चे को।
0: बिल्कुल सर, परिवार के लोग माँ का मानसिक तनाव कैसे कम कर सकते हैं ताकि स्तनपान बेहतर हो?
2: घर के लोगों को क्या होता है कि थोड़ी माँ के प्रति उतनी वो नहीं रहती, पार्की बाई लेने आवे तो इन्हें पसाड़ी तो नहीं है, पर इन्हें सोना ने सबने घर वाला नहीं समझाड़ू पड़े कि आप भाई ने दुखी करोगा तो हो सोरो तुम्हारा असल बढ़ेगा नहीं, तुम्हारे हो सोरा ने दूध उतरेगा नहीं बराबर, ही कमजोर रहेगा तो तुम्हारा नुकसान है। तो अपने बच्चे से तो प्यार करते हैं, पोते से तो, बेटे से तो, सासुए भी अपने पोते पोती से तो बहुत प्यार करती है, पर थोड़ा माँ के लिए सख्त होती है, तो उनको बराबर बता देना पड़ेगा कि अभी माँ को अच्छा आराम कराओ, माँ को अच्छा खिलाओ, माँ खुश रहेगी, माँ बराबर खाएगी तो दूध उतरेगा बढ़िया और आपका बच्चा अच्छा होगा। माँ नाराज नाराज रोती रोती रहेगा बापड़ी के पीली हाउ एम कह दी दो नन नाम बोली गुस्सा में दूध पाएगा तो सोरानी तबीयत खराब थाएगा। तो जब तक माँ दूध पिलाए उसको बहुत प्रसन्न रखना चाहिए।
0: बिल्कुल सर, माताओं को खान पान में क्या विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी के समय में ये जो समस्या है बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखो माओ को ज्यादा परहेज रखने की जरूरत नहीं है, माओ को आजकल एक पिलू है कि हमारे तो टाका आए वहां तो नहीं खा, अरे नैसे टाका आए वहां तो इंटकी तो खावा नहीं खावा में कोई फर्क नहीं पड़े, फल नहीं खाओ में तो इंटक पाकी जाए, लून नहीं खा पाकी जाए, कोई नहीं पसंद लून नहीं खाओ तो भावे नहीं तो कम खवाए तो दूध कम उतरे,
0: अरे
2: नींबू नहीं खवाए, नींबू तो विटामिन सी रहे इना में ग्रोथ नो फायदो करे, खावानो असल पसी जाए माने तो असल खाए तो ठीक है, तो नीचे टाका आवे तो कोई परहेज रखवानी जरूरत नहीं, ऊपर आवे आमार तो भाई खादो नहीं सही आठ दड़ा એટલે દૂધ નથી પાતી આને, આમ તો ઓપરેશન થયું ઉપર તેની સોરો લીધો હોય તો નથી ખબર, એ બી બેકાર કી બાત હે, ઉપર છે ઓપરેશન છે બચ્ચા લિયાઓ તો ભી બચ્ચે કો દો ઘંટે બાદ માં કે પાસ સુલાના ચાહીએ ઓર બિના ઓપરેશન, ઓર હમ તો યું કરતે હૈ ઓપરેશન મે જાતે હૈ ના તો બૈરે વાળા ડોક્ટર તો ઓપરેશન કરીને બચ્ચો કાઢે, ને અમે બસ સોરા નું ધ્યાન રાખે, અમે હું કરે સોરા ને પેલો એનો આપડે પ્લાસેન્ટા કો ક્યાં બોલતે કોર્ડ, એ કોર્ડ નાલ નાલ કાટી ભી નહીં હોય, એને પેલે સોરા ને લઈને એને માં ને સાથી માટે ઉવાડી દા,
0: બિલકુલ
2: માં ની સાથી માં નું પેટ ને સોરા નું પેટ મળે તો સોરા ને અચ્છું લાગે, અને માં ને ભી અચ્છું લાગે મારો સોરો હોય તો દૂધ ભી જલ્દી ઉતરે।
0: बिल्कुल सर,
2: तो चाहे सीजेरियन ऑपरेशन में टाका आवा हो के नैसे टाका लीधा हो, मानो दूध तो बराबर आलू से कितनी बार में आलू ये आप पूछोगा तो मैं बता दूंगा।
0: बिल्कुल सर, बता दीजिए।
2: हाँ तो बता दो, तो बे घंटा ने मई मई घंटा ने मई मई पहला घंटा में आलो ये कहवा गोल्डन आवर, एक घंटा ने मई मई आली देव पड़े, गोल्डन के सोनो सोना नो चेन हो तो केवी बढ़िया लागे, सोना ना हाथ में कड़ा हो तो બીજી કાપ ની કેટલી બઢિયા હોય એવું થોડું ફાયદો કરે, હરેક ની ઈચ્છા રહે, સ્વર્ણિમ સમય હોતા હૈ એક પહેલા જન્મ કે તુરંત બાદ કા એક ઘંટા, તો ઉસી મે બચ્ચે કો દૂધ પિલાના પ્રારંભ કર દેના ચાહીએ, દૂધ નહીં ઉતરે તો ભી થોડા ઉતરે તો ભી, બચ્ચા લેકે મુંહ મે લેતા હૈ ચૂસતા હૈ તો બચ્ચે કી આદત પડતી હૈ કે હવે ભૂખ લગેગી તો ભાઈ દૂધ અપને કો યહાં સે મિલેગા ચૂસો, બૂંદ આને સે ભી, ઓર બચ્ચે ને ચૂસા નિપલ તો નિપલ સે માં કે દિમાગ મે ગયા સંદેશ એને સમાચાર, અરે હવે સોરો તો થઈ ગયો, પહેલા તો પેટમાં હતો તો પેલા મેં નાળા થકીને ખોરાક મળી જતી, હવે તો આ સોરો બાંધને આવી ગયો સુવે, આમ તો ભાઈ હવે થાન મેં દૂધ બનાવો જલ્દી, હવે તો વધારે દૂધ બનાવવું પડે કે થાન મેં આટલા દાડા થાન કઈ ન તો દૂધ તો નહીં, હવે તો દૂધ પીવાડું પડે તો જલ્દી દૂધ ઉતરતા, એટલે પહેલે ઘંટે મેં દૂધ ઉતરે નહીં ઉતરે, ઓપરેશન કિયા હો કુછ ભી હો માં કા દૂધ બચ્ચે કો થાન દેના ચાહીએ ઓર પિલાના ચાહીએ।
0: बिल्कुल सर, तो सर जैसा कि कार्यक्रम में आपने ढेर सारी बातें हमारे श्रोता साथियों को बताई है, यही कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे?
2: एक रुपया अगर अपन खर्च करते हैं माँ का दूध बच्चा पिलाए इसका प्रचार करने के लिए, एक स्टाफ रखवा वास्ते आशा ने तनखा आला अपने एएनएम ने तनखा आला बीजी आजकल हूँ साथी ने सब ने, तो सरकार आमत नहीं हालती દુનિયા મેં ડાક્ટર નું કેવું હે ડબ્લ્યુએચઓ ની પર કે 1 રૂપિયો તમે આજે માનવ દૂધ પીવાડવા ખર્ચ કરોગા તો એના 59 રૂપિયા નો ફાયદો થાયગા.
0: બિલકુલ.
2: આજે ભી દુનિયા મેં 5,40,000 મોતે એટલે થાય કે માનવ દૂધ બરોબર નથી પાત, માનવ દૂધ પહેલા ઘંટા મેં નથી પાત, બે જાપો થયો હોય તો દેર થઈ પાયંગા, અને માનવ દૂધ ઉતરતું નથી તો માને સમજાડતા નથી, પીવાડવાનું શીખાડતા નથી, અને હાથ થકી કાઢીને પાતા નથી. ત્યાં પછી અમારે તો નોકરી માટે જવું હોય તો વના દૂધ પીવાડે ચલી જાય કે કી આઈએ, તો ઉસે 5,40,000 મોતે હોતી હૈ. 4,00,000 તમ બચ્ચો કી ઓર 1,40,000 માઓ કી ખાલી દૂધ ભી પીવાડવાતે કી. તો અને એમ હિસાબ કાઢ્યો કે 1 રૂપિયાનો તમે ખર્ચો કરો માના દૂધ વાસ્તે, સમજાડો માને, અસ્પતાલ રાખો, આ આકાશવાણી વાળાને કહો કે તમે ભી ટાઈમ ખરાબ કરો ભાઈ, હવે તમે આટલું બોલો તો આપણે રેડિયો ના કેટલા પૈસા ખર્ચ થઈ જાય
0: પંકજ
2: ભાઈ ના, આગળ રેડિયો ના ખર્ચો તો થાય છે કે
0: હવે હવે
2: તો ભી આ કરવું ફાયદેમંદ છે દેશ વાસ્તે. એટલે માનું દૂધ તો પીવાડવું જોઈએ, ને 6 મહિને તક સિર્ફ માં કા દૂધ.
0: બિલકુલ.
2: સિર્ફ નો મતલબ બીજું કઈ નહીં, 6 મહિને કે બાદ ખાલી માં કા દૂધ પૂરા નહીં પડતા હે, સોર મોટો થઈ ગયો હે તો એને માનો દૂધ આલો, ગૌ માતા નું દૂધ આલો, ને દાર નું પાણી, સોકા નું પાણી એ આલવું શરૂ કર દો. પછી પાણી પી લે, ફલ નો રસ આલો એ પી લે, તો પછી ખાટી છાશ નાખીને રાબ બનાવીને પાત્રો પાત્રો શીરો બનાવીને, મીઠું ભાવતો તો પાત્રો પાત્રો શીરો ગરબણું કે આપણે ગોર નું બનાવો, ખાંડ નું બનાવો, દેશી ઘી નું બનાવો, ડાલડા નું બનાવો, જે તમારે અવેલે ઘર મેં હે આપણા પરિસ્થિતિ અનુસાર એ બનાવીને ખવાડવું. ઓર યે તો રાબ બનાના તો છોરીએ ભૂલ ગઈ આજકલ નહીં કી, તો મેરે તો અહીંયા શીખાના પડતા ઉનકો.
0: બિલકુલ સર.
2: એ તો રાબ પોષણ ભી હૈ ઓર યે દસ્ત વસ્ત મેં તો દવાઈ ભી હોતી હૈ, તો વો આરામ સે પચ જાતા હૈ. ઓર એમ કરીને વધાર કરો, પછી ખીચડી આલો, તુલી આલો, મસરી ના આલો, રોટલો દાર માં મસરી ના આલો, ને 1 સાલ નો બચ્ચો થઈ જાય તો પછી જે આઈ બાપ ખાતો હોય એ ભી ખાઈ શકે. 6 મહિના થકી 1 સાલ સુધી એમ ધીરે ધીરે વધારવું હોય, તો 6 મહિના સુધી ખાલી ખાલી ખાલી માનો દૂધ આલવું હોય.
0: હવે બિલકુલ સર, આપને કહી કહા તો સર જૈસા કે કાર્યક્રમ મેં ઢેર સારી બાતે હો ગઈ હૈ, તો આપકા મેં ધન્યવાદ કરના ચાહુંગી કે આપ હમારે કાર્યક્રમ સે જુડે ઓર આપકા કિંમતી સમય આપને હમે દિયા.
2: સચ્ચી વાત, ધન્યવાદ.
0: श्रोता साथियों, जैसा कि अभी हमारे बीच में कार्यक्रम के माध्यम से विषय विशेषज्ञ जुड़े हुए थे और हमने ढेर सारी बातों को जाना, अब कार्यक्रम में मनोरंजन का समय हो चुका है मनीषा, तो क्यों ना हमारे दोस्तों को हम एक और प्यारा सा गीत सुनवा दें.
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को. आप सभी बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर.

0: साथियों, इस गीत के बाद हम रुक करते हैं कार्यक्रम की ओर। जैसा कि विषय विशेषज्ञ मनीषा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए थे और उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से ये बताया कि माताओं को किस तरीके से बच्चे को स्तनपान 6 महीने तक कराना चाहिए। कुछ मिथक जैसे कि हमारे समाज में फैले हुए हैं, उनको हमने बहुत हद तक दूर कर दिया है। लोग अभी के समय में जागरूक भी हुए हैं, लेकिन बहुत से पढ़े लिखे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने ये चीज देखी है कि गर्मी में मेरी चाची का बेटा हुआ था और उन्होंने उसे पानी भी साथ में पिलाया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य को परेशान कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि डॉक्टर कोई भी चीज हमें बताता है या जो स्वास्थ्य केंद्र से कोई चीज या नियम कानून आते हैं उनको लेकर हम विशेष दिवस मनाते हैं, लोगों में जागरूकता फैलाते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं फैलाते हैं। उसका कोई ना कोई महत्वपूर्ण कारण होता है, तभी हम लोगों को जागरूक करते हैं कि आप 6 महीने तक अपने बच्चों को केवल स्तनपान ही कराएं। स्तनपान से बच्चा भी स्वस्थ रहता है और महिलाएं भी स्वस्थ रहती हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कुछ आंकड़े बताए थे कि कितने बच्चों की और कितनी माताओं की मृत्यु इसी कारण से होती है। तो ये कुछ चीजें हमारे हाथ में है, तो उनको लेकर हमें भी जागरूक होने की जरूरत है और अन्य लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। और ये जो समय होता है वो महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा अलग होता है। इस समय महिलाओं का मूड जो है उसमें कभी गुस्सा, कभी चिड़चिड़ापन, कभी क्या ऐसी स्थिति आती है। ऐसे में घर परिवार के सदस्य को चाहिए कि वो पूरी तरीके से उसे संतुष्ट करें, उसे जैसा मन कर रहा है वैसी चीजें करने दे, ताकि वो खुश रहेगी तो वो अपने बच्चे को खुशी खुशी स्तनपान करा पाएगी और उसका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि स्तनपान प्रकृति और जो प्रकृति द्वारा दिया गया मानव मतलब शिशु के लिए सबसे अनमोल उपहार होता है। ये केवल बच्चे का पेट भरने का साधन नहीं है साथियों, बल्कि उसके स्वास्थ्य, सुरक्षित और उज्जवल भविष्य की पहली सीढ़ी होती है। माँ का दूध बच्चे को पोषण देता है, जो कि श्रोता साथियों

0: खुशी के साथ कर पाती है।
1: बिल्कुल मनीषा, आधुनिक जीवन शैली चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन माँ के दूध का महत्व कभी नहीं हो सकता, कभी कम नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल,
1: यह प्रकृति का एक ऐसा अनमोल उपहार है जिसे कोई भी विकल्प पूरी तरह नहीं दे सकता। इसलिए श्रोता साथियों, हर माँ को यह विश्वास होना चाहिए कि उसका दूध उसके बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे पौष्टिक और सबसे कीमती आहार है।
0: बिल्कुल,
1: हमें ये भी याद रखना चाहिए कि स्तनपान केवल 6 महीने की जिम्मेदारी नहीं बल्कि आने वाले वर्षों के अच्छे स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण निवेश है। एक छोटा सा प्रयास आज बच्चे को भविष्य में कई बीमारियों से बचा सकता है और उसके शारीरिक और मानसिक विकास को बेहतर बना सकता है।
0: जी हाँ,
1: हम सब मिलकर ऐसा माहौल बनाए जहाँ हर माँ बिना किसी संकोच, डर या भ्रम के अपने बच्चे को स्तनपान करा सके।
0: जी हाँ,
1: यही जानकारी फैलाए, नई माताओं को सम्मान दे और उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे अकेली नहीं है। जब हर माँ को सहयोग मिलता है तभी हर बच्चे को स्वस्थ जीवन का अधिकार मिलेगा।
0: जी हाँ,
1: यही एक सशक्त, संवेदनशील और खुशहाल समाज की सबसे बड़ी पहचान है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे जो माएं हैं उन्हें समझना चाहिए कि हर माँ और शिशु अलग अलग होते हैं। किसी को शुरुआत में श्रोता साथियों आसानी होती है तो किसी को थोड़ा समय लगता है।
1: बिल्कुल,
0: यदि किसी प्रकार की कठिनाइयां आए या असफलता हमें महसूस हो तो श्रोता साथियों में धैर्य और नियमित प्रयास और साथ ही हमें विशेषज्ञों की सलाह लेकर उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करनी है। माँ को स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए क्योंकि अंजलि जी हम देखते हैं कि प्रकृति उसे अपने बच्चे की आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम बनाती है। साथियों, एक स्वस्थ समाज वही है जहाँ मातृत्व का सम्मान किया जाता है, स्तनपान को प्रोत्साहित किया जाता है, अस्पतालों, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य संस्थाओं, विद्यालयों, कार्यस्थलों और सामाजिक संगठनों को मिलकर श्रोता साथियों एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जहाँ हर माँ है वो बिना झिझक के अपने शिशुओं को स्तनपान करा सके। जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य शिक्षा और सही परामर्श के माध्यम से श्रोता साथियों हम इस दिशा में बड़ा बदलाव भी ला सकते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, किसी भी समाज की असली ताकत उसकी आने वाली पीढ़ी होती है। उस पीढ़ी की नींव जन्म के बाद के शुरुआती दिनों में ही रखी जाती है। इसलिए स्तनपान को केवल एक स्वस्थ विषय मानकर नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी और भविष्य निर्माण के अभियान के रूप में देखने की आवश्यकता है।
0: जी बिल्कुल,
1: जब एक माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तो वह केवल उसका पेट नहीं भरती है श्रोता साथियों बल्कि उसे सुरक्षा, विश्वास, अपनापन और स्वस्थ जीवन की मजबूत शुरुआत भी देती है।
0: जी हाँ,
1: यह रिश्ता शब्दों से नहीं बल्कि ममता, प्रकृति के अद्भुत संतुलन से बनता है।
0: बिल्कुल,
1: हमें ये भी याद रखना होगा मनीषा कि हर माँ का अनुभव अलग होता है। किसी के लिए स्तनपान आसान होता है तो किसी के लिए शुरुआत में चुनौती हो सकती है।
0: जी हाँ,
1: ऐसे समय में सबसे अधिक जरूरत इस बात की है कि धैर्य, सही मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग की। यदि हम किसी माँ का मनोबल बढ़ाएंगे तो उसे समय देंगे और अपनी परेशानियों को समझेंगे तो वह अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने बच्चे की देखभाल कर सकेगी।
0: जी बिल्कुल,
1: यही संवेदनशीलता हमारे समाज को और अधिक मानवीय बनाती है। श्रोता साथियों, आज हमें एक ऐसी सोच को अपनाना है जिसमें नई माताओं को सलाह से पहले सम्मान मिले, आलोचना से पहले सहयोग मिले, भ्रम की जगह सही जानकारी मिले, क्योंकि एक जागरूक परिवार ही एक स्वस्थ बचपन का आधार बनता है।
0: जी बिल्कुल,
1: स्वस्थ बचपन ही एक शिक्षित, सक्षम और मजबूत भारत का भविष्य तैयार करता है। इसलिए श्रोता साथियों, हर माँ का हाथ हमें थामे रखना है, हर शिशु के अधिकार का सम्मान करना है और स्तनपान को एक स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल समाज की पहचान बनानी है।
0: जी हाँ,
1: तो इस तरीके से मनीषा, आज कार्यक्रम में हमने जाना कि स्तनपान को हम कैसे आसान और सफल बना सकते हैं और इससे परिवार की और माँ को विशेष तौर पर किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे ताकि आज का ये कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग की प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाय यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम के होस्ट कशिश पाराशर। स्वागत करते हो दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम कार्यक्रम आपकी फरमाइश का सिलसिला आपके साथ हमारा रोज़ाना बना रहता है, सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। श्रोता साथियों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं और आप भी अपनी फरमाइश की गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना कुछ नहीं है श्रोता साथियों, आपको लिखना है फिल्म का नाम, गीत की बोल, आप कहाँ से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं, वहाँ का आपको नाम लिखना है, साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, जैसा कि सुबह के 11 बज चुके हैं और फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से शुरू हो चुका है, तो मैं बढ़ना चाहूँगी हमारी पहली फरमाइश की ओर। साथियों, पहली फरमाइश हमारे बीच आई है बागपत उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है विजय पथ, गीत के बोल हैं राह में उनसे मुलाकात हो गई। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में बागपत यूपी से, आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान, सादिक अली खान, सारिक अली खान। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं वाड़ीकला से, भूमिका कुमार, नरेश चौहान, मनोज कुमार मीणा जी, मेघराज मीणा जी, सुरेश मीणा जी। श्रोता साथियों, धनपुरा से जुड़ना चाह रहे हैं सुरेश, विक्रम सिंह, लक्ष्मण चौधरी, चंद्रपाल जी, राम प्रसाद जी। तलवाड़ा से हैं महावीर देवीलाल जी, राजा राम, मनसा राम जी और संदीप जी। और भी दोस्त इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं सत्येंद्र नरेश चौहान, जयवर्धन चौहान, सत्यम चौहान, शिवम, संजीव, कमलेश जी, रोहित चौहान, वजेंद्र अरुण जी, गणेश लाल जी, ये रायबरेली से जुड़ रहे हैं। तो आइए श्रोता साथियों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं राह में उनसे मुलाकात हो गई। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, राह में उनसे मुलाकात हो गई। इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं श्रोता दोस्तों हमारी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है, मैं आपको बताना चाहूँगी। ये फरमाइश हमारे बीच आई है दोस्तों, फिल्म का नाम है रंग दे बसंती और गीत के बोल हैं लुक्का चुप्पी बहुत हुई। प्रतापपुर से श्रोता साथी इस गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं संदीप जी, राजाराम देवीलाल जी, महावीर राय प्रसन्न जी, चंद्रपाल लक्ष्मण चौधरी, विक्रम सिंह, सुरेश मेघराज मीणा जी, मनोज कुमार मीणा जी और भी दोस्त हमारे बीच जुड़ना चाह रहे हैं। जो जुड़ रहे हैं पाड़ी कला से हैं पुष्पा कुमार, हेमंत टेलर, आशाराम, रमेश लाल, प्यारे लाल, श्याम लाल, घनश्याम, राधेलाल जी, लाला राम, अरविंद, राहुल, जसवंत जी, मेघराज मीणा जी, कपिल शर्मा जी, रोहित वैजेंद्र जी, अरुण, गणेश लाल, जसवंत, संजय, अखिलेश, हेमराज मीणा जी, श्याम प्रसाद जी और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। श्रोता साथी हैं सतराम जी जो कि घाटोल से जुड़ रहे हैं, हेमंत, आकेश, देवेश जी, हरेंद्र जी ये भी घाटोल से जुड़ रहे हैं, दलपत श्यामलाल जी, रामलाल, पंकज, राहुल शर्मा जी, मेघराज मीणा जी राय बरेली से हैं। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं लुक्का चुप्पी बहुत हुई। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

0: श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का हमारे बीच गीत आया है साथियों सहारनपुर से। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है, गीत के बोल हैं आंख है भरी भरी। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं जनकपुर सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशा, अरमा इजरा, अजरा तबस्सुम जी। बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौन असना, मोहम्मद आफिया अंसारी जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं हरेंद्र विकास दाम्पत्य जी, शंभूलाल जी, श्यामजाल जी, पंकज जी, राहुल शर्मा जी, ये रायबरेली से हैं। इसी बीच हमारे श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जो कि सुनना चाह रहे हैं घाटोल से इसी गीत को, सतराम संजय, सीताराम सत्यम, कल्याण जी, मोहन जी, सुरेश संतोष जी, सिरोमान प्रदीप, आनंद जी, धर्मराज जी, हरिशंकर हेमराज जी, मीणा जी और घनश्याम जी। तो आइए साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं आंख है भरी भरी। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।
1: बेटा, आंसू पी के भी जो मुस्कुराए वही तो जमाने को जीत पाए।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है दोस्तों, बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है बॉर्डर। गीत के बोले, हमें जम से मोहब्बत हुई है। ये फरमाइश छत्तीसगढ़ कोरबा से आई है। फिल्म का नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉर्डर, और गीत के बोल हैं, हमें जब से मोहब्बत हुई है। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, लक्ष्मण सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, माला शाना, शानू मन्नू, बब्बू कान्हा और हरी प्रिया जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। और भी दोस्त हमारे इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। भिलाई छत्तीसगढ़ से दीपक खटक, सुनला खटक, योगी कुमार खटक, सूर्य डोमेंद्र, सोनल डोमेंद्र, डोली मिन्हास, प्रभा मिन्हास। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, हमें जब से मोहब्बत हुई है।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की। और अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी, सहारनपुर से ही आया है फरमाइश का गीत। बोल है दोस्तों गीत के, घर से निकलते ही फरमाइश करता है इस गीत से जुड़ना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहूंगी, जॉन डिकेस्टो, रोज डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो जी। और भी श्रोता साथी बनारस से हैं, अब्दुल माजिद अंसारी, नोनी अंसारी, आफिया परवीन जी। गंजुडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज बेगम, इमरानाज, नाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं घर से निकलते ही। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है दोस्तों कलानूर से। फिल्म का नाम है परदेस। गीत के बोल हैं, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं कलानूर से नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन, मयंक शर्मा। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हैं एड नासिर शेख, नाते नासिर शाजिद शाहिद। गोविंदपुर अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मिखाइल मुजावर जी। मेरठ से अनिल जैन, सैम जैन, मस्कान मास्टर, जीवीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, पवे जैन, अंशिका जैन। इसी बीच जोधपुर राजस्थान से जुड़ रहे रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी। और भी हमारे दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। बिलड़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके।

श्रोता, उस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की। और अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है भिलाई छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है तुम बिन, गीत के बोल हैं तेरी फरियाद। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे दीपक खटक, प्रमिला खटक, चंद्रशेखर खटक, सुरेंद्र रोमेंद्र, सोलन डोमेंद्र, डोली मिन्हास जी, प्रभा मिन्हास जी, गंजुटवारा उत्तर प्रदेश से हैं, मास्टर खिल्लू परवेज बेगम, इमराना नाथ, नाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं दीपक खटक, प्रमिला खटक, चंद्रशेखर खटक, सुरेंद्र डोमेंद्र, सोनल डोमेंद्र, डोली मिन्हास, प्रभा मिन्हास। डुमराव से जुड़ना चाह रहे रायगढ़ बिहार से उमा दास, शफीक उमा, अरविंद उमा, रमेश उमा, दीपक उमा और कमल उमा जी। खंडवा से दुर्गा कुमारी, सपना राकेश ताई, डुमराव से ललूबा, दिव्याना, दिव्या भारती जी। चंद्रशहर सहारनपुर से महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यमिनी यादव, नरेंद्र यादव जी। परभणी महाराष्ट्र से रुपेश सिंगे, महेश प्रिगेश, प्रीतेश संगई, पूरा संगई परिवार। बक्सर शहर से हैं फातिमा राज, बेबी अंसारी, डब्ल्यू अंसारी जी। तो आइए दोस्तों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं तेरी फरियाद। तब तक आप बने रहिएगा, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में है।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है। तो इसी बीच आप अपने फरमाइश की गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, जैसा कि कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पारेशर के साथ में, अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भागपत UP से। फिल्म का नाम है हमराज, गीत के बोल ही तुम अगर साथ देने का वादा करो। इस गीत की फरमाइश करता है आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। जनकपुरी सहारनपुर से जुड़े हैं जोन डिकिस्ट्रो, रोजे डिकिस्ट्रो, पल डिकिस्ट्रो, विलेज डिकिस्ट्रो। इस गीत के अनुरोध करता है जौनपुर से इशाद अहमद अंसारी, कामरान इशाद, अरमान इशाद, नवीद इशाद, अजात अबूसम जी। बनारस से जुड़ रहे हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरिन अंसारी, आफिया परवीन जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे गंजुड़वारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही तुम अगर साथ देने का वादा करो। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजुड़वारा उत्तर प्रदेश सी। फिल्म का नाम है मुझसे दोस्ती करोगी, गीत के बोल हैं अनदेखी अनजानी सी। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने और उदित नारायण जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, माला सिंह ठाकुर, मानुषानु, बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी। और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं बलाई छत्तीसगढ़ से दीपक खटक, प्रमिला खटक, चंद्रनगर से जुड़ना चाह रहे हैं सुरेश डोमिन, शालिनी जी डोमिन, लाहौरा से जुड़ रहे हैं डोली और प्रभा जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं बिहार से उमा राज, दीपक उमा, रमेश उमा, जगदीश उमा, कमल जी उमा। खंडवा से जुड़ना चाह रहे दुर्गा कुमारी, सपना ताई, राकेश ताई। डुमराव से जुड़ना चाह रहे हैं लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, स्टार मोहम्मद समी जी। चंद्रनगर सहारनपुर से जुड़ रहे हैं महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यामिनी यादव, नरेंद्र जी यादव। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं अनदेखी सी अनजानी सी। इस फिल्म का नाम है मुझसे दोस्ती करोगी। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने और उदित नारायण जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाघ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है हीरा पन्ना, गीत के बोल हैं। फिल्म का नाम है आशा और गीत के बोल हैं शीशा हो या दिल टूट जाता है। इस गीत की फरमाइश करता है रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रतेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसे भी जुड़ना चाह रहे बक्सर शहर से फातिमा नाज, बीबी अंसारी, डब्लू अंसारी। जमशेदपुर से जुड़ना चाह रहे हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी जी भाटिया। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, सनीता पुष्पा श्रीवास, रंजन शाह, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं कोका बलाई से उत्तम सिंह जंगिल, मोरस जंगिल, अनिल कुमार जंगिल, अजित कुमार जंगिल, आयुषी जंगिल, नंदनी जी जंगिल। सुकरी कला से जुड़ रही हैं अमित जंगिल, सुकुन जंगिल, आरुषी, ओशिका और आदित्य जी जंगिल और अंजलि जी जंगिल। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं शीशा हो या दिल टूट जाता है। फिल्म का नाम है आशा और इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना लता मंगेशकर जी की आवाज में। गीत के बोल थे, शीशा हो या दिल टूट जाता है। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दिल्ली से। फिल्म का नाम है हम है राही प्यार के। गीत के बोल हैं, घूंघट की आड़ से दिलबर का। और इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से, मास्टर विठल सुरुषी, सुषमा सुरुषी, परिधि सुरुषी, मायराजी सुरुषी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे धनुरे तेलीवाला से निसार सलमानी, नौसा सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। इस गीत के अनुरोध करता है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित और आहूजा जी। अम्बाला हरियाणा से जुड़ रही है रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरुशब्द, गुरकीरत सिंह राहुल। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, घूंघट की आड़ से दिलबर का। फिल्म का नाम है हम है राही प्यार की। और इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। तो आइए साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है डुमराव से। फिल्म का नाम है मोहरा, गीत के बोल हैं टिप टिप बरसा पानी। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण जी ने और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है वलीउल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी, शबनम बानो जी। जेल रोड बक्सर से जुड़ रहे हैं राज एडी अंसारी, फातमा नाज। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं सतीश अनिजा, सूरज अनिजा, विमला अनिजा जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव, अपर्णव जी नामदेव। इस गीत के अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छनुला श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजु योगिता श्रीवास, अंजन शाहू, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रही हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव खुराना, रिधानजी खुराना। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं टिप टिप बरसा पानी। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण जी ने और अलका जी ने, और फिल्म का नाम है मोहरा। तो आइए साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अमरावती महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है कुर्बान। गीत के बोल हैं ये धरती चांद सितारे। इस गीत की फरमाइश करता है सिद्धार्थ गुड़ानी, अर्चनाताई गुड़ानी, प्रणय प्रसिद्धि ही रामन शेंडी, प्रतिभाजी गुड़ानी, महेश राम टीके जी, इसी बीच जुन्नाचार्य भागपत सी, जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बेटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूतन जी। अम्बाला हरियाणा से जुड़ रही हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर जी, प्रकाश राहुल, प्रियंका नमन, गुरशब्द गुरकीरत सिंह राहुल। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। सलार पेलगाम कश्मीर से जुड़ना चाह रहे हैं पीरजादा मिराजुद्दीन, नसमुद्दीन, केसरुद्दीन जी। इसी बीच जुड़ रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, आनंद राठौड़, श्रीमती गिरिजारी राठौड़, लोके जोशी, श्रीमती पायल जोशी, कुमारी अंकिता जोशी, बेबी वेदई जोशी। खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रही हैं अब्दुल गफार डावर जी। मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं श्रीमती जयवंती केवट। बक्सर से जुड़ रहे हैं पूनम नायडू जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं धरती चांद सितारे। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

श्रोता साथियों, अभी हमने कुर्बान फिल्म का बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, ये धरती चांद सितारे। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भद्रावती से। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल ही एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस गीत की फरमाइश करता है अब्दुल्लोही वाला शाहिदा शेख, शाहिल शेख, अब्दुल्ला जी शेख। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे, लुंगी से बाबा साहेब कनककर, साखरबाई कनककर, परमेश्वरी रोहिणी, श्रावणीश्वरी और कनककर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रही हैं। इस गीत के अनुरोध करता है सरार पलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन नजमुद्दीन केसरुद्दीन जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे मराठवाड़ा से संबित मशरूम, साइना हसन, आगसना जिया, आफिया और इब्राहिम जी। जौनपुर से जुड़ रहे हैं इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद, अज्जात अबुस्सम जी। बनारस से जुड़ना चाह रहे हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरीन अंसारी, आफिया परवीन जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं एक मुलाकात जरूरी है सनम। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाघ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों,

फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूं आपका हमारी आज की सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। साथ ही श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। आज दिनांक 7 मई 2026 वार गुरुवार का दिन है। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। अगला कार्यक्रम शुरू होगा आपकी और हमारी आवाज़ यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज़। इसे लेकर आएंगे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 5:30 पर। इसके बाद हम रुख करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन की ओर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6 बजे। फिर अगला कार्यक्रम शुरू होगा इसी कड़ी में किसान भाइयों का खेतीबाड़ी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि पारेशर और इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। दोस्तों, कार्यक्रमों की रूपरेखा में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी अंजलि पारेशर। अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मनीषा पटेल यानी कि मेरे साथ में, और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान।

इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे ठीक 8 बजे। दोस्तों, मनोरंजन की होगी पूरी भरमार, तभी आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 पर। श्रोता साथियों, इन्हीं नगमों के बाद हम रुक करेंगे गजलों की ओर, सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 बजे तक। तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है तो वो घटना उसके अंतर को झकझोर देती, समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है, मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है। उस घटना के उत्तर में वो न्याय मांगता है, और ये योग्य भी है। वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश है। किंतु ये न्याय क्या है, न्याय का अर्थ क्या है? अन्याय करने वाले को अपने कार्य पर पश्चाताप हो और अन्याय भुगतने वाले के मन में फिर से विश्वास जगे समाज के प्रति, इतना ही अर्थ है ना न्याय का। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं होता वो न्याय को छोड़कर बैर और प्रतिशोध को अपनाता है, हिंसा के बदले प्रतिहिंसा की भावना लेकर चलता है। स्वयं भोगी हुई पीड़ा से कई अधिक पीड़ा देने का प्रयत्न करता है, और इस मार्ग पर चलते अन्याय को भुगतने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है। शीघ्र ही वो अपराधी बन जाता है, अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है, और इसी अंतर का नाम है धर्म। क्या ये सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनू, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हूं या आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जैया हवा में आपड़े हाल हूं ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है ये अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राखंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जाओ या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
5: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपे करने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है, पटवारी, सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरो ने हाथे मलिन जावो है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमीन माते नाम लकड़वो काटो नती, जय वरे अधिकार हमरो अपनावे, जानकारी सबनो हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
4: होवे भाइयों ने बहनो, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को।
1: जी हाँ, और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। जैसा कि दोस्तों जब भी हम कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ते हैं तो बातचीत आपसे ढेर सारी होती है एक नए विषय को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: आज भी कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं एक नए विषय को लेकर। जागृति जी, आज हमारे युवा साथियों से हमारे बातचीत का विषय है दिखावे के दौर में पैसे बचाना सबसे बड़ा हुनर होता है।
1: बिल्कुल कशिश, जैसे कि धन कमाना बुद्धिमानी है लेकिन धन बचाना दूरदर्शिता है। आज का युग उपभोग और प्रदर्शन का युग बन गया है। हम देखते हैं कि आधुनिक जीवन में व्यक्ति की सफलता का मूल्यांकन उसके ज्ञान चरित्र या संस्कार से अधिक उसके पहनावे, मोबाइल, गाड़ी, घर और महंगे शौकों से किया जाने लगा है।
0: बिल्कुल,
1: सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ा दिया है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी का सबसे आकर्षक पक्ष चुनता है, वो आकर्षक पक्ष दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहता है। ऐसे समय में वो अपनी आय के अनुसार जीवन जीना और अनावश्यक खर्चों से बचत करना वास्तव में सबसे बड़ा हुनर है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर हम साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं पहले एक प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ,
0: तो दोस्तों आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: श्रोताओं लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। और जैसा कि गीत से पहले आपको विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि दिखावे के दौर में पैसा बचाना सबसे बड़ा हुनर है।
1: बिल्कुल
0: कशिश, हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि पैसा केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन नहीं है, बल्कि भविष्य की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का आधार भी है।
1: बिल्कुल,
0: जो व्यक्ति कम आय में भी बचत करना सीख लेता है वही जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी मजबूती से खड़ा रहता है।
1: जी हाँ जागृति जी, और जैसा कि आज का समय सोशल मीडिया का समय है तो ऐसे में हर दिन हमारी मोबाइल स्क्रीन पर किसी न किसी की नई बाइक या फिर किसी का महंगा फोन या किसी की विदेशी यात्रा, शानदार पार्टी या ब्रांडेड कपड़ों की तस्वीरें दिखाई देती हैं।
0: बिल्कुल
1: साथियों, ये धीरे धीरे सब हमारी सोच को प्रभावित करने लगता है और हमें ऐसा लगने लगता है कि अगर हमारे पास भी ये सब नहीं है तो शायद हम पीछे हैं। लेकिन श्रोता साथियों, सोचने वाली बात ये है कि क्या सच में जीवन की सफलता महंगी चीजों से ही तय होती है? क्या खुश रहने के लिए जागृति जी केवल दिखावा जरूरी है या फिर अपनी कमाई का सही उपयोग और भविष्य के लिए बचत करना भी असली समझदारी है?
0: बिल्कुल,
1: हम देख सकते हैं कि दिखावे की संस्कृति वर्तमान में बढ़ रही है। ऐसा क्यों श्रोता साथियों? क्योंकि पहले लोग अपनी जरूरत के अनुसार खर्च करते थे, आज लोग जो हैं वो दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करने लगे हैं। जागृति जी, सोशल मीडिया ने तुलना की आदत तो बढ़ा ही दी है, अब लोग अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की राय को महत्व देते हैं। कई युवा अपनी पहली नौकरी लगते ही महंगा मोबाइल खरीद लेते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनने लगते हैं और हर सप्ताह बाहर का खाना खाने लगते हैं।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, ऐसी चीजों पर वे खर्चा करते हैं जिनकी वास्तव में जरूरत ही नहीं होती है।
0: बिल्कुल,
1: कई बार ये खर्च अपनी आय से भी अधिक हो जाता है उनके लिए और यहीं से दिखावे की शुरुआत होती है। जागृति जी,
0: बिल्कुल कशिश, आज हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी जिंदगी का केवल चमकदार हिस्सा दिखाते हैं।
1: जी जी,
0: जैसा कि आपने बताया था अभी कि महंगी यात्राएं, ब्रांडेड वस्तु, आलिशान होटल और लग्जरी जीवन देखकर कई लोग स्वयं को उनसे तुलना करने लगते हैं। दोस्तों, ये तुलना व्यक्ति को अनावश्यक खर्च करने के लिए प्रेरित करती है।
1: बिल्कुल,
0: कई बार लोग केवल फोटो खिंचवाने या वीडियो बनाने के लिए महंगे कपड़े खरीदते हैं या ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां उनकी आर्थिक क्षमता साथ नहीं देती।
1: जी हाँ,
0: दिखावे की आदत केवल खर्च नहीं बढ़ाती श्रोताओं, बल्कि आर्थिक अस्थिरता भी पैदा करती है।
1: बिल्कुल,
0: क्रेडिट कार्ड का बहुत ज्यादा उपयोग करना, बिना आवश्यक के ऑनलाइन खरीदारी करना, कर्ज लेकर शादी और समारोह करना, दूसरों की बराबरी करने की मानसिकता, साथ ही बचत का समाप्त हो जाना, ऐसे लोग अचानक आने वाली बीमारी, नौकरी जाने या किसी आपातकालीन परिस्थितियों में सबसे अधिक परेशान हो जाते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। ऐसे में श्रोता साथियों, हर व्यक्ति मेहनत करके पैसा कमाता है।
0: जी हाँ,
1: लेकिन हर व्यक्ति पैसा बचा नहीं पाता। जागृति जी, पैसा बचाना केवल बैंक में रकम जमा करना नहीं होता साथियों, बल्कि अपनी इच्छाओं और जरूरतों के बीच अंतर समझना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: जो व्यक्ति अपनी आय का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखता है ना जागृति जी, वही समय आने पर आर्थिक रूप से मजबूत बनता है।
0: बिल्कुल,
1: और कहावत भी कही गई है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इसी तरह दोस्तों, छोटी छोटी बचत एक दिन बहुत बड़ी पूंजी बन जाती है।
0: बिल्कुल कशिश, पैसा बचाना क्यों जरूरी है अगर इसको लेकर हम बताएं हमारे श्रोता साथियों को, तो दोस्तों पैसा बचाना हमारे आपातकालीन परिस्थितियों के लिए भी सही रहता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी समय एक जैसा नहीं रहता है।
1: जी
0: कभी कोई बीमारी आ जाती है, कभी कोई दुर्घटना, कभी हमारी नौकरी छूट जाती है, कोई पारिवारिक संकट, उसमें बचत सबसे बड़ी सहायता बन जाती है हमारी।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही आत्मनिर्भरता, यानी कि जिसके पास बचत होती है वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है। आर्थिक सुरक्षा व्यक्ति को तनाव से मुक्त भी रखती है। साथ ही घर खरीदना हो, बच्चों की शिक्षा हो, व्यवसाय शुरू करना हो या सेवानिवृत्ति, ये सब बचत से ही संभव होता है।
1: बिल्कुल,
0: आज का युवा ऑनलाइन शॉपिंग करता है, फूड डिलीवरी, महंगे मोबाइल और फैशन पर काफी खर्च कर रहे हैं। हम देखते हैं कशिश की युवा कम उम्र से ही बचत की आदत विकसित करेंगे तो वो भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। हर महीने आय का कम से कम 20% बचाने की आदत हमारे जीवन को बदल सकती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं युवा साथियों से कि दिखावे के दौर में पैसा बचाना सबसे बड़ा हुनर है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ,
1: तो साथियों आप बने रहिएगा बागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों इस गीत के बाद फिर से हम रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि बातचीत गीत से पहले भी बहुत अच्छी चल रही थी साथियों, अब यही जानते हैं कि दिखावे का सबसे बड़ा नुकसान क्या है।
1: जी हाँ,
0: तो जागृति जी, दिखावे की आदत धीरे धीरे आर्थिक तनाव पैदा करती है। कई लोग केवल दूसरों की बराबरी करने के लिए उधार लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का ज्यादा उपयोग करते हैं और ईएमआई पर ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी आवश्यकता उन्हें नहीं होती है।
1: बिल्कुल।
0: फिर क्या होता है कि कुछ समय बाद वही खर्च चिंता, तनाव और कर्ज का कारण बन जाता है। साथियों, जो खुशी कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए मिली थी, उसकी कीमत कई महीनों तक उन्हें चुकानी पड़ती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए बचत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जैसा कि बताया था कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। भविष्य में कई बीमारियां आ सकती है, कभी हमारी नौकरी चली जा सकती है, तो ऐसे में श्रोता साथियों, हमें अपनी पूंजी को कह सकते हैं कि निवेश करके रखना चाहिए, ताकि कभी अगर हमें उसकी जरूरत पड़े तो हम उसका इस्तेमाल सही जगह पर कर सकें।
1: जी हाँ कशिश, भारत के अनेक महान नेताओं ने सादगी पूर्ण जीवन जिया था। जैसे कि महात्मा गांधी ने सादगी को अपनी पहचान बनाया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उच्च पद पर रहते हुए भी सादा जीवन जिया। श्रोताओं, इनका जीवन हमें बताता है कि महानता दिखावे से नहीं बल्कि विचारों और कर्मों से आती है।
0: जी जी।
1: आय के अनुसार हमें बजट बनाना होगा, पहले बचत करनी है फिर हमें खर्च करना है। अनावश्यक ऑनलाइन खरीदारी से बचना होगा, क्रेडिट कार्ड का सीमित उपयोग करना होगा जैसा कि आपने बताया था।
0: जी जी।
1: अगर ये सारी चीजें हम करेंगे श्रोता साथियों, तो हम कह सकते हैं कि हम दिखावे से बच सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहेंगे दोस्तों कि जब हम आवश्यकता से अधिक वस्तुएं खरीदते हैं तो संसाधनों का भी और अधिक दोहन होता है।
0: जी हाँ।
1: कम खरीदना केवल पैसा नहीं बचाता बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी करता है। इस प्रकार बचत आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों दृष्टियों से लाभदायक है। कशिश, जिस व्यक्ति के पास बचत होती है वो कठिन समय में किसी के सामने हाथ फैलाने के मजबूर नहीं होता।
0: बिल्कुल।
1: बचत हमें आत्मविश्वास देती है और यह व्यक्ति को स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति भी देती है।
0: जी हाँ जागृति जी, ऐसे में हमारे युवा साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, अगर आपकी पहली नौकरी आपको लगती है तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में बचत करने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि बहुत से युवा ऐसा सोचते हैं जागृति जी कि अभी तो मेरी उम्र ही क्या है,
1: बिल्कुल
0: बाद में बचत कर लूंगा। लेकिन सच तो ये है कि बचत की सबसे अच्छी शुरुआत पहली कमाई से ही होती है। अगर शुरुआत से ही आय का 10-20% बचाने की आदत बन जाए श्रोता साथियों, तो भविष्य काफी सुरक्षित हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: याद रखें कि हर चमकती चीज जरूरी नहीं होती। अगर आपका मोबाइल सही चल रहा है तो केवल नया मॉडल आने पर उसे बदलना समझदारी नहीं है। अगर कपड़े पर्याप्त है श्रोता साथियों, तो हर ट्रेंड के पीछे भागना जरूरी नहीं है। और अगर घर का खाना उपलब्ध है तो केवल सोशल मीडिया पर तस्वीर डालने के लिए बार बार बाहर खाना खाना भी सही निर्णय नहीं हो सकता।
1: जी हाँ।
0: समझदार व्यक्ति अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं जागृति जी। आपसे कहना चाहेंगे युवा साथियों कि लोग आपके कपड़ों को कुछ मिनट ही देखेंगे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन आपका व्यवहार, ईमानदारी और मेहनत जीवन भर याद रखते हैं।
1: जी हाँ।
0: दुनिया में सफल लोग केवल इसलिए सफल नहीं बने क्योंकि उन्होंने महंगी चीजें खरीदी है। इसलिए जागृति जी, वे सफल हुए क्योंकि उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिए हैं, मेहनत को अपनी संसाधनों का सही उपयोग किया है।
1: जी हाँ कशिश, एक उदाहरण के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे कि दोस्तों दो मित्र थे, राहुल और विवेक। दोनों की आय भी समान थी। राहुल हर महीने महंगे कपड़े, मोबाइल और घूमने फिरने पर पैसा खर्च कर देता था।
0: बिल्कुल।
1: दूसरी ओर विवेक अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से बचाता और निवेश करता था। कुछ वर्षों बाद अचानक कंपनी बंद हो गई कशिश। राहुल के पास न बचत थी और न कोई सहारा, उसे उधार लेना पड़ा। वहीं विवेक ने अपनी बचत के बल पर नया छोटा व्यवसाय शुरू किया और कुछ समय बाद सफल उद्यमी बन गया। ये कहानी हमें यही बताती है कशिश कि भविष्य सुरक्षित करने वाला व्यक्ति वही है जो कमाई के साथ बचत भी करता है।
0: जी हाँ।
1: दिखावे की चमक क्षणिक होती है लेकिन बचत की ताकत जीवन भर साथ रहती है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं, सच्ची समृद्धि महंगे सामान में नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और संतुलित जीवन में है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर आय के अनुसार जीवन जीना सीख लेता है, वही वास्तव में सफल और बुद्धिमान कहलाता है।
0: बिल्कुल।
1: आज आवश्यकता इस बात की नहीं है श्रोता साथियों कि लोग हमें कितना अमीर समझते हैं, बल्कि इस बात की है कि हम अपने भविष्य को कितना सुरक्षित बना रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: अगर हम दिखावे की दौर से बाहर निकलकर सादगी, विवेक और बचत को अपनाएंगे तो न केवल हमारा जीवन सुरक्षित होगा बल्कि समाज भी आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनेगा।
0: जी हाँ।
1: तो दोस्तों यही कहना चाहेंगे कि दिखावे से क्षणिक प्रशंसा मिल सकती है लेकिन बचत जीवन भर का आत्मविश्वास देती है।
0: बिल्कुल।
1: धन की असली पहचान उसे खर्च करने में नहीं बल्कि सही समय के लिए सुरक्षित रखने में है।
0: जी हाँ।
1: जो व्यक्ति कमाई से पहले सोचता है और खर्च से पहले बचत करता है, वही भविष्य का सच्चा विजेता होता है। इसीलिए बदलते समय का सबसे बड़ा मंत्र है, सादगी अपनाइए, बचत बढ़ाइए और सुरक्षित भविष्य बनाइए।
0: बिल्कुल जागृति जी। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी रही और हमने जाना कि बदलते दौर में हमें बचत की आदत को अपनाना चाहिए, साथ ही पैसा बचाना किस प्रकार से एक सबसे बड़ा हुनर हो सकता है हमारे युवा साथियों के लिए, ये भी हम जान पाए हैं। अब जैसा कि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारे आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

करा। बोलन की आवाज विकास की असली पहचान है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। सेहत नु राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात की शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सी व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के पहले 1000 दिन में पोषण के महत्व को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: अक्सर हम सोचते हैं कि बच्चे का विकास उसके जन्म के बाद शुरू होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि एक स्वस्थ और मजबूत जीवन की नींव बच्चे के जन्म से पहले ही पड़ जाती है।
0: बिल्कुल,
1: माँ के गर्भ में आने के पहले दिन से लेकर बच्चे के 2 वर्ष पूरे होने तक का समय लगभग 1000 दिनों का होता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे बच्चे के जीवन का स्वर्णिम अवसर मानते हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि इसी अवधि में मस्तिष्क का सबसे तेज विकास होता है।
0: जी हाँ।
1: शरीर की नींव मजबूत होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने लगती है। यदि इस समय सही पोषण मिल जाए तो बच्चा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से बेहतर विकास कर सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर हम हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना जरूरी है, तो क्यों ना शुरुआत में दोस्तों को पहले एक प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दें हम।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं बच्चों के पहले 1000 दिनों में पोषण का क्या महत्व होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि जी, हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे कि पहले 1000 दिनों में पोषण का मतलब केवल अधिक भोजन देना नहीं होता, बल्कि ऐसा संतुलित और पौष्टिक आहार देना होता है साथियों, जिससे माँ और बच्चे दोनों को जरूरी पोषक तत्व मिल सके।
1: जी जी।
0: यदि गर्भवती महिला का भोजन संतुलित नहीं होगा तो उसका प्रभाव सीधे बच्चे के विकास पर पड़ेगा। इसलिए दोस्तों परिवार की ये जिम्मेदारी बनती है कि गर्भवती महिला को पौष्टिक भोजन के साथ साथ पर्याप्त आराम और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहे।
1: बिल्कुल। यही कशिश अब बात आती है कि गर्भावस्था के दौरान माँ को आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा में जरूरत होती है। हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, दूध, दही, मौसमी फल, साबुत अनाज और स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ माँ और बच्चे दोनों के लिए लाभदायक होते हैं। यदि माँ स्वयं स्वस्थ रहेगी कशिश, तभी बच्चा भी स्वस्थ जन्म ले सकेगा। श्रोता साथियों, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, बच्चे के लिए अमृत के समान होता है।
0: जी हाँ।
1: इसमें ऐसे पोषक तत्व और रोगों से बचाने वाले तत्व होते हैं कशिश, जो नवजात शिशु को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना और पिछले 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना बहुत आवश्यक माना जाता है। कहना चाहेंगे कशिश श्रोता साथियों से कि 6 महीने तक बच्चे को किसी भी प्रकार का पानी, शहद, जन्म घुटी या अन्य भोजन देने की आवश्यकता नहीं होती है।
0: बिल्कुल।
1: माँ का दूध ही उसके लिए पूर्ण आहार होता है। यह न केवल बच्चे की भूख मिटाता है श्रोता साथियों, बल्कि उसके मस्तिष्क, हड्डियों और रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
0: जी बिल्कुल श्रोता साथियों, इसी के साथ अगर आपको बताएं तो जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब केवल माँ का दूध पर्याप्त नहीं रहता। इस समय पूरक आहार की शुरुआत करनी चाहिए। साथियों, पूरक आहार का मतलब होता है ऐसा घर का ताजा, नरम और पौष्टिक भोजन जो बच्चे की उम्र के अनुसार पर्याप्त हो।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि दाल, खिचड़ी, दलिया, रागी, चावल, मसली हुई सब्जियां, मौसमी फल और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ। श्रोता साथियों, ये सभी चीजें हम धीरे धीरे बच्चों के भोजन में शामिल कर सकते हैं। साथ ही 2 वर्ष उससे अधिक तक स्तनपान जारी रखना भी बच्चों के लिए लाभदायक माना जाता है। हम देखते हैं अंजलि जी कि कई परिवारों में ये गलत धारणा होती है कि बच्चा कम खाता है, इसलिए उसे बार बार पैकेट वाले खाद्य पदार्थ या मीठी चीजें देनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन दोस्तों, ऐसे खाद्य पदार्थ पेट तो भर देते हैं बच्चों का, पर शरीर को जरूरी पोषण नहीं दे पाते। इसलिए बच्चे को ताजा, घर का बना हुआ और संतुलित भोजन हमें देना चाहिए। ये उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है।
1: जी हाँ। यही कशिश बात आती है कि पहले 1000 दिनों में यदि बच्चे को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है तो कुपोषण, वजन कम, लंबाई का कम बढ़ना, बार बार संक्रमण होना, सीखने की क्षमता में कमी और भविष्य में कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।
0: जी हाँ।
1: इन कमियों की भरपाई बाद में करना कठिन हो जाता है श्रोता साथियों, इसलिए शुरुआत से ही सही पोषण देना सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। पोषण का संबंध केवल भोजन से नहीं बल्कि स्वच्छता से भी होता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि बच्चे को कशिश पौष्टिक भोजन मिले लेकिन पीने का पानी दूषित हो, हाथ साफ न हो या आसपास गंदगी हो तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और शरीर से मिलने वाले पोषक तत्वों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए हाथ धोने की आदत, साफ बर्तन, स्वच्छ पानी और साफ वातावरण भी अच्छे पोषण का हिस्सा है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से बातें हमारे श्रोता साथियों से बहुत अच्छी चल रही है, प्रथम 1000 दिनों को लेकर,
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।
2: चिटिकी टक टक चिक टक, चिटिकी टक टक चिक, चिटिकी टक

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बच्चों के हजार दिनों के पोषण को लेकर बातचीत कर रहे हैं, यहीं अब बात आती है कशिश के माता पिता के साथ साथ दादा दादी नाना नानी और परिवार के अन्य सदस्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1: बिल्कुल,
0: यदि पूरा परिवार बच्चों के पोषण का ध्यान रखे, समय पर भोजन दे, प्यार और धैर्य के साथ खिलाए और उनकी बढ़त पर नियमित ध्यान दे तो बच्चे का विकास अधिक संतुलित होता है।
1: बिल्कुल,
0: आंगनवाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी इस दिशा में महत्वपूर्ण सहयोग देते हैं। नियमित वजन मापना, टीकाकरण, पोषण संबंधित सलाह और स्वास्थ्य जांच जैसी सेवाओं का लाभ हर परिवार को लेना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: यदि बच्चे का वजन या विकास सामान्य से कम लगे तो समय पर विशेषज्ञ की सलाह लेना आवश्यक है। यह भी याद रखना चाहिए कशिश के हर महंगा भोजन पौष्टिक नहीं होता। हमारे गांव और स्थानीय क्षेत्रों में उपलब्ध दालें, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, मूंगफली, तिल, गुड़, मौसमी फल और हरी सब्जियां भी बच्चों के लिए बहुत ही पौष्टिक होती हैं। यही जानकारी और संतुलित आहार सही जानकारी और संतुलित आहार से कम खर्च में भी बच्चों को अच्छा पोषण दिया जा सकता है।
1: जी हाँ दिलीप जी, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बच्चे के जीवन के पहले जो हजार दिन होते हैं वो केवल एक समय अवधि नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: बल्कि उसके पूरे भविष्य की नींव है। साथियों, इस दौरान दिया गया सही पोषण, उचित देखभाल, स्तनपान, पूरक आहार, स्वच्छता और परिवार का स्नेह, ये सभी मिलकर बच्चे को स्वस्थ, बुद्धिमान और आत्मविश्वास के साथ साथ मजबूत बनाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यदि हम श्रोता साथियों इस महत्वपूर्ण समय का सही उपयोग करेंगे तो हम केवल एक बच्चे का नहीं बल्कि पूरे समाज के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे होंगे।
0: जी हाँ, यही श्रोता साथियों बात आती है कि पहले 1000 दिनों के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवधि में बच्चे के मस्तिष्क का लगभग 80% विकास हो जाता है।
1: जी।
0: यही वह समय है जब बच्चा अपने आसपास की आवाजों को पहचानना, चेहरे को याद रखना, मुस्कुराना, प्रतिक्रिया देना, बोलना और धीरे धीरे नई चीजों को सीखना शुरू करता है।
1: बिल्कुल,
0: यदि इस समय उसे पर्याप्त और संतुलित पोषण नहीं मिलता तो इसका प्रभाव केवल उसके शरीर पर ही नहीं बल्कि उसके सीखने की क्षमता, याददाश्त, भाषा विकास और भविष्य की शिक्षा पर भी पड़ सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए समय का सही पोषण बच्चों के पूरे जीवन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी समझना जरूरी है कि पोषण केवल पेट भरने का नाम नहीं है। कई बार बच्चों का पेट तो भर जाता है लेकिन उनके शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते। यदि भोजन में केवल चावल या रोटी हो, दाल, हरी सब्जियां, फल, दूध या अन्य पौष्टिक चीजें न हो तो बच्चा धीरे धीरे पोषण की कमी का शिकार हो सकता है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए भोजन में विविधता होना आवश्यक है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सस्ते और पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी बच्चों के लिए बहुत लाभदायक हो सकते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि आजकल बाजार में मिलने वाले रंग बिरंगे पैकेट वाले खाद्य पदार्थ जो हैं, वो बच्चों को आकर्षित करते हैं। कई बार माता पिता भी बच्चों की जिद पूरी करने के लिए अंजलि जी उन्हें चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट्स के साथ साथ मीठे पेय पदार्थ बार बार दे भी देते हैं।
0: जी जी,
1: लेकिन ऐसे खाद्य पदार्थ श्रोता साथियों बच्चों को सिर्फ स्वाद दे देते हैं पर शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। धीरे धीरे यही आदत मोटापा, दांतों की समस्या, भूख कम लगना और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन जाता है। इसलिए बच्चों को बचपन से ही घर का बना ताजा और संतुलित भोजन पसंद करना आप सिखाएं। हम कह सकते हैं कि पहले हजार दिनों में बच्चे को प्यार और स्नेह के साथ भोजन कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि बच्चे को डांट कर, डरा कर या फिर जबरदस्ती हम खिलाते हैं तो वह भोजन से दूरी बनाने लगता है।
0: जी हाँ,
1: इसके अलावा यदि परिवार धैर्य के साथ मुस्कुराते हुए और बच्चे की गति के अनुसार भोजन कराए तो बच्चा भोजन को सकारात्मक अनुभव के रूप में अपनाएगा। श्रोता साथियों, ये आदत आगे चलकर उसके स्वस्थ खानपान की नींव बन सकती है।
0: बिल्कुल कशिश, यही श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि इस दौरान नियमित स्वास्थ्य जांच भी बहुत आवश्यक है। बच्चे का वजन, लंबाई, विकास की समय समय पर जांच कराते रहने से हमें पता चलता है कि वह सही गति से बढ़ रहा है या नहीं।
1: जी,
0: यदि किसी प्रकार की कमी दिखाई दे तो समय रहते उसे दूर किया जा सकता है। इसी तरह कशिश, गर्भवती महिलाओं को भी नियमित स्वास्थ्य जांच, आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां, चिकित्सीय सलाह मिलना अत्यंत आवश्यक है। याद रखिए कि किसी भी देश का भविष्य उसके बच्चों पर निर्भर करता है और बच्चों का भविष्य उनके पहले हजार दिनों की देखभाल पर।
1: बिल्कुल,
0: यदि इस अवधि में उन्हें सही पोषण, स्वच्छ वातावरण, माँ का स्नेह, परिवार का सहयोग और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहे तो वे आगे चलकर न केवल स्वस्थ नागरिक बनते हैं बल्कि शिक्षा, रोजगार और समाज के विकास में भी बेहतर योगदान देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए पहले 1000 दिनों में किया गया हर छोटा प्रयास आने वाले कई वर्षों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव बन जाता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ।
1: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमारा वरा हंग्र भाई बुनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु गणिमान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थे सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो भाई बोनो आज हमारे कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नु विषय है कि वर्षा ऋतु में पेयजल की गुणवत्ता सामुदायिक स्तर माते अपने हूँ समाधान करी शक। तो भाई बोनो अड़ा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी अब तक की घना कानी बातें थाएंगा पर कार्यक्रम शुरू करा इन्हें पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे करा आपड़ी बातें। तो भाई बोनो आप हमारे रेसू आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें वागर रेडियो 90.8

0: हो जाती है, दांत पीले हो जाते हैं, दांतों पे लाइंस पड़ जाती हैं, तो इसके लिए कम फ्लोराइड वाला जल पिए या जिस जल को हम पी रहे हैं, जिस हैंडपंप से पानी को ले रहे हैं, जिस कुएं से पानी को ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि वर्षा जल को संग्रहित करके रखें और उस पानी में जो हम हमारे कुएं या हैंडपंप या ट्यूबवेल से ला रहे हैं उसमें कम से कम 50-60% शुद्ध वर्षा जल मिलाएं और फिर उस पानी को पिए, जिससे फ्लोराइड की मात्रा उसमें कम हो जाएगी और आसानी से जो है हम फ्लोरोसिस की बीमारी से बच सकेंगे।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, उसके क्या कारण होते हैं और क्या उपाय हम कर सकते हैं, यही सर बातें बहुत अच्छी चल रही है कार्यक्रम में। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सामुदायिक स्तर पर हम क्या प्रयास कर सकते हैं।
0: तो ये वास्तविकता में बहुत जरूरी बात है, क्या करें सुरक्षित पेयजल के लिए, जो है हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तो सबसे पहली चीज है, जिस स्रोत का पानी हम पीने के लिए उपयोग करते हैं उस स्रोत को बहुत साफ रखें, उसके आसपास गंदगी न होने दें, पानी जमा न होने दें और अन्य प्रकार की गंदगी ना होने दें, जैसे पशुओं का मल है या इस तरह की कोई चीजें हैं, उसके बाजू में कूड़ा करकट डालना या उखेड़े का ढेर लगाना, ये जल को दूषित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: अगर कुआं है तो कोशिश करें कि उसको ढक के रखें, क्योंकि कुओं के अंदर कई प्रकार के पक्षी जो है अपना घोंसला बनाते हैं और कई बार दुर्घटनावश वो पक्षी कुएं में गिर जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है वो उसी में जो है, तो कुओं को ढक के रखें तो अन्य प्रकार की गंदगी भी होने से बचा रहेगा और कुएं का पानी स्वच्छ रहेगा।
1: बिल्कुल सर।
0: हैंडपंप के पास जो सामान्य रूप से प्लेटफॉर्म होता है उसमें जल निकासी को जो है सुनिश्चित करें और आसपास की जगह को साफ रखें।
1: जी बिल्कुल।
0: अगर टंकी या कंटेनर में हम पानी को इकट्ठा करते हैं तो सप्ताह में कम से कम एक बार उसे साफ करें और फिर से भरें। इसी तरह से हमारे घर में जो बर्तन हैं जिसमें हम पीने के लिए पानी को रखते हैं उसको ढक के रखें। पानी निकालने के लिए हम हमेशा डंडी वाले लोटे या ग्लास का उपयोग करें, जिससे कि पानी के अंदर हमारे हाथ या उंगलियां न डूबे।
1: जी जी।
0: क्योंकि कई बार हमारे हाथ या उंगलियों में यदि हम अचानक बाहर से आए, बहुत तेज प्यास लगी है और इस स्थिति में यदि हाथ को उसमें डुबा दिया जाता है तो कई प्रकार के विषाणु जो है उस पानी में प्रवेश कर जाएंगे जो हमारे साथ साथ पूरे परिवार को भी बीमार कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: हमेशा कोशिश करें कि जब भी हम पानी को लाते हैं तो उसे छान के भरें और हो सके तो उबाल के ठंडा करके फिर जो है विशेष रूप से बारिश के दिनों में प्रयोग करें।
1: बिल्कुल।
0: तो कम से कम 10 मिनट के लिए पानी को उबालें, जब पानी उबलने लग जाए उसके बाद उसे 10 मिनट तक और उबलने दें।
1: जी जी।
0: ताकि उसमें जो भी गंदगी है या जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, वो मर जाए।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि किस तरीके से हमें बारिश के मौसम में पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना है और सामुदायिक स्तर पर हम क्या प्रयास कर सकते हैं। तो सर आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: आपका और वागड़ रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: માઇન બનો જેમ કે આપણે આપણે વેસ્ટમાં મનીષજી સર જોડ્યો તક હતો ને એણે આપણને ઘણી અચલ તરીકા થકી ઘણા કાની વાતે બતાડી હે આશા કરો હો કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનું તો સૂટા તો પડા પણ સાથે પહેલા હામરી લાય કર કે તમારે પડા સૂટા

कैंसर थी जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा। ओ अंजलि बोन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा। होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाइयों ने बोनो जहीवरे ग्राम सभा में बोने बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं, माँ जंगल थकी जुड़ियो बोने में रिश्तो है। जे जंगल में हमसे हैं ई इन्होंने रक्षा करे हैं, तो आओ बोना ने भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल अनु भविष्य सुरक्षित करा। बोना ने आवाज विकास की असली पहचान है। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है मित्रता के महत्व को लेकर।
0: बिल्कुल
1: अंजलि, जैसे कि जीवन में धन पद और प्रसिद्धि कभी भी मनुष्य को पूर्ण सुख नहीं दे सकती, लेकिन एक सच्चा मित्र कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी आसान बना देता है।
0: जी हाँ
1: श्रोताओं, मित्रता केवल दो लोगों का साथ नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान, सहयोग और निस्वार्थ प्रेम का ऐसा बंधन है जो जीवन को नई दिशा और नई ऊर्जा देता है। सच्चा मित्र हमारी सफलताओं में खुश होता है और असफलताओं में हमारा सबसे मजबूत सहारा बनता है।
0: जी जी,
1: इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, आज श्रोता साथियों से कार्यक्रम में इस विषय पर हमारी ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे दोस्तों को मनोरंजन करवाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने विषय से अवगत करवाया था आपको कि बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है मित्रता के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, कहा गया है कि सच्ची मित्रता जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होती है।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि मनुष्य जन्म से अकेला आता है और अकेला ही इस संसार से विदा हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोता साथियों, इन दोनों यात्राओं के बीच जो रिश्ते उसके जीवन को अर्थ, आनंद और शक्ति देते हैं, उनमें मित्रता का स्थान सबसे विशेष होता है। मित्रता केवल दो व्यक्तियों का साथ नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान, सहयोग, त्याग और निस्वार्थ प्रेम का ऐसा बंधन है जो जीवन की हर कठिन राह को सरल बना देता है।
0: बिल्कुल।
1: सच्चा मित्र हमारे जीवन का वह दीपक होता है दोस्तों, जो अहंकार के समय आशा का प्रकाश बनकर हमारा मार्गदर्शन करता है। इसलिए कहा गया है कि सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे।
0: बिल्कुल अंजलि, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेले जीवन नहीं जी सकता। उसे अपने विचार साझा करने ही पड़ते हैं, अपने दुख सुख बांटने पड़ते हैं, कठिन समय में सहारा देने वाले किसी व्यक्ति की उसे आवश्यकता होती है और यही आवश्यकता मित्रता के रूप में पूरी होती है।
1: बिल्कुल।
0: सच्ची मित्रता जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति है श्रोताओं, जिसे धन या पद से नहीं खरीदा जा सकता। मित्रता का अर्थ केवल साथ घूमना, फिरना, मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि सच्ची मित्रता तो वो है जिसमें स्वार्थ नहीं हो, बल्कि अपनापन हो, दिखावा नहीं हो, बल्कि विश्वास हो और केवल शब्द नहीं बल्कि कर्म से साथ निभाने की भावना हो।
1: जी जी।
0: एक सच्चा मित्र हमारी खुशियों में मुस्कुराता है और हमारी परेशानियों में सबसे पहले हमारे साथ खड़ा दिखाई देता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब परिवार भी हर समय हमारे साथ नहीं रह पाता, लेकिन एक सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में हमारा मनोबल बढ़ाता है।
0: बिल्कुल।
1: वह हमें निराशा से बाहर निकालता है, सही सलाह देता है और कठिन निर्णय लेने में भी सहायता करता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि मित्रता जीवन को आनंद, उत्साह और आत्मविश्वास से भर देती है। युवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है जागृति जी। इसी समय व्यक्ति अपने भविष्य का निर्माण करता है। यदि इस समय उसे अच्छे मित्र मिल जाए तो वे उसकी सोच को सकारात्मक बनाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं और लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग देते हैं। वहीं गलत संगति युवाओं को गलत आदतों, समय की बर्बादी और गलत निर्णयों की ओर ले जाती है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति की पहचान उसके मित्रों से ही होती है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि अच्छा मित्र हमारी अच्छाइयों को बढ़ाता है और हमारी कमियों को सुधारने का प्रयास करता है। वहीं हमारी गलतियों पर वो चुप नहीं रहता, बल्कि प्रेम पूर्वक हमें सही रास्ता दिखाता है।
1: जी जी।
0: इसके विपरीत श्रोता साथी, बुरी संगति व्यक्ति के चरित्र, व्यवहार और भविष्य को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए मित्र चुनते समय केवल व्यवहार नहीं बल्कि उसके संस्कार और विचार, साथ में जीवन मूल्य को भी समझना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: विश्वास के बिना कोई भी संबंध लंबे समय तक नहीं टिक सकता। मित्रता की सबसे बड़ी शक्ति विश्वास ही है। जब दो मित्र एक दूसरे पर भरोसा करते हैं अंजलि, एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान करते हैं और कठिन समय में वो साथ निभाते हैं, तभी मित्रता मजबूत बनती है।
1: बिल्कुल।
0: झूठ, ईर्ष्या और स्वार्थ मित्रता को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, सच्चा मित्र कभी भी अपने मित्र का अपमान नहीं करता, उसकी सफलता से ईर्ष्या नहीं करता और उसकी असफलता का मजाक नहीं उड़ाता। वह श्रोता साथियों हर परिस्थिति में उसका सम्मान करता है। मित्रता में ईमानदारी होती है, विनम्रता, क्षमा का भाव होना आवश्यक है। छोटी छोटी गलतफहमियों को बातचीत से दूर किया जा सकता है। आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के कारण हजारों लोगों से जुड़ाव होना हमारा आसान हो गया है, लेकिन सच्चे मित्रों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि ऑनलाइन मित्रता उपयोगी हो सकती है लेकिन वास्तविक मित्र वही होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर हमारे साथ खड़े हो।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए हमें आभासी दुनिया से अधिक वास्तविक संबंधों को महत्व देना चाहिए।
0: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हम मित्रता के महत्व को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मित्रता के महत्व को लेकर, जिसमें हमने जाना मित्रता का क्या महत्व है और जीवन में मित्र क्यों जरूरी है और युवाओं के जीवन में मित्रता की क्या भूमिका है, अच्छे मित्र और बुरी संगति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही हमने जाना जागृति जी कि मित्रता में ईमानदारी और सम्मान का क्या महत्व है।
1: बिल्कुल,
0: अब यही बात आती है कि भारतीय संस्कृति में मित्रता के क्या आदर्श है। तो श्रोता साथियों, भारतीय संस्कृति में मित्रता के अनेक प्रेरणादायक उदाहरण मिलते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी जागृति जी निस्वार्थ प्रेम और समानता का प्रतीक मानी जाती है। सुदामा निर्धन थे, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी भी उनकी गरीबी को महत्व नहीं दिया।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने अपने मित्र का सम्मान करते हुए यह सिद्ध किया श्रोता साथियों कि सच्ची मित्रता धन दौलत नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास का आधार होती है।
1: बिल्कुल,
0: इसी प्रकार श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हमें सिखाती है कि मित्र संकट के समय सबसे बड़ा सहयोगी होता है। श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता यह बताती है कि सच्चा मित्र केवल साथ देने वाला नहीं बल्कि सही समय पर सही मार्गदर्शन देने वाला भी होता है।
1: जी हाँ अंजलि, मित्रता हमें सहयोग, त्याग, संवेदनशीलता, धैर्य, सहनशीलता, जिम्मेदारी, ये सारे गुण सिखाती है। श्रोताओं, मित्रों के साथ रहते हुए हम दूसरों की भावनाओं को समझना सीखते हैं।
0: जी जी।
1: हम साझा करना सीखते हैं, दूसरे की सहायता करना और टीम भावना के साथ कार्य करना भी सीखते हैं। और यही गुण हमें आगे चलकर एक अच्छा नागरिक और सफल इंसान बनाते हैं। जब लोगों के बीच मित्रता, सहयोग और विश्वास बढ़ता है, तब समाज में भाईचारा और एकता भी मजबूत होती है। इसी के साथ मित्रता जाति, धर्म, भाषा और आर्थिक स्थितियां जैसी सीमाओं को पार करके लोगों को जोड़ने का कार्य करती है।
0: जी हाँ।
1: और यही भावना समाज को और अधिक शांतिपूर्ण, समरस और प्रगतिशील बनाती है।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि मित्रता को बनाए रखने के लिए नियमित संवाद, पारस्परिक सम्मान और विश्वास और सहयोग की आवश्यकता होती है। श्रोता साथियों, मित्र की बात ध्यान से सुनना, उसके सुख दुख में सहभागी बनना, समय देना और आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना मित्रता को और गहरा बनाता है। मित्रता में स्वार्थ, अहंकार और दिखावे के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: आज का समय श्रोता साथियों जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम देख रहे हैं कि ये जो समय है वो बहुत ज्यादा व्यस्त और प्रतिस्पर्धा से भर चुका है। लोग मानसिक तनाव, अकेलापन और चिंता का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में जागृति जी, एक सच्चा मित्र जो है वो व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है।
1: बिल्कुल,
0: वो निराशा को आशा में बदल सकता है, टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से जगा सकता है और जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकता है। इसलिए आज के दौर में सच्ची मित्रता पहले से भी अधिक आवश्यक हो गई है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि मित्रता जीवन का ऐसा अमूल्य उपहार है जो धन, पद और प्रसिद्धि से कहीं अधिक मूल्यवान है। श्रोताओं, सच्चा मित्र हमारे जीवन की यात्रा को सरल, सुखद और प्रेरणादायी बनाता है।
0: जी हाँ।
1: आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि मित्रता हमारी सफलता में खुश होता है, हमारी असफलता में हमें संभालता है और हर परिस्थिति में वो हमारा विश्वास बनाए रखता है। इसीलिए हमें केवल अच्छे मित्र बनाने का प्रयास नहीं करना है बल्कि स्वयं भी ऐसा मित्र बनना होगा जिस पर हर कोई विश्वास कर सके। इसीलिए श्रोता साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कहना चाहेंगे कि हम मित्रता को केवल एक संबंध नहीं बल्कि जीवन का श्रेष्ठ संस्कार बनाएं।
0: बिल्कुल,
1: हम अपने मित्रों के प्रति ईमानदार रहें, संवेदनशील रहें और सहयोगी रहें। समाज में प्रेम, विश्वास और भाईचारे का संदेश फैलाएंगे, क्योंकि जहां सच्ची मित्रता होती है अंजलि, वहाँ जीवन में साहस होता है, विश्वास होता है, मुस्कान होती है और हर कठिनाई को पार करने की शक्ति भी होती है।
0: बिल्कुल,
1: यही सच्ची मित्रता का सबसे बड़ा महत्व है और यही एक सफल, सुखी तथा समृद्ध जीवन की वास्तविक पहचान है।
0: बिल्कुल जागृति जी, मित्रता केवल जीवन का एक संबंध नहीं है बल्कि मानवता का सबसे सुंदर और सबसे मजबूत आधार है।
1: बिल्कुल,
0: एक ऐसा बंधन है श्रोता साथियों जो बिना किसी स्वार्थ, रक्त संबंध, जाति, धर्म, भाषा

0: या आर्थिक स्थिति पर नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान, अपनत्व और सच्ची भावनाओं पर टिका होता है। एक सच्चा मित्र हमारे जीवन में उस छाया की तरह होता है दोस्तों, जो धूप में राहत देता है, अंधकार में आशा जगाता है और कठिन समय में हमारा साहस बनकर खड़ा रहता है।
1: बिल्कुल,
0: जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां भी तभी अधिक आनंद देती है जागृति जी, जब उन्हें बांटने के लिए एक सच्चा मित्र साथ हो। और सबसे बड़ी कठिनाई भी तब छोटी लगने लगती है जब कोई हमारा हाथ थामने वाला हो। आज के समय में भौतिक सुविधाएं, आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया ने लोगों को आपस में जोड़ने का माध्यम तो दिया है, लेकिन दिलों के बीच की दूरी कहीं न कहीं बढ़ा दी है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे दौर में श्रोता साथियों, सच्ची मित्रता का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। हमें ऐसे मित्रों का चयन करना चाहिए जो हमारी अच्छाइयों को प्रोत्साहित करे, हमारी कमियों को सुधारने का साहस रखे और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे।
1: बिल्कुल,
0: उतना ही आवश्यक यह भी है कि हम स्वयं भी ऐसे मित्र बने जिन पर लोग विश्वास कर सके, जिनके साथ लोग निसंकोच अपने मन की बात साझा कर सके और जिन्हें हर परिस्थिति में अपना सहारा मान सके।
1: बिल्कुल अंजलि, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से बस यही कहना चाहेंगे कि मित्रता ईश्वर का दिया हुआ वो अनमोल उपहार है जो जीवन को केवल खुशियों से नहीं बल्कि सही दिशा, आत्मविश्वास और मानवीय मूल्यों से भी समृद्ध बनाता है।
0: जी जी
1: श्रोताओं, सच्चा मित्र हमारे जीवन का वो आईना होता है जो हमारी अच्छाइयों की सराहना करता है, हमारी कमियों को प्रेम पूर्वक सुधारने का साहस रखता है, जैसा कि हमने आपको पहले कहा था, और वो सफलता में तालियां बजाता है, असफलता में हमें हिम्मत देता है और संघर्ष के समय हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, रिश्तों में औपचारिकता बढ़ रही है और लोग अपने अपने दायरों में सिमटते जा रहे हैं अंजलि, तब सच्ची मित्रता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में मित्र बनने और बनाने होंगे जो एक दूसरे को आगे बढ़ाए, सही राह दिखाए, निराशा में आशा जगाए और मानवता के मूल्य को जीवित रखे, क्योंकि सच्ची मित्रता केवल दो व्यक्तियों को नहीं जोड़ती दोस्तों, बल्कि परिवार, समाज और पूरे राष्ट्र में विश्वास, सहयोग और सद्भावना का वातावरण तैयार करती है।
0: जी हां,
1: तो हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत बैंक की तिजोरी में नहीं बल्कि उन दिलों में होती है जो हर परिस्थिति में आपका हाथ थामे रहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: मित्रता वो दीप है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाती है, वो शक्ति है जो गिर कर भी उठना सिखाती है और वो विश्वास है जो असंभव को भी संभव बना देती है। इसलिए धन कमाइए, सफलता पाइए, ऊंचाइयां छुइए, लेकिन अपने जीवन में सच्ची मित्रता को कभी मत खोइए, क्योंकि एक सच्चा मित्र मिल जाना भाग्य की बात है और उस मित्रता को जीवन भर निभाना ही सच्चे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि मित्रता का क्या महत्व है और किस तरीके से हमें हमारे जीवन में अच्छे मित्रों का चयन करने की जरूरत है।
1: बिल्कुल,
0: आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपनी साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है आधुनिक जीवन में हमारा स्वास्थ्य को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि आज का समय विज्ञान, तकनीक और सुविधाओं का समय है। मोबाइल, इंटरनेट, तेज परिवहन, आधुनिक चिकित्सा और नई नई मशीनों ने हमारे जीवन को पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन मनीषा, इन सुविधाओं के साथ साथ हमारी जीवन शैली भी बदल गई है। पहले लोग अधिक पैदल चलते थे, खेतों में काम करते थे, घर का ताजा भोजन खाते थे और प्रकृति के करीब रहते थे। आज घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करना, मोबाइल पर समय बिताना, बाहर का भोजन खाना और देर रात तक जागना और तनाव में रहना आम बात हो गई है। इसी बदलती जीवन शैली का सबसे अधिक असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। हम देखते हैं कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, हृदय रोग, मानसिक तनाव, नींद की कमी और आंखों की समस्या अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि युवा और बच्चों में भी तेजी से बढ़ रही है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक जीवन में हमारा स्वास्थ्य को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि स्वास्थ्य मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।

0: यदि शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न और विचार सकारात्मक है श्रोता साथियों, तो जीवन की हर चुनौती का सामना हम आसानी से कर सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: आज का समय आधुनिकता, विज्ञान, तकनीकी का युग है श्रोता साथियों। हमारे जीवन शैली पहले की तुलना में बहुत बदल चुकी है। मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, मशीनें और नई सुविधाओं ने जीवन को आसान बनाया है। लेकिन श्रोता साथियों, इन्हीं सुविधाओं के साथ कई नई स्वास्थ्य समस्याएं वो बढ़ती जा रही हैं। आधुनिक जीवन श्रोता साथियों हमें यह सिखाता है कि केवल धन कमाना ही पर्याप्त नहीं है। यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो जीवन की सारी उपलब्धियां हैं वो अधूरी रह जाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथियों, आधुनिक जीवन में स्वास्थ्य के महत्व को समझना और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य केवल बीमारी का न होना नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति वह है जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से संतुलित जीवन जीता। यदि शरीर स्वस्थ है लेकिन मन तनाव में है तो जीवन का आनंद अधूरा रह जाता है।
0: जी हाँ,
1: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि आधुनिक जीवन शैली का अर्थ ऐसी दिनचर्या जिसमें तकनीक पर अधिक निर्भरता हो, शारीरिक श्रम कम हो, समय की कमी हो और सुविधाएं अधिक हो, यह जीवन में कई मायनों में लाभदायक है। लेकिन अगर इसका संतुलित उपयोग न किया जाए तो यही सुविधाएं स्वास्थ्य के लिए चुनौती बन जाती है।
0: जी हाँ,
1: कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य का अर्थ केवल दवा लेना या अस्पताल जाना नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति संतुलित भोजन करता है, नियमित व्यायाम करता है, पर्याप्त नींद लेता है, मानसिक रूप से शांत रहता है और परिवार और समाज के साथ अच्छे संबंध रखता है।
0: जी हाँ,
1: नशे से दूर रहता है और समय समय पर स्वास्थ्य जांच भी कराता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज कई ऐसी बीमारियां बढ़ रही हैं जो हमारे जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले श्रोता साथियों, मोटापा तेजी से बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल,
0: लंबे समय तक बैठे रहना, जंक फूड खाना, व्यायाम न करना, श्रोता साथियों ये सभी ही उसके कारण हैं। हम देखते हैं कि अंजलि जी, मधुमेह यानी कि श्रोता साथियों डायबिटीज भी पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी दिखाई देने लगा है।
1: जी हाँ,
0: असंतुलित भोजन और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण श्रोता साथियों हम देखते हैं कि मधुमेह वो बढ़ता जा रहा है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं वो भी अंजलि जी लगातार बढ़ रही हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कि तनाव और गलत खानपान की बीमारियां हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, यही अब बात आती है कि आधुनिक जीवन में स्वास्थ्य पर बढ़ते खतरे क्या क्या हैं और ये क्यों बढ़ रहे हैं। श्रोता साथियों, शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण हम देखते हैं कि कई सारी समस्याएं हो रही हैं। पहले लोग, जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया, ये बहुत अधिक पैदल चला करते थे, खेतों में काम करते थे, घर के काम भी स्वयं करते थे। अब वाहन, लिफ्ट और मशीनों ने मेहनत कम कर दी है। इसके कारण हम देखते हैं कि मोटापा, हृदय रोग, कमर दर्द, गर्दन दर्द और जोड़ों की समस्या लगातार बढ़ रही है।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ आज बच्चों से लेकर बड़े तक मनीषा पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और पैकेट वाले खाद्य पदार्थों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इनमें अधिक नमक, अधिक चीनी, अधिक तेल और कम पोषण होता है। इसका
0: हाँ,
1: लगातार सेवन जो है वो शरीर को कमजोर बनाता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि आज हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ है। किसी पर नौकरी का दबाव है, किसी पर पढ़ाई का तनाव है, किसी पर आर्थिक परेशानी का, तो किसी पर पारिवारिक जिम्मेदारी का,
0: बिल्कुल
1: किसी पर सोशल मीडिया की तुलना का। इन सब का असर मनीषा हम देखते हैं कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। आज हम देखते हैं कि मोबाइल और स्क्रीन का उपयोग भी बढ़ गया है। मोबाइल अब जीवन का हिस्सा बन चुका है, लेकिन ज्यादा मोबाइल का उपयोग करने से आंखों में जलन, सिर दर्द, नींद की कमी, एकाग्रता में कमी और बच्चों का विकास भी प्रभावित होता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से आधुनिक जीवन शैली में हमारे स्वास्थ्य के महत्व को लेकर हम बातें कर ही रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दी।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: जन्म। साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना, यही बात आती है कि मानसिक स्वास्थ्य का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं वो वैसी की वैसी ही रहेंगी।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि श्रोता साथियों, यदि मन शांत रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हमें परिवार से खुलकर बात करनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: अपनी भावनाएं दबानी नहीं चाहिए, योग और ध्यान करना चाहिए, प्रकृति के बीच समय बिताना चाहिए, अपनी पसंद का कार्य करना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, आज बच्चे खेल के मैदान से अधिक मोबाइल की स्क्रीन

0: साथ ही मस्तिष्क बेहतर तरीके से काम करता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी अंजलि जी बढ़ती है।
1: बिल्कुल मनीषा, महिलाएं अक्सर पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भूल जाती हैं। उन्हें संतुलित भोजन लेना चाहिए, आयरन कैल्शियम का ध्यान रखना चाहिए, नियमित स्वास्थ्य जांच जो है वो कराते रहना चाहिए,
0: जी हाँ,
1: तनाव कम रखना चाहिए और पर्याप्त आराम लेना चाहिए। श्रोता साथियों, स्वस्थ रहने के लिए कुछ अच्छी आदतें हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठें, प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें, मौसमी फल और हरी सब्जियां खाएं, पर्याप्त पानी पिएं, तंबाकू शराब से दूर रहें, समय पर भोजन करें, पर्याप्त नींद लें और नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं और स्वच्छता बनाए रखें और सकारात्मक सोच को अपनाएं। और ये बातें हम जब भी कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से जुड़ते हैं तब आपको हमेशा बताते ही रहते हैं कि ये दिनचर्या हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ग्रामीण जीवन से हम सीख ले सकते हैं। श्रोता साथियों, हमारे गांव की कई परंपराएं आज भी स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। ताजा भोजन, स्थायी अनाज, पैदल चलना, सामूहिक श्रम, खुले वातावरण में रहना, प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाना, यदि हम आधुनिक सुविधाओं के साथ मनीषा इन अच्छी परंपराओं को भी अपनाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर रह सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो हम कई संक्रमणों से बच सकते हैं। श्रोता साथियों, इसके लिए हमें पौष्टिक भोजन, पर्याप्त पानी, नियमित व्यायाम, योग, अच्छी नींद और तनाव मुक्त जीवन की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल,
0: मौसमी फल श्रोता साथियों, हरी सब्जियां, आंवला, नींबू, हल्दी और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ हैं वो भी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अंजलि जी बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: यहीं अगर बात करें कि प्रकृति और स्वास्थ्य का क्या संबंध है तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि प्रकृति के निकट रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है।
1: बिल्कुल,
0: सुबह की ताजी हवा, धूप, हरियाली और स्वच्छ वातावरण शरीर तथा मन दोनों को स्वस्थ रखता है।
1: जी हाँ,
0: पेड़ पौधे लगाने, पर्यावरण की रक्षा करने और प्रदूषण को कम करने से हमारे समाज का स्वास्थ्य ही वो भी बेहतर रहता है।
1: जी हाँ, याद रखिए श्रोता साथियों कि धन खो जाए तो कुछ नहीं होता, समय खो जाए तो बहुत कुछ खोता है, लेकिन स्वास्थ्य खो जाए तो लगभग देखो कि सब कुछ ही खो जाता है। स्वास्थ्य किसी अस्पताल की देन नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की अच्छी आदतों का परिणाम है।
0: जी हाँ,
1: आधुनिक जीवन शैली ने हमें अनेक सुविधाएं दी है, लेकिन मनीषा इन सुविधाओं का सही उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम सुविधाओं के साथ अनुशासन, तकनीक के साथ संयम और व्यस्तता के साथ स्वास्थ्य को भी महत्व देंगे तभी जीवन वास्तव में सुखद और सफल बनेगा। स्वास्थ्य कोई एक दिन का लक्ष्य नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि जीवन भर निभाई जाने वाली आदत है। छोटी छोटी सकारात्मक आदतें जैसे कि समय पर उठना, संतुलित भोजन करना, नियमित व्यायाम करना, मानसिक शांति बनाए रखना और परिवार के साथ समय बिताना लंबे समय तक स्वस्थ जीवन की मजबूत नींव बनती है। इसलिए दोस्तों, हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करेंगे, बुजुर्गों का सम्मान करेंगे और देखभाल करेंगे। इसी के साथ अपने गांव और समाज को भी स्वच्छ, स्वस्थ और जागरूक बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होगा मनीषा, तभी परिवार स्वस्थ होगा, समाज मजबूत बनेगा और देश प्रगति की और नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। स्वस्थ नागरिक ही समृद्ध राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी हाँ,
0: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दी।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो बातचीत रही है, जो गीत संगीत रहे हैं, वो आपको अवश्य पसंद आए होंगे।
1: जी बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
2: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें।

0: भाई न बोनो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: हमरो गरीबों ने पूछे हैं, जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जाओ या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
0: तो हमरो बोनो, अरे सब समस्या नो समाधान आपे करने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरो ने हाथे मलिन जावो है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमीन माते नाम लकड़वो काटो नती, जय वरे अधिकार हमर अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
1: होवे भाइयों ने बहनो, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो हमारी आपसे बातचीत होती है एक नए विषय को लेकर। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से ऐसा ही एक नया विषय हम लेकर हाजिर हुए हैं श्रोता साथियों। साथियों आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि हमें सपनों को सिर्फ सोचना नहीं है बल्कि जीना शुरू कर देना है, क्योंकि हम देखते हैं कि सपने शब्द सुनते ही हमारे मन में बहुत सारी तस्वीरें बनने लगती है। जैसे कि कोई अच्छा किसान बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई अपना छोटा सा कारोबार जो है वो शुरू करना चाहता है, तो कोई चाहता है श्रोता साथियों कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, तो कुछ लोगों का सपना ये होता है कि उनका जो घर है वो खुशियों से भर जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि क्या सिर्फ सपना देख लेने से सपना पूरा हो जाता है? अगर दोस्तों उत्तर हाँ होता तो शायद दुनिया में हर व्यक्ति सफल होता। हम देखते हैं कि सपना तभी अपना रूप लेता है जब वह हमारी रोज की आदतों, मेहनत और फैसलों का हिस्सा बन जाता है। और इसी चीज को लेकर आज के हमारे कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी बातें होंगी साथियों। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो दोस्तों इसी दस्तूर को निभाते हुए पहले हम सुन लेते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा गीत, फिर मैं अपनी बातचीत को फिर से जारी रखूंगी। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद मैं आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही अच्छा विषय हमारा आप सभी के साथ जुड़ चुका है, हम बात कर रहे हैं साथियों कि सपनों को हमें सिर्फ सोचना नहीं है बल्कि जीना शुरू कर देना चाहिए। साथियों, जैसा ये गीत से पहले भी कुछ छोटी मोटी बातें मेरी आपसे रही थी कि हम देखते हैं कि बहुत से लोगों के अलग अलग सपने होते हैं। कोई अच्छा शिक्षक बनना चाहता है, कोई अच्छा किसान बनना चाहता है, तो कोई छोटा सा कारोबार जो है उसे बड़ा करना चाहता है। साथियों, तो कुछ लोगों का सपना ये होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। लेकिन दोस्तों, ऐसे में प्रश्न ये है कि क्या सिर्फ सपने सोच लेने से या देख लेने से पूरे हो जाते हैं? नहीं साथियों, उसके लिए हमें निरंतर मेहनत करनी होती है, संघर्ष करना होता है, त्याग करना होता है। साथियों, अगर मैं आपको बताऊं कि सपना देखना तो आसान है लेकिन उसे जीना कठिन होता है, ऐसा कई लोगों का सोचना होता है। दोस्तों, हर इंसान सपने देखता है, सपने देखने पर कोई रोक नहीं होती साथियों, या कोई टैक्स नहीं लगता श्रोता साथियों, लेकिन बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना पाते हैं। दोस्तों, कई बार हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि एक दिन मैं इस काम को शुरू करूंगा, या एक दिन मैं पढ़ाई अपनी पूरी कर लूंगा, या एक दिन मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन दोस्तों, वह एक दिन महीनों में बदल जाते हैं, फिर सालों में, और फिर धीरे धीरे सिर्फ सपना ही इच्छा बनकर ये रह जाता है। दोस्तों, असल में समस्या सपने में नहीं होती, समस्या श्रोता साथियों सपने की शुरुआत करने में होती है। जी हाँ, इसलिए कई लोगों का ये मानना होता है कि सपने देखना तो आसान है लेकिन उसे जीना कठिन होता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको बताऊं तो सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन टालने की आदत होती है, क्योंकि साथियों हम सोचते हैं कि ये काम मैं आज नहीं कल से शुरू करूंगा, या इस महीने नहीं अगले महीने से शुरू करूंगा, अभी समय ठीक नहीं है, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। दोस्तों, कब वो धीरे धीरे इंतजार हमारी आदत बन जाता है हमें याद ही नहीं रहता। सच तो ये है साथियों कि समय कभी अपने आप नहीं आता, सही समय वही होता है जब हम पहला कदम उठाते हैं। जो लोग शुरुआत कर देते हैं साथियों, वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, और जो इंतजार करते रहते हैं वे वहीं खड़े रह जाते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि समय आता नहीं है, समय को लाना पड़ता है। साथियों, अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो अगर आप ये सोचेंगे कि मैं समय आने पर ये चीज करूंगा या करूंगी, तो दोस्तों हो सकता है कि वो समय आपका कभी आए ही नहीं। आपके मन में श्रोता साथियों, जब भी ये हौसला आ जाए कि आज मुझे इस काम को करना है, तो आप उसी दिन से उस काम की शुरुआत कर दें। इससे क्या होगा श्रोता साथियों, आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे लेकिन एक न एक दिन आप सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। इसलिए श्रोता साथियों, सपने देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रोता साथियों एक कहावत कही गई है कि सपने वो नहीं होते जो हम बंद आंखों से देखते हैं, सपने तो वो हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। तो श्रोता साथियों, ये बहुत ही प्यारी सी पंक्ति है, अगर इसे आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपके सपनों को उड़ान मिल जाएगी, और जब सपनों को उड़ान मिल जाती है श्रोता साथियों, तो सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरीके से, जैसा कि कार्यक्रम में मेरी आपसे बातें तो बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और गीत के साथ में। तो श्रोता साथियों, आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

दोस्तों, इस गीत के बाद मैं फिर से रुक करना चाहूंगी कार्यक्रम सपनों की उड़ान की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम सपनों को पूरा करने की बात कर रहे हैं, और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बताया था श्रोता साथियों, कि सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा ये आती है कि हम काम को टालने लगते हैं। श्रोता साथियों, अगर आपने ठान लिया है कि आपका ये सपना है, तो आप उसको पूरा करने में अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए। अगर आप समय की राह देखते रहेंगे श्रोता साथियों, तो सही समय कभी नहीं आएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि सही समय आने पर इस काम को मैं करूँगा, तो दोस्तों वो समय बिल्कुल नहीं आएगा। आप सोचेंगे कि इस काम को अगर मैं कल करूँ, तो कल परसों बन जाएगा, परसों श्रोता साथियों तरसों बन जाएगा, और तरसों के बाद आप देखेंगे कि उस काम को करने में महीने गुजर जाएंगे। इसलिए श्रोता साथियों, अगर आपने ठान लिया है कि आपको अपने इस सपने को पूरा करना है, तो उसी समय उसकी तैयारी में आप जुट जाइए। अब यही श्रोता साथियों, अक्सर लोग सोचते हैं कि सपने केवल शहरों में रहने वालों के ही होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। गांव का किसान भी सपने देखता है, एक मजदूर भी सपना देखता है, एक गृहिणी घर में रहकर भी सपने देखती है, एक छात्र सपना देखता है श्रोता साथियों, बुजुर्ग भी चाहते हैं कि उनका परिवार खुश रहे। दोस्तों, ये सारे जो सपने हैं वो सम्मान के योग्य हैं। सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, सपना सिर्फ अपना होता है दोस्तों। इसलिए सपनों को जीने का मतलब सिर्फ उनके बारे में बात करना नहीं है, इसका मतलब तो ये है कि हर दिन ऐसा कोई काम करना है जो हमें उस सपने के थोड़ा और करीब लेकर जाए। जैसे कि अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है, तो रोज उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा दोस्तों, और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने के सपने को जीना होगा। अगर कोई खेती बेहतर करना चाहता है और ये उसका सपना है, तो ऐसे में नई जानकारियों को लेना भी सपने जीने जैसा है। अगर कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो उसकी छोटी सी बचत करना भी उसके लिए सपने जीने जैसा है। दोस्तों, सपनों की शुरुआत बड़े कामों से नहीं होती, सपनों की शुरुआत छोटी आदतों से होती है। इसलिए आप आज से ही सपनों को पूरा करने की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि दोस्तों अगर आप सपने पूरे करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी होगी, और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको असफलता मिलेगी साथियों। लेकिन असफलता का मतलब ये नहीं है साथियों कि आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। सपने पूरे होते हैं, लेकिन दोस्तों सपने परिश्रम त्याग भी मांगते हैं। इसलिए आप सपनों को पूरा करने में पीछे मत हटिए, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहिए साथियों। जैसे कि जब हम कुछ नया करने की सोचते हैं, तो हमें कई बार डर लगता है कि अगर असफल हो गए तो। दोस्तों, ये काफी सामान्य बात है, डर तो सभी को लगता है। जब हम कुछ नया करने जाते हैं, तो हमारे मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं। हमें डर लगता है कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा, लोग हम पर हंसेंगे तो क्या होगा, अगर हमारी मेहनत बेकार चली गई तो क्या होगा। दोस्तों, ये जो सारे सवाल हैं, वो हर इंसान के मन में आते हैं, लेकिन अगर हम सपने पूरे करने के लिए तत्पर हैं साथियों, तो हमें ये याद रखना है कि डर रास्ता नहीं रोकता, डर के कारण लिया गया फैसला रास्ता रोक देता है। साहस का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं होता साथियों, साहस का तो मतलब है कि डर के बावजूद भी हमें आगे बढ़ना है। साथियों, आजकल हम अपनी जिंदगी कम और दूसरों की जिंदगी ज्यादा देखने लगे हैं। वह आगे निकल गया, उसके पास तो बहुत ज्यादा पैसा है, उसका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन श्रोता साथियों, किसी की पूरी कहानी हमें नहीं दिखाई देती, हमें सिर्फ उसका परिणाम दिखाई देता है। उसके पीछे की उसकी मेहनत, उसका संघर्ष, धैर्य नहीं देखते हम। इसलिए तुलना नहीं, बल्कि सपनों से प्रेरणा आप लीजिए। सफलता कभी श्रोता साथियों अचानक नहीं मिलती, सफलता प्राप्त करने के लिए ढेर सारा संघर्ष करना पड़ता है। साथियों, कोई भी पेड़ एक रात में फल नहीं देता, उसे समय लगता है, उसे धूप भी सहनी पड़ती है और बारिश भी सहनी पड़ती है। ठीक वैसे ही इंसान की मेहनत भी धीरे धीरे फल देती है साथियों। अगर आज आपने मेहनत की है, तो उसका परिणाम श्रोता साथियों कल भी आपको नहीं मिले, फिर भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हर प्रयास हमें पहले से बेहतर बनाता है। इसलिए श्रोता साथियों, सपनों की सच्चाई को पहचानिए, उसके पीछे के लक्ष्य को पहचानिए श्रोता साथियों। अगर आप सपनों में जीना शुरू कर देंगे, तो आपके सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ दोस्तों, क्या आपको पता है कि सपनों की सबसे बड़ी खूबसूरती ये नहीं है कि वो पूरे हो जाएं, बल्कि ये है साथियों कि उन्हें पूरा करने की जो यात्रा होती है, वो हमें पूरा बदल देती है। हम अधिक धैर्यवान बन जाते हैं, अधिक समझदार बन जाते हैं, जिम्मेदार बन जाते हैं साथियों,
और आत्मविश्वासी बन जाते हैं और यही बदलाव हमारी सबसे बड़ी सफलता होती है। तो इस तरीके से श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आज आपसे ढेर सारी बातें हुई। हमने बात की कि हम अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं और हमें सिर्फ सपनों को सोचना नहीं है बल्कि उसे जीना शुरू कर देना है। तो बातें जैसा कि ढेर सारी हो चुकी है, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यही समाप्त होता है। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी साथियों कि सपनों को पूरा करने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है एक सच्चे इरादे की, रोज की छोटी छोटी कोशिशों की और हार मानने से इनकार करने की सोच की। साथियों, जो लोग अपने सपनों को सिर्फ सोचते रहते हैं वे अक्सर परिस्थितियों का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने सपनों को जीना शुरू कर देते हैं साथियों, वे परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में बदलना सीख लेते हैं। याद रखिए श्रोता साथियों, जिंदगी कभी एक ही दिन में नहीं बदलती, यह हर सुबह लिए गए छोटे फैसलों, हर शाम की गई ईमानदारी से मेहनत और हर असफलता के बाद दोबारा उठ खड़े होने के साहस से बदलती है। इसलिए अपने सपनों को भविष्य की किसी तारीख पर मत टालिए, उन्हें आज की आदत आप बनाइए, आज की सोच बनाइए और आज के कर्म में उतारिए। इन्हीं प्रेरणादायक विचारों के साथ दोस्तों, अब मैं कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्र द्वारा हमारे इस पते पर। पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए प्रेरणादायक विषय के साथ में, एक नई सोच के साथ में और जीवन को आगे बढ़ाने वाली एक नई प्रेरणा के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

ये गजल मैंने मेरे से बहुत दिनों में इसकी धुन बनी, मैं पेश कर रहा हूँ। ये मोमिन खां मोमिन की गजल है, जिसका मतलब है, रोया करेंगे आप भी पहरों इसी तरह, अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह।

तो साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।